सतगुरु सच सखाई राम कली मैला पहला औहठ हस्त मली कर छाया करण गगन कल तारी गुरुमुख केती शब्द उधारी संतो रहाओ ममता मार हों मैं सुख है त्रिभुवन ज्योत तुम्हारी मनसा मार मने में राखे सतगुरु शब्द विचारी सिंगी सुरत अनाद बाजे कट कट ज्योत तुम्हारी पर पंच बेन कहीं मन राख्या ब्रह्म अगन पर जारी पंच तत्व मिल एनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राम सच लौके।

एहु मन राजा पंच वसें विचारी सब द्रवे आसन कर राजा अदल करे गुणकारी काल विकाल कहे कह बपुरे जीवत मुआ मन मारी।

शोध कर पावसागर आत्म तत्व विचारी गुरु सेवा ते सना सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुणदाता हो मैं कृष्णा मारी त्रै गुण में ते चौथे वर्ते तेहा भगत निरारी गुरमुख जोग शब्द आत्म चिन्ह हृदय एक मुरारी मनुआ अस्थिर शब्दे राता एहा करनी सारी वेद बाद ना पखंड औदु गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जोग कमावे औदु जत सत शब्द विचारी शब्द

हर चेती चितनाए सतगुरु नाल तेरी पावनी लागे ता ए सो जी पाए एहो जोग न होवे जोगी जे कुटंब छोड़ पर पवन करे गृह शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लहे एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन पेख करे जोगी रोग न जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवे सोई बूझे जोग जुगत सो पाए जोगे का मार्ग दिखम है जोगी।

भगत खजाना गुरुमुख जाता, सतगुरु बूझ बुझाई, संतो गुरुमुख देव डियाई रहाओ। सच रहो सदा सहज सुख उपजे, काम क्रोध विचों जाई, आप छोड़ नाम लिख लागी, ममता शब्द जलाई, जिसते उपजे तिसते दिन से, अंते नाम सिखाई। सदा हजूर दूर नह देखो, रचना जिन रचाई, सच्चा शब्द रवे कट अंतर, सच्चे सो लिव लाई। सत्संगत में नाम निर्मोलक, वड़े पाग पाया जाई। परम न पूलो सतगुर सेवो, मन राखो इकठाई। बिन नामे सब पूली फिर दी, देखा जन्म गवाई। जोगी जुगत गवाई हंडे, पाखंड जोग ना पाई।

दे नाम नमन निध पाए मनसा मार मन सह समाना बिन रसना उस्तत कराई लोयन देख रहे विस्मादी चित अदुष्ट लगाई।

बुझाई नानक एक कहे बेनंती नावो गत पत पाई राम कली मैला तीजा हर की पूजा दुर्लभ है संतो कहना कथु न जाय संतो गुरुमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहाओ हर दिन सब कुछ मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाई हर साचे पावे सा पूजा होवे पाना मन वसाई पूजा करे सब लोक संतो मन मुख थाए न पाई शब्द मरे मन निर्मल।

गुरुमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाए आपे निर्मल पूज कर आए गुरु शब्द खाए पाए पूजा करें पर दुज नहीं जाने दूजे पाए मन लाए गुरुमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन वसाए पाणे ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सकाई अपना आप ना पछाणे संतो पूर करें वड्याई पखंड कीने जम नहीं छोड़े ले जासी पत गवाई जिन अंतर शब्द आप

निखंजन मेरा प्रभु अंत सखाए सब कुछ आपके आप वरते नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अस अभिमानी निर शब्दे मैल उतारी।

एक पेश करें फिर अभिमानी तिन जुए बाजी हारी एक अनदिन भगत करें दिन राती राम नाम उधारी अनदिन राते सहजे माते सहजे हो मैं मारी सह दिन भगत न हुई कभी।

कृपा तुम्हारी, सतगुरु ना सेवे माया लागे, डूब मुए अहंकारी, जिचर अंदर सांस तिचर सेवा की जय, जाय मिलिए राम मुरारी, अंग दिन जागत रहे दिन राती,

जिस हृदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा, वाणी सब सुनाई, नानक सुन वेख रहा विस्माद, मेरा प्रभ रहा सर्व थाई।

किन्हि मून अवतूत सदाया, कोई कह तो अनन पगौते, मोहे दीन हर हर ओट लेते। किन्हि कया हो तीर्थवासी, कोई अन पज पया उदासी, किन्हि पवन सब करती करया, मोहे दीन हर हर दर परया। किन्हि कया मैं कुल्हे बढ़िया।

मोहे दीन हर हर हर सेवा। कोई चतुर कहावै पंडित, को खट कर्म सहत सो मंडित। कोई करे आचार सो करनी, मोहे दीन हर हर हर सरणी। सगले कर्म कर्म जुग तो दे, बिन नामे यो मन ना प्रबोधे। कहो नानक जो साध संग पाया, बूजी कृष्णा महा शीतलाया। राम कली महला पंजवा, इस पानी ते जिन तू करया, माटी का ले जोरा करया। उकत जोत ले सुरत परीख्या, मात गर्भ में जिन तू राख्या। राखन हार समार जना।

इस सेवत मन आलस करे, जिस विसरे इस निमख ना सरे, हम अपराधी निर्गुनियारे, ना किस सेवा ना कर मारे, गुरबोहित वड पागी मिलिया। नानक दास संग पातर करया, राम कली मेला पंजवा, काहू बिहावे रंग रस रूप, काहू बिहावे माए बाप पूत, काहू बिहावे राज मिलख वा पारा, संत बिहावे हर नाम आधारा,

मात गर्भ संकट को छूटे, जाका नाम सिमरत पौ जाए, कैसे संत जना राखे हर राय, ऐसे राखन हार दयाल, जब तक देखो तुम प्रतपाल रहाओ, जल पीवत ज्यों सुखा मितंत, तन बिगसै गृह आवत संत, लोभी का तन प्राण आधार, क्यों हर जन हर हर नाम प्यार, किसानी जो राखे रखवाला, मात पिता दया जो बाला, प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए, क्यों हर जन राखे कर...

ऐसे प्राचित संत संग विनाश, जो साबुन कापर ऊजल होत, नाम जपत सब परम पौख होत, जो चकवी सूरज की आस, जो चात्रिक बूंद की प्यास, जो कुरंक नाद करण समाने, क्यों हर नाम हर जन मने सुखाने, तुमरी कृपा से लागी प्रीत, दयाल पै ता आए चीत, दया तारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार, सब थान देखे नैन अलोए, किस दिन दूजा अवर न कोए, क्रम

की तृप्ताई संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वस्या जाई पूरे गुर पूरी मत दिनी हर बिन आन न पाई नाम निधान पाया वड पागी नानक नरक न जाए।

गुरसाचे लाए तराई अपने जीते आप संभाले आप लिए लड़ लाई सात कर्म का बेड़ा बांधिया पग जल पार पवाई बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूरत अजूनी संभो कल अंधकार दिपाई अंतर जामी जीवन का दाता देखत तृप्त अघाई एक अंकार निरंजन निरपो सब जल फल रहा।

आला हर सिमरत तृप्त अघाई संतो आत्म राम रविया सब अंतर कत आवे कत जाई संतो आप जुगादी है भी होसी सब दुनिया का सुखदाई संतो आप व्यंत अंत नहीं पाये पूर रहा सब खाई संतो मीत साजन माल जो बन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम करी मैला पंजवा मन बच क्रम।

तुम समरथ अकथ अगोचर रविया एक मुरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत ना पारावारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी।

सबना गला समरथवामी सो क्यों मनो सारे कहे नानक मन मेरे सवारो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सुख साला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द गनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जन पुखा सब गवाए।

सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले। कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले, अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया।

मार्ग चलना, लब्ध लोभ अहंकार पद तृष्णा बहुत नानी बोलना, समयो तिथि वालों की एक मार्ग जाना। गुरु प्रसादी जिन्नी आप तजिया हर वासना समानी, कहे नानक चाल भगता जुगो जुग निराले, जो तू चलाए तिन चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे, जुग तू चलाए तिन चले जिन्ना मार्ग पावे, कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा त्यावे, जिसनों कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे, कहे नानक सच्चे साहिब जो पावे तिरे।

कर्म कमाए, कैसे जीव मलिन है तुझ संगम तोता जाए। मन तो वो सब लागो हर्षो रहो चित लाए, कह नानक गुरु प्रसादी सहज उपजे तू सहसा उजाए। जियो मैले बारो निर्मल, बारो निर्मल जियो तमैले, तुन्नी जन्म जुए हारिया। ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया, वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिर ज्यो बेतालिया। कह नानक जिन सच कजिया कूड़े लागे, तिन्नी जन्म जुए हारिया। जियो निर्मल बारो निर्मल, बारो ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमानी पूर्ति सोए पहुँचे नाही मनसा सच कमानी। जन्म रतन जिनी खटिया पल्ले सेवन जारे, कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले। जे को सिख गुरु सेवकी सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले। गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मे समाले, आप छाड़े सदा रहे परने गुर बिन और न जाने कोए। कहे नान सुनो संतो सो सुख सन्मुख होए, जो को गुर के बेमुख होवे।

जे अगन में आहार पहुंचावे, उसनो क्यों पोए न सकी जिसनो अपनी लिव लावे। अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए, कहे नानक एवट दाता सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अगन उदर में तैसी बार माया, माया अगन सब को जे ही करते खेल चाया। जात पाना ताजमिया परवार पल्ला पाया, लिव सुरती लगी कृष्णा माया अमर वर्ताया। ए माया जित हर विसरे मोह उपजे पाओ दूजा लाया, कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमूलक है मूल न पाया जाए, मूल न पाया जाए किसे वित्तों रहे लोक विललाए। ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनो सिर सौंपिए विच्चों आप जाए, जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए। हर आप अमूलक है पाग सुना के नानका जिन हर पल्ले पाए। हर रास मेरी मनवन जारा, हर रास मेरी मनवन जारा सतगुरु ते रास जाने। हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी, एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाना। कह नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जारा, ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत किते जिच हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बहुत न कुसना लागे आए। एहो हर रस करमी पाए सतगुरु मिले जिस आए, कह नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसे मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया, हर जोत रखी तुझ विता तू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कह नानक सुष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाव पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सती गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सतिये सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे अपना फिर जापे। अनहत बाणी गुर सब जानी हर नाम।

जग में आए थे, क्या तुझ कर्म कमाया, के कर्म कमाया तू शरीरा जा तू जग में आया, जे हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया, गुरु प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया, कहे नानक हो शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से चितलाया, ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम में जो तरी, हर दिन अवर न देखो कोई, हर दिन अवर न देखो कोई, नदरी हर ने आ लिया, ए विश्व संसार तुम देख दे, ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया, गुरु प्रसादी बुझिया जा देखा, हर इक है हर दिन अवर न कोई, कहे नानक के नेत्र अंध से।

मारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाना गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल।

गुर जाए हर प्रभु पास जियो। सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया।

सतगुरु परतख होंदे बहराज आप टिकाया सब सिख बंदक पुत पाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो केशो गोपाल पंडित सद्यो

फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया,

साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोएड़ा हर जानियड़ा नैन अलोया कट कट सोया

अपर अपारा कट कट अंतर सोनिया एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोनिया जिसनो राखे सो सच पाखे

तखत निवासी सचित सैदी बाणो। मंगला हर मंगला मेरे प्रभ कै सुनिए मंगला, सोय लड़ा प्रभ सोय लड़ा अनहद तुनिए सोय लड़ा। अनहद वाजे शब्द अगाजे नित नित जिसे वधाई, सो प्रभ त्याय सब किछ पाये मरे न आवे जाई। चूकी प्यासा पूरन आसा गुरमुख मिल निर्गुनिए।

इन ना विसारिय राम रामा राम रमा कंठ उर्धारिय उर्धार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो पै दूर करता पाप हरता दुसे दुख पव खंडनो जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिय बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरेण चितारिय चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक पंडार नाम अनंत तारा नाम नरहर निधान जिनके रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग

सुख निदान मिलिया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा परम पौ पागा हर नाम रसना पाखिया हर एक चितवे प्रभ एक गावे हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाये गुनिए राम दयाल दुख हर शरण दाता सगल दोख निवारणो मोह सोग विकार बिखड़े जपत नाम उधारणो

विपत निवारण राम। संत प्रभु विपत निवारणो तिस बिन अवरण कोई जियो, सदा सदा हर सिमरिए जल थल मैयल सोए जियो। जल थल मैयल पूर रहा एक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सपागे सर्व गुण जगदीश रे। कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस पावे सो होए जियो। बल जाए नानक सुखे दाते परगास मन तन होए जियो। श्लोक हर सिमरत।

प्रभ रख को अंचल ता कै लाग जियो। पज साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो। एक ओट की जय जियो दी जय आ

बिनवंत नानक सिमर जीवा, जन्म मरण रहंत जियो। श्लोक उद्दम अगम अगोचरो, चरण कमल नमस्कार, कथनी सात उदपावसी, नानक नाम आधार। संत शरण साजन परो, स्वामी सिमर अनंत, सूके ते हरिया थिया, नानक जप भगवंत। चंत रुत सरस बसंत महाचेत, वैसाख सुख मास जियो, हर जियो नाओ मिलिया मौलिया, मन तन सास जियो, कर नाओ ने चल अनद सखिए, चरण कमल पर फुल्लिया, सुंदर सुगड़ सुजान बेता, गुण गोविंद अमूल्या, वड भाग पाया दुख गवाया, पई पूरन आस जियो, बिनवंत नानक।

सर्व ठाई, हर नाम नव निध गृह परे, सिमर स्वामी अंतर जामी, कुल समूहा सब तरे, त्रय रंग जागे न छिद्र लागे, कृपाल सद बख्शिंद जियो, बिनवंत नानक हर।

बिन मिल बे शांत ना उपजे, तिल पल रहन न जाए, हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। छंत रुत सर्द अडंबरो, असूकत के हर प्यास जियो, खोजंती

0: आए हरकंत जियो। ग्रहलाल आए मनति आए सेज सुंदर सोहिया। वन त्रिन त्रिभवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया। मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपिया निर्मल मंत जियो। बिनवंत नानक नित करो रलिया।
1: हर मिले श्री तरकंत जियो। श्लोक

पर जब उतरे तीर छंत चरण विराजत सब ऊपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिल न मनते बिसरे तज आप सरणी परे चरणी सर्व गुण जगदीश रे।

लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला, रहाओ ससै सब जग सहज उपाया, तीन पवन एक ज्योति, गुरमुख वस्त प्राप्त होवे, चुन ले माणक मोती, समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै, अंत निरंतर साचा।

गर्भ गले बिख खाया, गुर रस गीत बाद नहीं पावे, सुनिए गहर गंभीर गवाया, गुर सच कहया अमृत लया, मन तन साथ सुखाया।

आप अगोचर तंदे लोई, जोग जुगत जग जीवन सोई, कर आचार सच सुख होई, नाम विहूणा मुक्त किव होई, विण नाम है विरोध शरीर।

सह सोताओ नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ जगत पशु अहंकाल कसाई कर करते करनी कर पाई जिनकी ती तिन कीमत पाई होर क्या कही है किछ कहन ना जाई खोजत खोजत अमृत।

गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाज सगोनी हर नाम चेत फिर पवे न जूनी गुरमतसार होर नाम बिहूनी कर दर फिर था की बहुतेरे जात असंख।

गुरमुख मरण जीवन प्रवनाल, दै दिस टूंड करे मैं पाया, मेल पया सतगुरु मिलाया। गुरमुख गावे गुरमुख बोले, गुरमुख तोल तुलावे तोले, गुरमुख आवे जाए निसंग, पर हर मैल जलाए कलंक। गुरमुख नाद वेद विचार, गुरमुख मज्जन चज आचार, गुरमुख शब्द अमृत है सार।

मुक्त पया पक्षियों कर जाए। छीजय देख खुले एक गंड, छिया नित देखो जगहंड। तूप छाव जे सम कर जाने, बंधन काट मुक्त कर आने। छाया छूची जगत पुलाना।

टंडोलत टूंडत हौ फिरी टह टह पवन करार फाहे टहते टह पए हौले निकसे पार अमर अजाची हर मिले तिनके हौ बल जाओ तिनकी तूर अकुली है संगत मेल मिलाओ मन दिया गुर अपने पाया निर्मल नाओ जिन नाम दिया तिस सेवसा तिस बलिहारे जाओ जो उसारे सोटासी तिस बिन अवर न

गुण जम पुर जाए ना तिस एहो ना ओहो है अवगुण फिर पछताहे ना तिस ज्ञान ना त्यान है ना तिस धर्म त्यान।

तिन जाइए, हर गुण गाए सदा रंग राते, बौड़ न पछोताइए। पब्बे पाले गुरमुख बूजे ता निज कर वासा पाइए, पब्बे पौजल मार्ग विखड़ा आस निराशा तरिए, गुर प्रसादी आपो चीने जीवतिया इव मरिए। माया माया कर मोए माया किसे न साथ, हंस चले उठ डुमणो माया पूली आत, मन झूठा जम जोहया अवगुण चले नाल, मन में मन उल्टो मरे

वणते टूडत फिर रही मन में करो विचार लाल रतन बहु मान की सतगुरु हास भंडार उत्तम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए नान

क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाणे आपना खूले बंद न पाए शब्द मैली खरा तू किमा सच सुख पाए खर्च खरा तन त्यान तू आपे वसे शरीर मन तन मुख जा पै सदा गुण अंतर मन तीर हऊ मैं खपे खपाए सी।

सरत्याय संपै पूर्व लिखे की पाय संपै कारण चातर चोर संपै साथ ना चाले होर बिन साचे नहीं दरगे मान हर रस पीवे छुटे निदान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हों हों करती मैं मुई शब्द रवे मन ज्ञान हार डोर कंकन कने करथा की सीगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाये।

विद्या सोदय तत्ल है, राम नाम लिवलाए, मनमुख विद्या बिकरदा, बिख खट्टे बिख खाए, मूरख शब्द नाची नहीं, सूझ बूझ नह काए, पांदा गुरुमुख आखी है।

सतगुरु प्रसाद। सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो, तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो। मस्तक

क्या पवि है सच सूचा होए, साच सबद बिन मुकुत न कोए रहाओ। कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा, कौन मार्ग कौन सुआओ, साच कहूं अरदास हमारी, हूं संत जना बल।

कट कट बैस निरंतर रही है। चाले सतगुरु पाए सहजे आए हुकम सिधाए नानक सदार जाए। आसन बैसन थिर नारायण ऐसी गुरमत पाए गुरमुख बूझे आप पछाणे सच्चे सच समाए। दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाए पारो चरपट बोले औदू।

एहो मन लाया कित बिद आसा मन साखाई, कित बिद जोत निरंतर पाई, बिन दंता क्यों खाई है सार, नानक साचा करो विचार। सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, अनहत राते एहो मन लाया, मनसा आसा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर

गत मित सब दे पाए, आद को विस्माद विचार कथियले, सुन निरंतर वास लिया, अकल पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले, कट कट साचा सर्व जिया, गुर बचनी अवगत समाये, तत् निरंजन सहज लह, नानक दूजी कार न करनी, सेवै सिख सो खोज लह, हुकम विस्माद हुकम पछाने, जी जुगत सत जाने सोई, आप मेट निरालम होवे, अंतर साच जोगी कहिए सोई, अवगत तो निर्मायल उपजे, निर्गुण ते सरगुण थिया, सतगुर परचे परम पद पाये, साचे शब्द समाये लिया, एक एको सच एका जाने, हो मैं दूजा दूर किया, सो जोगी गुर शब्द पछाने, अंतर कमल प्रगास थिया, जीवत मरे ता सब किछ सूजे।

समाई गुरुमुख तरती साजे साजी तिसमें ओपत खपत सोबाजी गुरु के शब्द रपे रंग लाए साच रतो पत स्यों कर जाए साच शब्द बिन पत नहीं पावे नानक बिन नावे क्यों साच समावे गुरुमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि गुरुमुख पाव जल तरिये सच शुद्धि गुरुमुख सर अपसर बिद जाने गुरुमुख परवित नरवित पछाणे गुरुमुख तारे पार उतारे नानक गुरुमुख शब्द

जोग जुगत सच रहे समाए, बारह में जोगी परमाए, सन्यासी छे चार। गुर के शब्द जो मर जीवे सो पाए मोख द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार। नानक वड्डे से वड पागी जिनी सच रखिया उधार, गुरमुख रतन लह लिवलाए गुरमुख परखे रतन सुभाए, गुरमुख साची कार कमाए गुरमुख साचे मन पतियाए, गुरमुख अलख लखाए तिस पावे नानक गुरमुख चोट न खावे। गुरमुख नाम दान इसनान गुरमुख लागे सहज ध्यान, गुरमुख पावे दरगह मान, गुरमुख पाव पंजन।

कट कट पेद गुरमुख वैर विरोध गवावै गुरमुख सगली गणत मिटावै गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता बिन गुर पर मैं आवे जाए बिन गुर काल न पवी थाए बिन गुर मनुआ अत डोलाए बिन गुर त्रिपत नहीं बिख खाए बिन गुर बिसियर डसे मरवाट नानक गुर बिन काटे काट जिस गुर मिले तिस पार उतारे अवगुण मेटे गुण निस्तारे मुक्त महा सुख गुर शब्द विचार गुरमुख कदे ना आवे हार तन हटड़ी एव मन मन जारा नानक सहजे सचवा पारा गुरमुख बांध्यो सेत विदाते।

गुरमुख कोट तेती सुधारे, गुरमुख चूके आवन जान, गुरमुख दरगे पावे मान, गुरमुख खोटे खरे पछाण, गुरमुख लागे सहस्यान, गुरमुख दरगे सिफत समाए, नानक गुरमुख बंद ना पाए, गुरमुख नाम निरंजन पाए, गुरमुख हो में शबद जलाए, गुरमुख साचे के गुण गाए, गुरमुख साचे रहे समाए, गुरमुख साच नाम पत उत्तम होए, नानक गुरमुख सगल पवन की सोजी होए, कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, कवन कथा ले रहो निराले, बोले नानक सुनो तुम बाले, एक कथा का दे विचार, पव जल शब्द लंगावन हार, पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुरु गोपाला, एक शब्द

शब्द विचार है, शब्द वसे सच अंतर ही आ, तन मन शीतल रंग रंगिया, काम क्रोध बिख अगन निवारे, नानक नदरी नदर प्यारे, कवन मुख चंद हिवै कर छाया, कवन मुख सूरज तपै तपाया, कवन मुख काल जोहत नित रहे, कवन बुद्ध गुरमुख पत रहे, कवन जोत जो काल सिंगार है, बोले बाणी नानक विचार है, शब्द पाखत सस जोत अपारा, सस कर सूर वसै मिटे अंधियारा।

तत्तो तत मिले मन माने, दूजा जाए इकत कार्याने, बोले पवना गगन गरजे, नानक ने चल मिलन सहजे, अंतर सुनंग बाहर सुनंग, त्रिभवन सुनंग मसुनंग, चौथे सुनने जो नर जाने, ताको पाप न पुनंग, कट कट सुन का जाने पेओ, आद पुरख निरंजन देओ, जो जन नाम निरंजन राता, नानक सोई पुरख विदाता, सुनो सुन कहे सब कोई, अनहत सुन कहाँ ते होई, अनहत सुन रते से कैसे।

नानक पार परे सच भाए, सो शब्द का कहां वास कथि अले, जित तरिय पव जल संसारो, त्रै सत अंगुल वाई कहिए, तिस कहो कवन आधारो, बोले खेले अस्थिर होवे, क्यों कर अलख लखाए, सुन स्वामी सच नानक प्रणवे, अपने मन समझाए, गुरमुख शब्दे सच निवला अंगुल वाई कहिए, तिस कहो कवन आधारो, बोले खेले अस्थिर होवे, क्यों कर अलख लखाए, सुन स्वामी सच नानक प्रणवे, अपने मन समझाए, गुरमुख शब्दे सच निव लागे, कर नदरी मेल मिलाए, आपे दाना आपे दीना, पूरे पाग समाए, सो शब्द को निरंतर वास अलखं, जय देखा तह सोई, पवन का वासा सुन निवासा, अकल कला तर सोई, नदर करे शब्द कट में वसे, विच्चों परम गवाए, तन मन निर्मल निर्मल

ऊपर साचा सतगुरु शब्द समाए, मन का जियो पवन कथियले, पवन कहाँ रखाई, ज्ञान की मुद्रा कवन अवदू, सिद्ध की कवन कमाई, बिन शब्द रस न आवे अवदू, हों मैं प्यास न जाई, शब्द रते अमृत रस पाया, साचे रहे अगाई, कवन बुद्ध जित अस्थिर रही है, कित पोजन तृप्ता से, नानक दुख सुख सम कर जापे, सतगुरु ते काल न ग्रासे, रंग न राता रस नहीं माता, बिन गुर शब्द जल बल ताता, बिंद न राख्या शब्द न पाख्या, पवन न कादया सच न अरादया, अकथ कथा ले सम कर रहे, तो नानक आत्म राम।

जौन गगन जब तबैना हो तो त्रिभुवन ज्योत आपे निरंकार वर्ण पेख अस्वरूप सो एको एको शब्द विडाणी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित विद जग उपजय पुरखा कित कित दुख बिन सुजाई हो मैं विच जग उपजय पुरखा नाम विसरय दुख पाई गुरमुख हो वै सो ज्ञान तत विचारे हो मैं शब्द जलाए तन मन

मार, गुरमुख मन जीता हूँ मैं मार, गुरमुख साच रखिया उधार, गुरमुख जग जीता जमकाल मार विदार, गुरमुख दरगे ना आवे हार, गुरमुख मेल मिलाए सो जाने, नानक गुरमुख शब्द

परम पुलाई सब जग तेरी, फावी होई पाल सो सब सांत ना दे रही, क्या चले तिस नाल गुर प्रसादी हर त्याई।

को सच कमावे नानक सो तपा मुख अंतर पावे महला तीजा सो तपा जे ओ तप काले सतगुरु नो मिले शब्द समाले सतगुरु की सेवा ओ तप परवान नानक सो तपा दरगह पावे मान पौड़ी रात दिन।

अभय निरंजन परम पद ताका पूखा होए तिसका पूजन नानका विरला पाए कोई महला तीजा अभ्यागत के नाखियन जे पर कर पूजन करे उदरे कारण अपने बहले पेख करेन अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करेन पाल लहन सो अपना निज कर रहन करेन पौड़ी अंबर तरत विछोड़ियन विच सच्चा आसराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुकम वर्तदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तखत सच्चा।

सच्चा सब समाए पौड़ी। आप अलिपत सदा रहे होर तंदे सब तावे, आप नेचल अचल है होर आवे जावे, सदा सदा हर त्याये गुरुमुख सुख पावे, निज करवासा पाये सच समावे, सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द।

नानक अगै कुछ न होए पौड़ी। हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़, अंदर लाल जवेहरी गुरमुख हर नाम पढ़। हर का मंदर शरीर अत सोना हर हर नाम देड़, मनमुख आप खुआयन माया मोह नित काढ़। सबना साहिब एक है पूरे पाग पाया जाई। श्लोक महला पहला। ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंप फिरे, ना सत मूंद मुंडाई केसी, ना सत पड़िया देश फिरे, ना सत

मिले वडाई जिस कट पीतर सब दरवे सब कट मेरे हो सब ना अंदर जिसे खुआई तिस कौन कहे जिसे दिखाला वाटड़ी तिसे फुलावे कौन जिसे फुलाई पंग सिर तिसे दिखावे कौन मेला पहला सो गिर ही जो निग्रह करे जब तब संजम पीछा करे पुन दान का करे शरीर सो गिर ही गंगा का नीर बोले ईश्वर सत स्वरूप परम संत मैं रेखना रूप मेला पहला सो अवधूती जो तू कह आप पिख्या भोजन करे संताप औ हठ पट्टन में पीख्या करे सो अवधूती शिवपुर चढ़े बोले गोरख सत स्वरूप।

हर जाता। मानस दे गुर बचनी पाया सब आत्म राम पचाता। बाहर मूल ना खोजिए कर्माए विदाता। मन मुख हर मंदिर की।

पूजा जप तप सब किछ मन्ने अवर कारा सब बाद नानक मन्या मन्निए बुझिया गुर प्रसाद पौड़ी काया हंस तुर मेल करते लिख पाया तब मैं गुप्त वर्त दा गुरमुख प्रगटाया गुण गावे गुण उच्चरे गुण माए समाया सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया सब किछ आपे

कोई जिथे सो वस्त ना जाते आपे वर्तो जाने नानक गाहक क्यों ले सके न वस्त पछाण महला दूजा सो क्यों अंधा आखिया जे हुक्मो अंधा होए नानक हुक्म ना बुझई अंधा कहिए सोए पौड़ी काया अंदर गरकोट है शब्द संतर देसा आपे ताड़ी लाइन सब में प्रवेशा आपे सृष्ट साजियन आप गुप्त रखे सा गुर सेवा ते जानिया सच प्रतिये सा सब किस सच्चो सच

नानक चिंता मत करो, चिंता किस ही है। मेला पहला नानक एहो जियो मछली चीवर कृष्णा काल, मनुआ अंध न चेत पड़े अचिंता जाल। नानक चित अचेत है।

का सवार गर्भ न की जय नानका मत सिर आवे पार पौड़ी सोत सत्संगत शब्द मिले जो गुरमुख चले सच त्याइन से सच्चे जिन हर खर्च तम पल्ले भगत सोन गुण गाव दे गुरमत अचले रतन विचार मन वस्या गुर कै शब्द पल्ले आपे मेल।

साध जन नानक हर प्रभु बुझिया गुर सत गुर कै प्रसाद पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहु आपे ही खटिया आपे कृपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीम न पाए अलख ब्रह मटिया अगम अथा ब्या

मन तन हुए निहाल बिंदक नजर चास नौ निध नाम निधान गुर के शब्द लाग तिसे मिले संत खाक मस्तक जिसे पाग। श्लोक महला पंजवा हरनाथी को सच वैन सुनाई जो तो

जिस दा करता मित्र सब का सवारिया, जिस तू आवे चित सो प्रवान जाने, जिस तू आवे चित बहुता तिस्ताने, जिस तू आवे चित सो वड परवारिया।

सोवै चक्र बनाए माया नो बहुतावे अंदर मैल ना उतरे हो मैं फिर आवे जावे नींद व्याप्या काम संतापया मुखो हर हर कहावे वैष्णो नाम कर्म हो जुगता।

दारोहा व्याप्या दुर्मत कुबुद कुमूरा मन लागा तुस्मोहा ठगै से ती ठग रल आया साथ दे इको जेहा सतगुर सराफ।

सा पौड़ी, जिस तैमस्त कर्म हुए सो सेवा लागा, जिस गुर मिल कमल पर गासिया सो अंदिन जागा, लगा रंग चरणार बिंद।

खती है, जोत ओहा जुगत साए सहकाया फेर पलटी है, चुल्ले सो छप निरंजनी मल तकत बैठा गुरहट्टी है।

रुसना काम क्रोध मद मत्सर काट काट कस दी निरे। कोई है रे संत सहज सुख अंतर जा को जप तप देव दलाली। एक बूंद पर तन मन देवो।

तीर्थ बर्त नेम सुख संजमे रव सस गहने दियोरे सुरत प्याल सुधा रस अमृत उहो महारस प्योरे निजर धार चुए अत निर्मल ए रस मनु आरा।

जे मुख वेद गायत्री निपसै सो क्यों ब्राह्मण बिसर करे। जा कह पाए जगत सब लागे सो क्यों पंडित हर ना कहे। काहे मेरे बामन हर ना कहे राम न बोले पांडे दोजक परे। रहाओ आपन ऊंच नीच कर भोजन हठ कर्म कर उदर परे। चौदस अमावस रच रच मांगे कर दीपक ले कूप परे। तू ब्राह्मण मैं काशी जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कह बने। हमरे राम नाम कह उबरे वेद परो।

अंतर जोत राम परदासा, गुरमुख बिरले जानी राव। पावर एक पोप रस बीदा, बारे ले उर्धरिया। सोरे मजे पवन चकोरिया, आकाशे फरफरिया। सहज सुन एक बिरवा उपजिया, करती जलहर सोखिया। कह कबीर हो ताका सेवक, जिन इहो बिरवा दे।

रहे निरालम तारी। कहत कबीर सुनो रे संतो, कर्म दया कर बाड़ी। कवन काज सृजे जग पीतर, जन्म कवन फल पाया। पवन इद तरन तारन, चिंता मन इक निमख ना एहो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभु जीओ पिंड खा दिया। तिसकी पाओ भगत नहीं सादी रहाओ। पर मन पर तन प्रति निंदा, पर अपवाद न छूटे। आवागमन होत है फुन फुन, एहो प्रसंग न टूटे। जिहि कर कथा होत हर संतन, इक निमख न कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा।

जे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपो कह कर बजावे तूर, अनहद बजे सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कट नाहे। रहाओ जे सिमरन नाही ननकार, मुक्त करे उतरे बहु।

मंदर सोवे पटंबर तान सेज सुखाली बिगसै जियो सो सिमरन तू अंगन पियो जे सिमरन तेरी जाए बलाए जे सिमरन तुझको है नमाए सिमर सिमर हर हर मन गाये एहो सिमरन सतगुर ते पाये सदा सदा सिमर दिन रात उठत बैठत सास

अंतर करे अपसार रहाओ। हीरा देख हीरे करो आदेश, कहे कबीर निरंजन अलेख। दुनिया होशियार बेदार, जागत मुसीयत हौ रे पाई। निगम होशियार पहरुआ देखत जम ले जाए रहाओ। नींब पयो आंब आंब भयो, नींबा केला पाका झारे। नालियेर फल सेबर पाका, मूरख मुग्ध गवार। हर भयो खांड रेत में बिखरियो, हस्ती चुनियो न जाई। कह कबीर कुल जा।

बालक पालन पौड़ी अले अंतर बाहर काज बिरुदी चीत सो बारिक राखी अले वेद पुराण शास्त्र आनंता गीत कवित ना गावोगो। अखंड मंडल निरंकार में अनहद बेन बजाओगो बैरागी रामे गावोगो शब्द अतीत अनाहद राता आकुल के कर जाओगो रहाओ पीड़ा पिंगला और सुख मना पौने बंद रहाओगो चंद सूरज दोए सम कर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो तीर्थ देख ना जल में पैसो जी जंत ना सतावोगो।

ते आया खेचर पूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया नामा प्रणवय परम तत्व है सतगुरु हुए लखाया राम कली कर दूजा बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे अगन दह काया कल्प की जय अश्वमेध जग की जय सोना गर्भ दान दी जय राम नाम सर तऊ न पूजे।

राम नाम सर तौ न पूजय। असदान गज दान सेजा नारी पूम दान ऐसो दान नितम कह की जय। आत्म जो निर्माइल की जय आप बराबर कंचन दी जय। राम नाम सर तौ न पूजय। मने न की जय रोष जमे न दी जय दोष। निर्मल निर्वाण पद चीन ली जय। जसरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र प्रणवे नामा तत् रस अमृत पी।

सार सतगुरु प्रसाद इला पिंगुला और सुखमना तीन बसे इकठाई बेणी संगम तह राग मन मज्जन करे तुथाई संतो तहां

तह बाजे शब्द अनाहद वाणी, तह चंद ना सूरज पौन ना पानी, साथी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुर्मत चीजे, अमृत रस गगनंतर बीजे, एस कला जो जाने पे हो, एते पास परम गुरुदेव, दशम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाथ हाथ पर आला, आले पीतल थाती, जागत रहे।

जप एमस नाम हरे कोट कोट दोख बहु कीने सब पर हर पास खरे रहाओ हर हर नाम जपे आराधे सेवक पाए खरे किल बिख दोख गए सब नीकर जो पानी मैल हरे किन किन नर नारायण गावे मुख बोले नर नर हरे पंच दोख असाद नगर में एक खिन पल दूर करे वड पागी हर नाम ते आवे हर के भगत हरे इनकी संगत देह प्रभ जाचो मैं मूड मुगद निस्तरे कृपा कृपा तार जग जीवन रख ले वो शरण परे।

हम जीवे देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाए हर मेलो आनंद भले मत महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सके गुर प्रसादी हर नाम दियायो हम सतगुरु चरण पखे रहाओ उत्तम जगन्नाथ जगदीशर हम पापी शरण रखे तुम वड पुरख दीन दुख पंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊंच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सके जो चंदन संग बसे निम

मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ, जन्म जन्म के पूल चूक हम अब आए प्रभु शरण गे, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हर राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को नाम।

तुमरे गुण प्रभ कह न सके हम, तुम वड वड पुरख वड गे, जन नानक कहो दया प्रभ धारो, हम सेवे तुम जन पगे। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम मने, जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी, मत गुरमत नाम बने रहाओ, हर जन हर जस हर हर गायो, उपदेश गुरु गुरु सुने, किल बिख पाप नाम हर काटे, जिव खेत किसान लुने, तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो, हम कह ना सके हर गुने, जैसे तुम कैसे प्रभ तुम ही, गुण जानो प्रभ अपने, माया फास बंद बहु बंदे, हर जप्यो खुल खुलने,

पावै जन नानक के प्रभु वडने नट महला चौथा मेरे मन कल कीरत हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभधारी लग सतगुर हर जपने रहाओ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावे हर

फिर मात पिता साधन संत मेरे संत सहाई वीर खुले प्रम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर विष्णु कहे नानक जस दावत ठाकुर गुणी गहीर नट महला पंजवा अपना जन आपे आप उधारियो आस पैर जन कै संग बस्यो मन ते नाहि विसारियो रहाओ बरन चेन नाहि किछ पेख्यो दास का कुल ना विचारियो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुभाय सवारियो महा बिखम अग्नि का सागर तिस्ते पार उतारियो पेख पेख नानक बिगसानो पुने पुने बलहारियो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहो कोट अपराध मिटे खिन भीतर ताका दुख ना रहो रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी साधु संग लहो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद भयो नट महला पंजवा चरण

पूरन पूर रहे कृपा निध कट कट दुष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दो कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दासन दास दसायन।

हर पज जन्म पदार्थ जीत, कोट पतत होए पुनीत, नानक दास बल बल कीत, नट अष्ट

खिन पल रह न सकूं बिन सेवा, मैं गुरमत नाम समारे रहाओ। हर हर हर हर हर मन त्यावो, मैं हर हर नाम प्यारे। दीन दयाल पे प्रभ ठाकुर, गुर कै शब्द सवारे। मधुसूदन जग जीवन मादो, मेरे ठाकुर अगम।

सहस मूरत एको प्रभ ठाकुर प्रभ एको गुरमत तारे गुरमत नाम दमोदर पाया हर हर नाम उर्धारे हर हर कथा बनी अति मीठी जो गूंगा गटक समारे रसना साध चखे पाए दूजे हथ पी के लोग विकारे जो गुरमुख साध चखे राम नामा सब अंधा साध विसारे गुरमत राम नाम तन

मैं गुरमत नाम समारे सास सास जाए नामे बिन सो बिरथा सास बिकारे कृपा कृपा कर दीन प्रभ सरनी मोको हर जन मेल प्यारे। नानक दासन दास कहत है।

क्या बलिहारे पखंड पखंड कर कर कर में लोभ पखंड जग बुरियारे हलत पलत दुखदाई होवे जमकाल खड़ा सुर मारे उगवे दिन आल जाल समाले दिख माया के विस्तारे आई रैन पया सुपनंतर दिख सुपने भी दुख सारे कल्लर खेत लै कूड़ जमा।

किए कर सेवक पग लगवारे जगन्नाथ सब जंत्र उपाए नक्खीनी सब नथहारे नानक प्रभु खिंचे तिब चलिए जो पावे राम प्यारे नट महला चौथा राम हर अमृत सर नवारे सतगुरु ज्ञान मजन है नीको कीनो मिल कलमल पाप उतारे रहाओ। संगत का गुण बहुत अधिकाई परसुआ गणक उधारे परस न परस पै कुब जाको ले बैकुंठ सिधारे अजामल प्रीत पुत्र प्रतकीनी कर नारायण बुलारे मेरे ठाकुर के मन पाए पावनी जम शंकर मार बिदारे मानुख

किछ ना समारे। जब पर मंदर आग लगानी तब कूप कदै पनिहारे। साकत सो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम विसारे। साकत बचन बिछुआ जो डसिए तब साकत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाए लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सच सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूरब जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लाल में लाल गुलारे। जैसा रंग दिल सो होवे क्या नानक जंत विचारे। नट महला चौथा राम गुर शरण प्रभु रखवारे। जो कुंचर कदुए पकड़ चलायो कर ऊपर कर निस्तारे रहाओ। प्रभ के सेवक बहुत अपनी के मन श्रद्धा कर हर तारे। मेरे प्रभ श्रद्धा भगत मन पावे जन की पै सवारे। हर हर सेवक सेवा लागे सब देखे ब्रह्म पसारे। एक पुरुष एक नगरी आवे सब एका नगर निहारे। हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारे। आप दयाल दया दान देवे बिच पाथर कीरे कारे। अंतर वास बहुत मुस्काए ब्रह्म फूला मृग सिंहारे। बन बन टूट

सत्य है सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे, सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया, मन बीजिया फैवारे, जो जन चंद्र हास दुखिया, त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लूकी जा रे, प्रभ को जन अंतर हृदय लोचे, प्रभ जन के सांस निहारे, कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए, जन पीछे जग निस्तारे, आपन आप प्रभ ठाकुर, प्रभ आपे सृष्ट सवारे, जन नानक आपे आप सब वरते, कर कृपा आप निस्तारे, नट महला चौथा, राम कर कृपा लेहु उबारे,

संगत परम पद पाया पदमा सुन के गटकारे नित नित काया मज्जन किया नित मल मल देह सवारे मेरे सतगुरु के मन बचन न पाए सब सोकट चार सिवारे मटक मटक चल सकी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरुमुख सेवा मेरे प्रभु पाई मैं सतगुरु अलख लखा।

विचारे निज पर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे। तो गुण ईश बरन नहीं साको तुम मंद हम निकीरे नानक कृपा करो गुर मेलो मैं राम जपत मन तीरे। नट महला चौथा मेरे मन पद ठाकुर अगम अपा।

अनित जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रवराया, रहाओ काम क्रोध लोभ मोह नित चगरते चगराया, हम रात रात दीन तेरे हर शरण हर प्रवराया, शरणांगति प्रभ पालते हर भगत वचन नाया, प्रहलाद जन हर नाथ पकड़िया हर राख लियो तराया, हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया।

आया हर हार हर उधारियो जन नानक नाम समाया माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुख दाता सत्संगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पचाता रहाओ वड पागी गुरु दर्शन पाया गुरु मिले हर प्रभ जाता दुर्मत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया तिन पूछो हर की

हर प्रभु आए मिले सुख पाया, सब के निमित पाप गवाता। राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाई है वड पागी, जन नानक चरण पराता। माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन पावनी हर त्यायो, अपरंपरो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो। रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतो हर रायो, हर आन मेलो सतगुरु खिन बंद मुक्त करायो। प्रभु मस्त के तुरली किया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगन बाजया, हर मिलियो मंगल गायो। पतित पावन नाम नर हर मंद पागिया, नहीं पायो ते गर्भ जोनी गालियां, जो लोन जलाया गलायो। मत दे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन में लायो, हर राम नामे रहो लागो, जन नानक नाम समायो। माली गौड़ा महला चौथा, मेरा मन राम नाम रस

अवर टहला चूठियां नित करे जम सिर मार रहाओ जिना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह विकार सब तजो दूजी आसड़ी रख आस इक निरंकार इक परम पूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होव ना सो होया को ना मेटन हार अगम रूप गोविंद का अनेक नाम अपार।

नमस्कार। जास जपत होवत उधार रहाओ, जा कै सिमरन मिटे तंद, जा कै सिमरन छूटे बंद, जा कै सिमरन मूरख चतुर, जा कै सिमरन कुल्हे उदर, जा कै सिमरन पौ दुख हरे, जा कै सिमरन अपदा टरे, जा कै सिमरन मुच्चत पाप, जा कै सिमरन नहीं।

साध संगत पज पूरन काम रहाओ, बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत, बूजत दीपक मिलत तिलत।

हाय बिलास, जैसो आंडो हृदय माहे, जैसो दानो चक्की दराहे, बहुत उपमा थोर कही, हर अगम अगम अगाज तुही, ऊंच मूचो बहु अपार, सिमरत नानक तरे।

पोर, हस्त हमरे संत टहल, प्राण मन तन संत बहल, संत संग मेरे मन की प्रीत, संत गुण बसे मेरे चीत, संत आज्ञा मने मीठ, मेरा कमल बिकसे संत डीठ, संत संग मेरा होए निवास, संतन की मोहे बहुत प्यास, संत बचन मेरे मने मंत, संत प्रसाद मेरे

करन करावन हाजरा हजूर रहाओ। सुनत जियो जास नाम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, सगल निद हर हर हरे।

सदा सदा से वो कृपाल, सदा कर्म जाके दीवान, बे मोहताज नहीं किस कान, सब किस करना अपन आप, रे मन मेरे तू ताको जाप, साध संगत को हों बलिहार, जास मिल हो वै उधार, नाम संग मन तन्हे रात, नानक को प्रभ करी दात, माली गौड़ा मैला पंजवा, दो पदे इको अंकार, सतगुर प्रसाद। हर समरथ की सरना, जियो पिंड तान रास मेरी, प्रभ एक कारण करना रहाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाये, जीवने का मूल, रव रया सर्वत ठाई, सुख मो अस्थूल, आल जाल विकार तज सब, हर गुना नित गाओ, कर जोड़ नानक दान मांगे, देहो अपना नाओ, माली गौड़ा महला पंजवा, प्रभ समरथ देव अपार, कौन जाने चलत तेरे, किछ अंत नाही पार रहाओ, इक खिने थाप उथाप दा, कर पन करने हार।

तू तन के सो सांवलियो बीठ लाए रहाओ। कर तरे चक्र बैकुंठ ते आए, गज हस्ती के प्राण उधारी अले। दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारी अले। गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारी अले। ऐसा अदम अजात नाम दियो तो शरणा।

अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे। एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आशा रे। प्रणवे नामा पैने कामा को ठाकुर को दासा रे। राग मारू मेला पहला कर पहला।

नानक शरण तुहारिया, देखो सदा हजूर शब्द पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले है। खेमे छत्र सराय चे दिसन रथ पीड़े, जिन्नी तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले।

विजोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग, मारू मैला पैला। मिल मात पिता पिंड कमाया, तिन करते लेख लिखाया। लिख दात जोत वड़े आई, मिल माया सुरत गवाई। मूर

कागद मन मसवाणी बुरा पला दोए लेख पए। ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए तो गुण नाही अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ जाली रैन जाल दिन हुआ जेती कड़ी फाही तेती। रस रस चोग चुगै नित फासे छूटस मूड़े कहन गुणी। काया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई। पया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तने हा। एक नाम अमृत उह देवे तो नानक त्रिष्टस देहा। मारू महला पहला बिमल मझार बस निर्मल जल पद्मन जावल रे। पद्मन जावल जल रस संगत संग दोख नहीं रे। दादर तू कब है ना जान सरे पक्ष सिबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लखस रे। रहाओ बस जल नित ना वस्त अलियल मेर चचा गुन रे। चंद कुमदनी दूरों निवसस अनपौ कारण रे। अमृत खंड दूध मद संचस तू बन चातुर रे। अपना आप तू कब हो ना छोड़स पिसन प्रीत ज्यों रे। पंडित संग वसे जन मूर्ख आगम सास सुने। अपना आप तू कब हो ना छोड़स स्वान पूछ ज्यों रे। एक पाखंडी नाम ना राचे एक हर हर चरणी रे। पूरब लिखिया पावस नानक रसना नाम जप रे। मारू महला पहला श्लोक। पतित पुनीत असंख हो है हर चरणी मन लाग। अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक पाग। शब्द

तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, पंत नानक अंदेसा एही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू मैला पैला मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाउ सभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म ना करना।

अवर पला संसार मारू महला पहला एहो तन सर्व रहा भरपूर मन मुख फिर ऐसे जाने दूर सो तन वखर नाम हृदय हमारे जिस तू दे तिसे निस्तार है रहाओ ना एहो तन जले ना तस्कर ले जाए ना एहो तन डूबे।

इस तन बिन कहो किने परम गत पाए, पणत नानक अकथ की कथा सुनाए। सतगुर मिले ता यो तन पाए, मारू मैला पैला सूर सर सोस ले, सोम सर पोख ले, जुगत कर मरत सो संबंध की जय। मन की चपल स्यों जुगत मन राखिए, उड़े ने हंस ने कंद चीजे। मूड़े काए चे परम पुला, ने चीनिया परमानंद बैरागी रहाओ। अजर गहो जार ले, अमर गहो मार ले, प्रात तज छोड़ तो अप्यो पीजे। मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए, उड़े ने हंस ने कंद चीजे। पणत नानक जनो रवे, जे हर मनो मन पवन स्यों अमृत पीजे। मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए, उड़े ने हंस ने कंद चीजे। मारू मैला पैला माया मोई ना मन मुआ, सर लहरी मैं मत बोयत जल सिर तरट के, साचा वखर जित। मानक मन में मन मारसी, सच ना लागे कत। राजा तख्त टिके गुणी पै पंचायन रत। बाबा साचा साहेब दूर ना देख, सर्व जोत जग जीवना सिर सिर साचा लेख। रहाओ ब्रह्मा विष्णु रिखी मुनि, शंकर इंद तपे पेखारी। माने हुक्म सो है दर साचे, आकी मरे अफारी। जंगम जोत जति सन्यासी, गुरुपुरे विचारी। बिन सेवा फल कभू न पावस, सेवा करनी सारी। नितनया तन निगुरिया, गुर निमानिया तू मान। अंदुले मानक गुर

ज्ञान रतन मन मांझी है, बहुड़ न मैला होए, जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन न होए, नानक सिर दे छुटी है, मन तन साचा सोए, मारू मैला पहला, जोगी जुगत नाम निर्माइल, ताके मैल न राती, प्रीतम नाथ सदा सच संगे।

ब्रह्मण ब्रह्म ज्ञान स्नानी हर गुण पूजे पाती एको नाम एक नारायण त्रिभुवन एका ज्योति जिहवा डंडी एव कट छाबा तोलो नाम अजाची एको हाथ साओ सबना सिर वनजारे एक पाती दोवे सिरे सतगुरु निबेड़े सो बूजे जिस एक लिव लागी जियो रह निबराती शब्द वसाए परम चुकाए सदा सेवक दिन राती ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका अगम गुरु पुनवासी गुर बचनी बाहर कर एको नानक पया उदासी राग मारू मैला पहला कर पंजवा।

जियो जिसनु साचा सिफती लाए गुरमुख विरले किसे बुझाए अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का व्यापारी जियो रहाओ फिर सेती तन प्रेम रचाए गुर के शब्द तथा चित लाए सहज सेती तन खरी सुहेली तृष्णा तिखा निवारी जियो सहसा तोड़े परम चुकाए सहजे सिफती तनख चढ़ाए गुर के शब्द मरे मन मारे।

शब्द पेद प्रम कटिया गुरु नाम दिया समझाए इहो मन लालच करदा फिरे लालच लागा जाए तंदे पूर्व आपिया जमपुर चोटा खाए नानक सब किछ आपे आप है दूजा नाही कोए भगत खजाना बख्शियो नु गुरमुखा सुख होए मारू मैला तीजा सच रते से टोल लो से विरले संसार तिन मिलिया मुख उजला जप नाम मुरार बाबा साचा साहिब हृदय समाल सतगुर अपना पुछ देख लेहो वखर पाल रहाओ एक सच्चा सब सेम दी तुर पाग मिलावा होए गुरमुख मिले से ना विछड़े पावे सच सोए एक पगती सार ना जाननी मनमुख परम पुलाए ओना विच आप वर्तदा करना किछु ना जाए जिस नाल जोर ना चले खले की चै अरदास नानक गुरमुख नाम मन वसै ता सुन करे साबास मारू मैला तीजा मारू ते शीतल करे मनूरो कंचन होए सो साचा साला ही है तिस जेवर अवर न कोए मेरे मन अंदिन त्याए हर नाओ सतगुर के बचन अराद तू अंदिन गुण गाओ रहाओ गुरमुख एको जानिए जा सतगुरु दे।

सतगुरु प्रसाद। जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर शरण परे। दालद पंच सुदा में मिलियो भगति पाए तरे। भगत वचल हर नाम किरतारथ गुरमुख कृपा करे। मेरे मन नाम जपत उदय त्रू प्रहलाद बिदर दासी सुत। गुरमुख नाम तरे रहा कल युग नाम प्रदान पदार्थ भगत जना उदरे। नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन सब दोख गए चमरे। गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किलबिक पाप तरे। जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दोख पर हरे। बेसुआ रवत अजामल उदरियो मुख बोले नारायण नर हरे। नाम जपत उग्रसेन गत पाई तोर बंधन मुक्त करे। जन को आप अनुग्रह किया हर अंगीकार करे। सेवक पैज रखे मेरा गोविंद शरण परे उदरे। जन नानक हर कृपा धारी उर्धरियो नाम हरे। मारू महला चौथा सिद्ध समाध जपियो लिव लाई। साधिक मुन जपिया जति सती संतोखी त्याया। मुख इंद्रादिक रविया शरण परे जपियो ते भाए। गुरमुख पार पया मेरे मन नाम जपत करया। तन्ना जट बाल्मीक बटवारा गुरमुख पार पया रहाओ। सुर नर गण गंधर्वे जपियो रिख बपुरे हर गाया। शंकर ब्रह्मे देवी जपियो मुख हर हर नाम जपिया। हर हर नाम जिना मन पीना ते गुरमुख पार पया। कोट कोट ते तीस्त्यायो हर जपत्या अंत न पाया। वेद पुराण सिमरत हर जपिया मुख पंडत हर गाया। नाम रसाल जिना मन वस्या ते गुरमुख पार पया। अनत तरंगी नाम जिन जपिया मैं गणत ना कर सकिया। गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया। गुर तार कृपा हर नाम दृढ़ायो जन नानक नाम लया।

कर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा। हर भाव लगा बैरागिया वडपागी हर मन राख, मिल संगत सरदा उपजै गुर शब्दी हर रस चाख। सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख, मन प्यारिया मित्रा हर हर नाम रस चाख। गुरपूरे हर पाया हलत पलत पत राख, रहाओ हर हर नाम त्याये हर कीरत गुरमुख चाख। तन तरती हर बीजिए विच संगत हर प्रभ राख, अमृत हर हर नाम है गुरपूरे हर रस चाख। मन मुख तृष्णा पर रहे मन आशा दह दिस।

हर हर कृपा करे बनवाली, हर हृदय सदा सदा समाली। हर हर नाम जपो मेरे जीड़े, जप हर हर नाम छड़ावे जियो रहाओ। सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचे हर दिलो पसाओ। हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो। नवे छिद्र स्रवें अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावे जियो। माया मोह बिखम है पारी, क्यों तरिये दुत्तर संसारी। सतगुर बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लंगावे जियो। तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे। सब किलविक काटे हर तेरे, हर तन राखो हर तन संचो। हर चलदिया नाल सखाई जियो, जिसनो कृपा करे सो त्यावे। नित हर जप जापे, जप हर सुख पावे। गुर प्रसादी हर रस पावे, जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ। निर्भव निरंकार सतनाम, जग में श्रेष्ठ उत्तम काम। दुश्मन दूत जम काल ठे मारो, हर सेवक नेर ना जाई जियो। जिस ऊपर हर का मन मानिया, सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया। जे उसका बुरा कहे कोई पापी, तिस जम कंकर खाई जियो। सब में एक निरंजन करता, सब कर कर वेखे अपने चलता। जिस हर राखे तिस कौन मारे, जिस करता आप छड़ाई जियो। हौ अंदिन नाम लई करतारे, जिन सेवक भगत सबे निस्तारे। दस अठ चार वेद सब पूछो, जन नानक नाम छड़ाई जियो। मारू मैला पंजवा, कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद, डर पे तरत आकाश नखत्रा।

सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ देह तार अर देवा डर पै सिद साधक डर मोया लख चौरासी मर मर जन में फिर जोनी जोया राजस सातक तामस डर पै केते रूप उपाया छल बपुरी ए कौला डर पै अत डर पै धर्म राया सगल समग्री डरे व्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोहे दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ त्रू बारिक हर सिमरत अमर अटारे पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बिदारे मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो शरण द्वारे रहाओ बाल्मीक सुपचारो तरयो बद्धिक तरे बिचारे एक निमख मन माहे अराद्यो गजपत पार उतारे कीनी रखिया भगत प्रहलादे हर नाखस नखें बिदारे।

ए विद खोजी बहु प्रकारा, बिन संतन नहीं पाए। तुम दातार वडे प्रभ समरथ, मांगन को दान आए। त्यागो सगला मान मैता, दास रेण शरणाए। कहो नानक हर मिल पए कै, महा आनंद सुख पाए। मारू मैला पंजवा, कवन थान तीरो है नामा। कवन बस्त अंकारा, कवन चेहन सुन ऊपर छोयो।

आनंद रखियो गे पीतर उठ उआ हूँ कौ दौरेओ आज्ञा में पूख सोई कर सूखा सो घरख नहीं जानियो जो जो हुकुम पयो साहिब का सो माथे ले मानियो पयो किरपाल ठाकुर सेवक कहो सवरे हल्त पलाता तन सेवक सफल उह आया जिन नानक खसम पछाता मारू मैला पंजवा खुलिया कर्म किरपा पई ठाकुर कीर्तन हर हर गाई श्रम था का पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई अब मोहे जीवन पदवी पाई चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई राव काम क्रोध लोभ मोह निवारे निवरे सगल बैराई सद हजूर हाजर है नाजर कते न पयो दुराई सुख शीतल सरदा सब पूरी होए संत सहाई पावन पतत किए खिन पीतर मैं मा कथन न जाई निरपो पय सगल पै खोए गोविंद चरण उठाई नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिन सुलिवलाई मारू मैला पंजवा जो समरथ सर्व गुण नायक तिसको कबू न गाव सिरे छोड़ जाए खिन पीतर ताको हुआ को फिर तावसरे अपने प्रभ को क्यों ना समारसने बैरी संग रंग रस रचिया।

दुलारियो हस्त पाव चरे खिन पीतर अग्न संग ले जा रहे हो मुड़े ते मन ते राम बिसारे हो लून खाए करे हराम खोरी पेखत नैन बिदारे हो रहाओ असाद रोग उपजो तन पीतर तरत न काहू तारे हो प्रभ विसरत महा दुख पायो एहो नानक तत विचारे हो मारू मैला पंजवा चरण कमल प्रभ राखे चीत हर गुण गावे नीता नीत तिस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रहाओ जा के वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गयो सा

प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसार्यो अज्ञानथ। होछा मद चाख होए तुम बावर दुलब जन्म अकारथ। रे नर ऐसी करें इयानथ तज सारंग तर परम तू पूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ। रहाओ तरणी तर त्याग नीच कुल सेवें हों हों करत बिहावथ। फोकट कर्म करें अज्ञानी मनमुख अंध कहावथ। सत होता असत कर मानिया।

मकसूद वै सब एक है नाम तरानत। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानत। मारू मैला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मनुखाए। बिसार हर जियो बिखे पोगे तपत थम गल लाए। रे नर काए पर ग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दव तुम। नहीं सुनियो तर्म राय रहाओ विकार पाथर गले बांधे। निंद पोट सिराए महासागर समुन्द लंगना पार न पर ना जाए। काम क्रोध लोभ मोह व्याप्यो नेत्र रखे विराए। शीश उठावन न कबहू मिले महादुत्तर माए। सूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अल्पाए। स्वभावत जैसे बैसंतर अल्पत सदा निर्मलाए। जिस कर्म खुलिया तिस लया पर्दा जिन गुर पे मनिया सुभाए। गुर मंत्र अवखद नाम दीना जन नानक संकट जोन न पाए। रे नर इन विद पार पराए त्याए हर जियो होए।

प्रपेखिया मेरा मन छोड़ न कतहू जाया था। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था। मोल अमोल न पाया जाई कर कृपा गुरु दिवाया था। रहाओ अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वज्यो तें अमृत नाम चो आया था। तोट नाही मंत्रिष्णा बूजी अखुट पंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे अकड़ कड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा सहजे मन खेलाया था। कहो नानक परम।

ताऊ लागा गोविंद स्यों काल पाई खाए, खेत मेरे जमिया निखुट ना कब हो जाए, पाया अमोल पदार्थो छोड़ ना कतू जाए, कहो नानक सुख पाया तृप्त रहे आघाए, मारू मैला पंजवा फूटो आंडा परम का मने पयो प्रगास, काटी देरी पगे ते गुड़ की नी बंद खलास, आवन जान रहे हो कपट कलाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दियो रहा,

नाम ना दिया मेरे सतगुरु से मर जन में गावारा, मेरे सतगुरु ही पत रास चीत आवे तब ही पत पूरी, विसरत रलिए खाक रहाओ रूप रंग खुशियां मन पोगण, केते छिद्र विकारा हर का नाम निधान कल्याणा, सुख सहज इहो सारा माया रंग बिरंग किने में, जो बादल की छाया से लाल पे गूढ़े रंग राते, जिन गुरु मिल हर हर गाया ऊंच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा, नामो वडियाई सोबा नानक खसम त्या।

जिस होवे भाग मथाने सो मिलिया जे हर मन पाया सो पूला जे प्रभु पुलाया नह आपो मूर्ख ज्ञानी जे करावे सो नाम वखानी तेरा अंक न पारा वारा जन नानक सद बलिहारा।

मात गर्भ में जिन प्रत पारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया। कोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमरत अवगुण सब टकिए। चरण कमल उर अंतर तारो, दिखिया बनते जियो।

नानक ताके बल बल जाए। राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरै तिसका निस्तारा रहाओ। मिथ्या वस्त सत पर मानी, हित लायो सठ मूर अज्ञानी। काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता। अपना छोड़ पराया राता, माया मद मन तन संग जाता। कृष्ण ना बूझे करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला। आवत अकेला जात अकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला। पाए ठगोरी आप बुलायो, नानक कीर्तन।

सारा अनेक दुख और बहुत सजाई ताकि कीमत कह न जाए। प्रभु विसरत नरक में पाया तह मात ना बंद ना मीत ना जाया। जिसको होत कृपाल स्वामी सोजन नानक पार गिरामी। प्रमत प्रमत प्रभु स्वर्णी आया दीना नाथ जगत पित माया। प्रभु दयाल दुख दर्द बिदारण जिस पावे तिस ही निस्तारण। अंधकूप से काडनहारा प्रेम भगत होवत निस्तारा। साद रूप अपना तन तारिया मां अगन ते आप उबारिया। जप तप संजम इस्ते किछ नाही आग अंत प्रभ अगम अगाही। नाम दे मांगे दास तेरा हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा। मारू महला पंजवा कत कौ डह कावो।

भगता का आज्ञाकारी सदा सदा सुखदाई, अपने को कृपा करियो इक नाम त्याई, नानक दीन नाम मांगे दुखिया परम चुकाई। मारू मैला पंजवा मेरा ठाकुर अपारा।

जो अवर न कोई जीवन प्रतपाल समा है होसी आहे दया मोह की जय देवा नानक लागो सेवा मारू महला पंजवा पतत उधारन तारन बल बल बले बल जाये ऐसा कोई पेट है संत जित हर हरे हर प्याय मोको कोई न जानत कहियत दास तुम्हारा यहा ओट आधारा।

पौ व्यापै मिले सुख विश्राम, गुर प्रसाद नानक बखाने, हर भजन तत् ज्ञान मारू मैला पंजवा। जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे के, पुत्र मित्र विलास बनता टूटते इहने, मेरे मन ना

नाम इक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो मारू मैला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखे लगन देत न सेक।

हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमायड़े जी देही विच जियो आए पया जिथे अगन पखे परहारे पूरद मुख महा गुबारे सास सास समाले सोई उठे खत्म छड़ाए लया विचों गर्भे निकल आया खत्म विसार दुनी चितलाया आवे जाए पुवाये जोनी रहन न किती खाए बया मेरवा रख लयन आपे जी जंग सब तिसके थापे जन्म पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया।

रो प्रदान है। कट कटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जा का थान है। आवे न जावे संगे समावे पूरन जाता काम है। भगत जना का राखना आरा संत जीवे जब प्राण अदा।

फूले मार्ग जो दसे तिसके लागो पाए, गुरबिन दाता को नहीं कीमत कह न जाए। साजन देखा ता गल मिला साज पठायो लेख, मुख तिमाने तन खरी गुरमुख आखी देख। खुद पावे तू मन वसे नदरी कर्म विशेख, भूख प्यासे जे पवे क्या तिस मांगो दे। बीजे सूजे को नहीं मन तन पूरन दे, जिनकी आतिन देखिया आप वडाई दे। नगरी नायक नवतनो बालक लील अनूप, नार ना पुरख ना पंखनु साचो चतुर स्वरूप। जो तिस पावे सोती है तू दीपक तू धूप, गीत साध चाखे सुने बाद साध तन रोग। सच पावे सच

तेरा हुक्म लाला मन्ने ए करनी सार गुर सागर अमृत सर जो इच्छे सो फल पाए नाम पदार्थ अमर है हृदय मन वसाए गुर सेवा सदा सुख है जिसनो हुक्म मनाए सोना रूपा सब तात है माटी रल जाई बिन नावे नाल न चलई सतगुर बूझ बुझाई नानक नाम रते से निर्मले साचे रहे समाई मारू मैला पहला हुक्म पया रहना नहीं तुर फाटे चीर तेहो मन अवगुण बांधया सहो दे शरीर है पूरे गुर बख्शाई है सब गुने फकीर है क्यों रही है उठ चलना बुद्ध शब्द बिचारा जिस तू मेले सो मिले गुर हुक्मा पारा रहाओ जो तू राखे त्यों रहा जो दे सो खाओ जो तू चलावे त्यों चला मुख अमृत नाओ मेरे ठाकुर हथ वड्याईया मेले मन चाओ कीता क्या सालाये कर देखे सोई जिनकी आसो मनोसे मैं अवर न कोई सो साचा सालाये साची पत होई पंडित पढ़ न पहुंचई बहु आल जंजाला पाप पुन दे संग में खुदिया जमकाला विछोड़ा पौ विसरे पूरा रखवाला जिनकी लेखे पत पवे से पूरे पाई

तेरे प्रभु पावन से उजले सब मैल परी जाए, मैला उजर ताकी है पारस संग पी जाए, वन्नी साचे लाल की किन कीमत की जाए, पेची हाथ न लबई तीरथ नहीं दाने, पूछो वेद परंतया मूठी गिन माने, नानक कीमत तो करे पूरा गुर ज्ञाने, मारू महला पहला मनमुख लहर कर तज विगूचे, अवरा के कर हेरे, गृह धर्म गवाए सत गुरु ना पेटे, दुर्मत कूमन केरे, दिसंतर पवे पाठ पर था का तृष्णा होए वधेरे, काकी पिंडी शब्द ना चीने उधर परे जैसे टोरे, बाबा ऐसी रवत रवे सन्यासी, गुर के शब्द एक लिव लागी, तेरे नाम रते तृप्ता सी राव, कोली गेरू रंग चढ़ाया, वस्त्र पेट पे खारी, कापड़ तार बनाई खिंसा चोली माया तारी, कर कर मांगे जग प्रबोधे मन अंधे पतहारी, परम पुलाना शब्द ना चीने, जुए बाजी हारी, अंतर अग्न ना गुर बिन बूझे, बाहर कुवर तापे, गुर सेवा बिन भगत ना होवी, क्यों कर चीनस आपे, निंदा कर कर नरक निवासी, अंतर आत्म जापे, अथक तीरथ परम विगूचे, क्यों मल तो कह पापे, छानी खाक विपूत चढ़ाई, माया का मग जो है, अंतर बाहर एक ना जाने, साच कहे ते छो है, पाठ पढ़े मुख झूठो बोले, निगुरे की मत को है, नाम न जपे क्यों सुख पावे, बिन नावे क्यों सो है, मूंड मुंडाए जटा सिख बांधी, मोन रहे अभिमाना, मनुआ डोले जय दिस्तावे, बिन रत आत्म ज्ञाना, अमृत छोड़ महा बिक पीवे, माया का देवाना, कीर्तना मिटी हुक्म न बूझे, पशुआ माए समाना, हाथ कमंडल कापड़िया, मन तृष्णा उपजी पारी, स्त्री तज कर काम व्याप्या, चितलाया पर नारी, सिख करे कर शब्द न चीने, लंपट है बाजारी, अंतर दिख बाहर निबराती, ताजम करे खुआरी, सो सन्यासी जो सतगुर सेवे, विच्चों आप गवाए, साधन पोजन की आस न करे, अचिंत मिले सो पाए, बके ना बोले खिमा तन संग रहे, तामस नाम जलाए, तन गिर ही सन्यासी जोगी, जे हर चरणी चितलाए, आस निरास रहे सन्यासी, एक क्यों लिवलाए, हर रस्ती वे ता सांत आवे, निज कर ताड़ी लाए, मनवा ना डोले गुरमुख बूझे, तावत वर्ज रहाए, गृह शरीर गुरमति खोजे, नाम पदार्थ पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ, नाम रते विचारी, खानी बाणी गगन पताली, जनता जो तुम्हारी, सब सुख मुक्त नाम तुन बाणी, सच नाम उर्धारी, नाम बिना नहीं छूटत नानक, साची तरकू तारी, मारू मैला पहला, मात पिता संयोग उपाए, रकत बिंद मिल पिंड करे, अंतर गर्भ उर्द लिव लागी, सो प्रभ सारे दात करे, संसार पव जल क्यों तरे, गुरुमुख नाम निरंजन पाले, अफरयो पार अपार करे रहाओ, ते गुण विसर गए अपराधी, मैं बौरा क्या करो हरे, तू दाता दयाल सदै सिर, एनिस दास समार करे, चार पदार्थ ले जग जन्मिया, शिव शक्ति कर वास करे, लागी पूख माया मग जो है, मुक्त पदार्थ मोहे खरे, करन पलाव करे नहीं पावे, चित उत टूंडत थाक परे, काम क्रोध अहंकार व्यापे, कूड़ कुटुंब स्यों प्रीत करे, खावे पोगे सुन तो देखे, पहर दिखावे काल करे, बिन गुर शब्द ना आप पहचाने, बिन हर नाम ना काल करे, जेता मोह मैं कर पूले,
मेरी मेरी करते छीन खड़े तन तन बिन सह सह सह सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे बिरद पया जोबन तन चुकिया कफ कंठ बिरु दो नैनो नीर तरे चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम ना हृदय हरे सुरत गई काली हूँ तौले किसे न पावे रखियो करे विसरत नाम ऐसे दोख लागे जम मार समारे नरक खरे पूरब जन्म को लेख न मिटे जन्म मरे का को दोष तरे दिन गुरबाद जीवन होर मरना दिन गुर शब्द जन्म जरे खुशी खुआर पै रस भोगण फोकट कर्म विकार करे नाम विसार लोभ मूल खोयो सिर धर्म राय का दंड परे गुरमुख राम नाम गुण गावे जा को हर प्रभ नदर करे ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे ते जग में गुरु गोविंद हरे हर सिमरो गुरु बचन समारो संगत हर जन पाव करे हर जन गुर प्रदान द्वारे नानक तिन जन की रे।

दुहागनी सावरने क्यों जाओ, मैं गल औगण मुठड़ी बिन फिर चूर मराओ, तेरे फिर समला सावरने करवास, सुख संबंध सुहागनी फिर पाया गुणतास, लेख निहाली पटकी कापड़ अंग बनाए, फिर मुत्ती दोहागनी तिन दुखी रहन विहाए।

सच्चा साथ न टुटे गुर मेले सहिया। बलिहारी गुरे अपने सद बलिहारे जाओ, गुर बिन एता पव तकी, गुर तिर मेलम दित्तम मिलाए रहाओ। फुफी नानी मासियां देर जिठानड़िया, आवन मंजन ना रहन पूर परे पहिया। मामे ते मामानिया पायर बाप ना माओ।

सो सौ रंग रवंत सबे रुत्ती चंगिया जित सके सुने हो सात अनकंत पछाणिया सुख सुची लिस दे हो पत्तन कूके पातनी वंजो तुक विलाड़ पार पवंदड़े डिठ में सतगुर बोहित चाड़ हिक नी लद्या हिक लद गए हिक पारे पर नाल जिन्नी सच वणंजिया से सच्चे प्रभ नाल ना हम चंगे आखिए बुरा न दिसै कोए नानक हो।

एक जोत दो नाओ, मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाओ। गुरुद्वारे नाओ पाए, बिन सतगुर पल्ले ना पाए, सतगुर कह पाने मन।

ताने जिसनो नदर तुम्हारी जियो रहाओ। दिव्य दृष्ट जागे परम सुखाए, गुरु प्रसाद परम पद पाए। सो जोगी ए जुगत पछाने, गुरु के शब्द विचारी जियो। संजोगी तन फिर मेला होवे, गुरमत विच्चों

एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख तृष्णा पुख गवाए अपन लिया किछु ना पाये कर कृपा कल तारी जियो अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने कर आया अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नदर तुम्हारी जियो गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचों गवाए सतगुर बाजो सब तंद कमावे देखो मन विचारी जियो एक परम पूले फिरे अंकारी इतना गुरमुख हो मैं मारी सच्चे शब्द रते बैरागी और परम पुले गावारी जियो गुरमुख जिन्नी नाम न पाया मनमुख बिरसा जन्म गवाया अगे बिन नाम है को बेली नाही बूझे गुर विचारी जियो अमृत नाम।

कार्तिजा अष्टपदिया इको अंकार सतगुर प्रसाद लख चौरासी परमते दुर्लभ जन्म अब पायो रे मूड़े तू हो छह रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या क्यों उर्जायो राव रतन जवे हर बंजन आयो कालर लाद चलायो जे कर मैं तुद रहना बसना सो कर कीतना आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान विसार्यो एक निमख नहीं मन लायो पुत्र कलत्र ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर्जायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो पयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो मारू महला पंजवा कर अनग्रो राख लीनो पयो साधु संग हर नाम रस रसना उचारे मिष्ट गूढ़ा रंग मेरे मान को स्थान मीत साजन

कही मोख मुक्त द्वार जा कै संत रिदा भंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखण हार दुख दर्द कलेश बिनसै जिस बसे मन माहे मृत नरक स्थान बिखड़े बिख न पोहै ताहे रिद्ध सिद्ध नवनिध जाके अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह सिद्ध साधिक देव मुन जन वेद करें उचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचे नहीं अंत पारावार अनिक प्राचत मिटे खिन में हृदय जप भगवान पावना ते महापावन कोट दान स्नान बल बुद्ध शुद्ध प्राण सर्व सु संतना की रास बिसर नाही निमक मन ते नानक की अरदास मारू मेला पंजवा।

कृपाल गोविंद सुन संतना की रीत रहाओ। चरण तले उगाहे बैस्यो श्रम ना रहो शरीर, महासागर ने व्यापैखने उतरयो तीर। चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीत, दिष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन ना मनी विपरीत। ऊंच नीच विकार सुकृत संलगन सब सुख छत्र, मित्र सत्र ना कछु जाने सर्व जी समत। कर परगास पर चंड प्रगट्यो अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है किरण लागे मन न पयो विखाद। शीत मंद सुगंध चल्यो सर्व थान समान, जहां सा किछ ता लागयो तिल न शंका मान। सुभाए अभाए जो निकट आवे शीत ता का जाए, आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुभाए। चरण शरण सनाथ एहो मन रंग राते लाल, गोपाल गुण नित गाओ नानक पै प्रभ कृपाल। मारू महला पंजवां कर चौथा अष्टपदियां इको अंकार सतगुर प्रसाद। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदन।

काम क्रोध लोभ त्यागना, मांगना मांगननी का हर जस गुरते मांगना, जागना जागननी का हर कीर्तन में जागना, लागना लागननी का गुरचरणी मन लागना, ए विदित से प्राप्ते जाके मस्तक पागना, कहो नानक तिस सब किछ नीका जो प्रभु की शरणागना। मारू महला पंजवा, आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना रहाओ, तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना, संत कृपा ते हृदय वासे दूजा पाओ मिटावना, भगत दया ते बुद्ध परगासे दुर्मत दुख सजावना, दर्शन भेटत होत पुनीता पुनरप गर्भ न पावना, नौ निद रिद्ध सिद्ध पाई जो तुमरे मन पावना, संत बिना मैं थाओ न कोई हवर न सूजे जावना, मोहे निर्गुण को कोई न राखे संता संग समावना, कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मध्य हर हर रावना। मारू महला पंजवा, जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ, पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना, खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्त जीवना, पहनना रखपत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना, पोगना मन मदे हर रस संत संगत में लीवना, बिन तागे बिन सुई आनी मन हर पगति संग सीवना, मात्या हर रस में राते तिस बहुड़ न कबहू औखीवना, मिलियो तिस सर्व निधाना प्रभ कृपाल जिस दीवना, सुख नानक संतन की सेवा चरण संत तोय पीवना। मारू महला पंजवा, कर अठवा अंजुलिया इको अंकार सतगुर प्रसाद, जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता, दोहु व्यवस्था तेजो मुक्ता सोई सुहेला पालिये, ग्रह राज में नरक उदास करोदा बहुविध वेद पाठ सब सोदा, देही में जो रह अलिप्ता तिस जन की पूरन कालिये, जागत सूता परम विगूता बिन गुरु मुक्त ना होइए मीता, साध संग टूटे हो बंधन एको एक निहालिए, कर्म करे ता बंदा ने करे ता निंदा, मोह मगन मन व्याप्या चिंदा, गुरु प्रसाद सुख दुख समझाने कट कट राम हियालिए, संसार में सहसा व्यापे अकत कथा अगोचर नहीं जापे, जिसे बुझाए सोई बूझे ओ बालक वांगी पालिए, छोड़ बह तो छूटे नाही जो संचे तो पौ मन माही, इस ही में जिसकी पत राखे तिस साधु चोर टालिए, जो सूरा तिस ही होई मरना जो पागे तिस जोनी फिरना, जो वरताए सोई पल माने बुझ हुक्मे दुर्मत जालिए, जित जित लावे तित तित लगना कर कर वेखे अपने जचना, नानक के पूरन सुख दाते तू देता नाम समालिए। मारू महला पंजवा, बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस्त उदोत पया उठ चले ज्यो ज्यो औध विहानिया, पाप करेंदर सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे, दोजक पाए सिरजन हारे लेखा मंगे बाणिया, संग न कोई पैया बेबा माल जोबन तन छोड़ वजे सा, करण करीम ना जातो करता तिल पीड़े ज्यो काणिया, खुश खुश लेंदा वस्त पराई वेखे सुने तेरे नाल खुदाई, दुनिया लब पया खात अंदर अगली गल ना जानिया, जम जम मरे मरे फिर जम्मे बहुत सजाए पया देश लम्मे,
जिनकी तात से ना जानी अंदा ता दुख सह प्राणिया खालक था वो पुल्ला मुठा दुनिया खेल बुरा रुठ तुठा सिदक सबूरी संत ना मिलियो वत्ते आपन पानिया मौला खेल करे सब आपे एक कड्डे एक लहर।

अमृत नाम दान नानक को गुण गीता नित वखाणिया। मारू सोलहे महला पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद। साचा सच सोई अवर न कोई जिन सिर जी तिन ही फुन गोई। ज्यों पावे त्यों राखो रहना तुम स्यों क्या मुकराई है। आप उपाए आप खपाए आपे सिर सिर तंदे लाए। आपे विचारी गुणकारी आपे मार्ग लाई है। आपे दाना आपे बीना आपे आप उपाय पतीना। आपे पौन पानी बैसंतर आपे मेल मिलाई है। आपे सतसूरा पूरो पूरा आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा। काल जाल जम जोहे न साके साचे स्यों लिवला।

आपे पावरफुल फल तरवर, आपे जल थल सागर सरवर, आपे मच कच करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है। आपे दिन आपे ही रहनी, आप पति जय गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदिन कट कट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बक्से आपे दे ले पाई है। आपे तनख आपे सरबाना, आपे सुगड़ स्वरूप से आना, कहता बकता सुनता सोई आपे बनत बनाई है। पौन गुरु पानी पित जाता, उदर संजोगी तरती माता, रैन दिनस दोयदाई दाया, जग खेले खेल आई है। आपे मछली आपे जाला, आपे गऊ आपे रखवाला, सर्व जिया जग जोत तुम्हारी, जैसी प्रभु फुरमाई है। आपे जोगी आपे भोगी, आपे रसिया परम।

शब्द सहज रस अंतरमाने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता, भगत पाए मन पाई है। आप निरालम गुरुगम ज्ञाना, जोदी सह तुझ माहे समाना, नानक नीच पिखिया दर जाते है, मैं दीजे नाम बढ़ाई है। मारू महला पहला, आपे तरती तौल आकाशं, आपे साचे गुण परगासं, जति सती संतोखी आपे, आपे कार कमाई है।

पंच चोर चंचल चित चाले, पर कर जो है कर नहीं पाले। काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूजे त्रिभुवन सूजे, मनसा मार मने स्यों लूजे। जो तुझ सेवे से तुद ही जे, निरपव बाल सिखाई है। आपे सुर्ग मच पयाला, आपे ज्योत स्वरूपी बाला। जटा विकट विकराल स्वरूपी, रूप ना रेख्या काई है। वेद कटे भी पेद ना जाता, ना किस मात पिता।

कोई न काटे अवगुण मेरे। सुर नर नाथ साहिब सबना सिर पाए मिले पहु जाई है। फूले चूके मार्ग पावे आप पुलाए तू है समझावे। बिन नावे मैं अवर न दिसे नामो गत मित पाई है। गंगा जमुना केल किदारा काशी कांति पुरी द्वारा। गंगा सागर बेणी संगम अठसठ अंक समाई है। आपे सिद्ध साधिक विचारी आपे राजन पंचाकारी। तख्त बह अगली प्रभ आपे परम पेद पौ जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला आप अपुल ना कबहू पुल्ला। आपे मेहर दया पत दाता ना किसे को बैर आई है। जिस बख्शे तिस देव डियाई सबसे दाता तिल ना तमाई। परपुर तार रहा ने केवल गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या काला ही अगम अपार साचे सृजनहार मुरार। जिसनो नदर करे तिस मेले मेल मिले मेल आई है। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार उबे सेवे अलख अपार। होर केती दर्दी से बिललांदी मैं गणत ना वै काई है। साची कीरत साची बाणी होर ना दी से वेद पुराणी। पूंजी साच सच्चे गुण गावा मैं तर होर ना काई है। जुग जुग साचा है भी होसी कौन न मुआ कौन न मरसी। नानक नीच कहे बेनंती दर देखू लिवलाई है। मारू महला पहला दूजी दुर्मत अन्नी बोली। काम क्रोध की कच्ची चोली कारवार सहज न जाने छोहर। दिन फिर नींद न पाई है। अंतर अगन जले पड़कारे मन मुख तक के कुंडाचारे। बिन सतगुरु सेवे क्यों सुख पाये साचे हाथ बढ़ाई है। काम क्रोध अंकार निवारे सत्सर पंच शब्द संगारे। ज्ञान खड़ग ले मन स्यों लूजे मन सामने समाई है। माँ की रकत पिता बिंद तारा मूरत सूरत कर अपारा। जोत दात जेती सब तेरी तू करता सब ठाई है। तुझ ही किया जमन मरना गुर ते समझ पड़ी क्या।

आवत राखे ठाक रहाया, कमल विगास हरे सर सुबर, आत्म राम सखाई है, मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रही है चलना पर थाए, सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिले वडाई है, आप उपाया जगत सवाया, जिन सिरिया तिन तंदे लाया, सच्चे ऊपर

नानक नाम रते बैरागी, निज कर ताड़ी लाई है मारू महला पहला, आद जुगादी अपर अपारे, आद निरंजन खत्म हमारे।

नाम सच्ची वड्याई साचे तखत वड़ाई है। सत युग सत संतोख शरीरा सत सत वर्त गहर गंभीरा सच्चा साहिब सच परख है साचे हुक्म चलाई है। सत संतोखी सत गुर पूरा गुर का शब्द मने सो सूरा साची दरगे साच निवासा माने हुक्म रजाई है। सत युग साच कहे सब कोई सच वर्त है साचा सोई मन मुख साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई है। त्रेतह धर्म कला इक चूकी तीन चरण इक दुबदा सूकी गुरमुख होवे सो साच वखाणे मनमुख पचे अवाई है। मनमुख कदे न

करम तरम कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ सब सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न होई, पर पंच कर परमाई है। माया ममता चोदी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, एनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यो बन आई है। एक जप तप कर कर तीर्थ नावे, जो तुद पावे तिवे चलावे, हठ निग्रह अब चीज ना पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में एक कल राखी, बिन गुर पूरे किन न पाखी, मन मुख कूड वरते वरतारा, बिन सतगुर परम न जाई है। सतगुर वे परवाव सिरंदा, ना जमकान ना छंदा बंदा, जो तिस सेवे सो अबनासी, ना तिस काल संताई है। गुर में आप रखिया करता रे, गुरमुख कोट असंख उधारे, सर्व जिया जग जीवन दाता, निरपव मैल न काई है। सगले जाते गुर पंडारी, आप निरंजन अलखा पारी, नानक साच कह प्रभ जाते, मैं दीजे साच रजाई है। मारू महला पहला, साचे मेले शब्द मिलाए, जात पाना सह समाए, त्रिभवन ज्योत तरी परमेश्वर, अवर न दूजा पाई है। जिसके चाकर तिसकी सेवा, शब्द पति जय अलख अपेवा।

लिव गुरमत जाती, मनमुख सोए रहे से लूटे, गुरमुख साबत पाई है। कूड़े आवे कूड़े जावे, कूड़े राती कूड़ कमावे, शब्द मिले से दरगे पैदे, गुरमुख सुरत समाई है। कूड़ मुट्ठी ठगी ठगवाड़ी, जो वाड़ी ओजार उजाड़ी, नाम बिना किस साधना लागे, हर बित्रे दुख पाई है। ओजन साच मिले

परब न जाए। पच पच मुए अचेत न चेते, अजगर पार लदाई है, बिन बाद विरोध है कोई नाही। मैं दिखा लियो तिस्ता लाही, मन तन अर्प मिले जग जीवन, हर स्यों बनत बनाई है। प्रभ की गत मित कोई न पावे, जे को वड्डा कहाए वडाई खावे। साचे साहिब तोट न दाती, सगली तिन्हे उपाई है। वड्डी वड्याई वे परवाहे, आप उपाए दान समाहे। आप दयाल दूर नहीं दाता, मिलिया सहज रजाए है। एक सोगी एक रोग व्यापे, जो किछ करे सो आपे आपे। भगत पाओ गुर की मत पूरी, अनहद शब्द लखाई है। एक नांगे भूखे पवे पवाए, एक हट कर मरे ना कीमत पाए। गत अवगत की सार न जाने, बूझे शब्द कमाई है। एक तीरथ नावे अन न खावे, एक अगन जलावे देह खपावे। राम नाम बिन मुक्त न होई, किन विद पार लंगाई है। गुरमत छोड़े उजड़ जाई, मन मुख राम न जपे आवाई। पच पच बूढ़े कूर कमावे, कूर काल बैराई है। हुक्मे आवे हुक्मे जावे, बूझे हुक्म सो साच समावे। नानक साच मिले मन पावे, गुरमुख कार कमाई है। मारू मैला पहला, आपे करता पुरख विदाता। जिन आपे आप उपाय पछाता, आपे सतगुर आपे सेवक। आपे श्रेष्ठ उपाई है, आपे नेड़े नाही दूरे। बूझे गुरमुख से जन पूरे, तिनकी संगत एहन सलाहा। गुर संगत ए वडाई है, जुग जुग संत पले प्रभ तेरे। हर गुण गावे रसन रसेरे, उस्तत करें पर हर दुख दालद। जिन नाही चिंत पराई है, ओए जागत रहे न सूते दिसे। संगत कुल तारे साच परिसे, कलमल मैल नाही ते निर्मल। ओए रहे भगत लिवलाई है, बूझो हर जन सतगुर बाणी। इहो जो बन साथ है देह पुराणी, आज काल मर जाइए प्राणी। हर जप जप हृदय त्याई है, छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा। कूड़ मारे काल उछाहारा, साकत कूड़ पचे मन हो मैं।

सुनाई, मिल सत्संगत नाम सलाहो आत्म राम सखाई है। छोड़ो काम क्रोध बुरे आई, हों मैं तंद छोड़ो लंपटाई। सतगुर शरण परो ता उबरो, क्यों तरिये पव जल पाई है। आगे बिमल नदी अगन बिखेला, तिथे अवर न कोई जियो इकेला। पड़ पड़ अगन सागर दे।

साच पछाणो अंदर, दूर नाही देखो करन अंदर, विघन नाही गुरमुख तरकारी, क्यों पाव जल पार लंगाई है, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी, ना जियो मरे न मारिया जाई, कर देखे सब रजाई है, ओ निर्मल है नाही अंधियारा, ओ आपे तख्त बह सचियारा, साकत कूड़े बंद पवाये, मर जन में आई जाई है, गुर के सेवक सतगुर प्यारे, कोई बैसे तक सो शब्द विचारे, तत लहे अंतर्गत जाने, सत्संगत साथ वडाई है, आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुक्त सो पार उतारे, नानक तिसका लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिवलाई है, मारू मैला पहला, केते जुग वरते गुबारे, तारी लाई अपर अपारे, तुंदू कार निरालम बैठा, ना तद तंद पसारा है, जुग छत्ती तिने वरताए, ज्यों तिस पाना तिवे चलाए, तिसे सरीत न दिसे कोई, आपे अपर अपारा है, गुप्ते बूजो जुग चतवारे, कट कट वरते उदर मजारे, जुग जुग एका एकी वरते, कोई बूझे गुर विचारा है, बिंद रक्त मिल पिंड सरिया, कौन पानी अग्नि मिल गिया, आपे चोज करे रंग महली, होर माया मोह पसारा है, गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी, आपे जाने अंतर जामी, सास सास सच नाम समाले, अंतर उदर मजारा है, चार पदार्थ ले जग आया, शिव शक्ति करवा

काली हुफुन तौले आए, विणनावे गत गया गवाए, दुर्मत अंधला बिनस बिनासे, मूठे रोए पुकारा है, आप विचार न रोवे कोई, सतगुर मिले ता सोजी होई, बिन गुर बजर कपाट न कूले, शब्द मिले निस्तारा है, बिर्द पया तन खीजे देही, राम न जपई अंत स्नेही, नाम विसार चले मुह काले, दरगे झूठ खुआरा है, नाम विसार चले कूड़ियारो, आवत जात पड़े सिर छारो, सौरड़े कर वास न पाए, पेयड़े सिर मारा है, खाजे पैजे

तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बीना है गुर सरवर हम हंस प्यारे सागर में रतन लाल बहु सारे मोती मानक हीरा हर जक गावत मन तन पीना है हर अगम अगाओ अगाध निराला हर अंत न पाये गुर गोपाला सतगुर मत पारे तारण हारा मेल ले रंग लीना है सतगुर बाजो मुक्त किने ही ओ आद जुगादी राम स्नेही दरगे मुक्त करे कर कृपा बक्से अवगुण की नाहे सतगुरु दाता मुक्त कराए सब रोग गवाए अमृत रख पाए जम जागात नाही कर लागे।

श्रेष्ठ उपाय रह प्रवछा जय पौन पानी बैसंतर गाजय मनुआ डोले दूत संगत मिल सो पाए जो किछ की ना है नाम विसार दोख दुख सही है हुकुम पया चलना क्यों रही है नरक कूप में गोते खावे जो जलते बाहर मीना है चौरासी नरक साकत पोगाये जैसा की तै तैसो पाये सतगुर बाजो मुक्त न होई केत बांदा ग्रफ दीना है खंडे तार गली अत पीड़ी लेखा ली जय तिल जो पीड़ी मात पिता कलत्र फुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त न कीना है मीत सके केते जग माही बिन गुर परमेश्वर कोई नाही गुर की सेवा मुक्त पराए।

हर हर नाम वखर ले चलो, दर्शन पावो सहज महलो। गुरमुख खोज लहे जन पूरे, क्यों समदर्शी की नाहे। प्रभ बेअंत गुरमत को पावे, गुर कै शब्द मन को समझावे। सतगुर की बाणी सत सत कर मानो।

असुर संहारण राम हमारा, कट कट रमैया राम प्यारा, नाले अलख ना लखी है मूले, गुरुमुख लिख विचारा है। गुरुमुख साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा सब पार उतारी, अगन पानी सागर अत गहरा, गुरु सतगुरु पार उतारा है। मनमुख अंगले सोजी नाही, आवे जाए मरे मर जाही, पूरब लिखिया लेख ना मिटे, जमदर अंध खुआरा।

कनेरे नरक पचे अज्ञान अंधेरे कर्म राय की बाकी लीजे दिन हर का नाम विसारा है सूरज तपे अगन बिख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आशा मनसा कूड़ कमावे रोग बुरा बुरे आ रहा है मस्तक पार कलर

सतगुरु तोड़े गुरमुख तत् विचारा है। कूड़ मुठी चाले बहुराही मन मुख दाजे पड़ पड़ पाही। अमृत नाम गुरु वरदाना नाम जपो सुख सारा है। सतगुरु तुठा थच दृढ़ाए सब दुख मेटे मार्ग पाए। कंडा पाए ना गड़ी मूले जिस सतगुरु राखण हारा है। खेहू खेर ले तन छीजे मन मुख पाखर फैल न पीजे। करण पलाव करे बहु तेरे नरक सुरग अवतार।

साकत माया को बहुतावे, नाम विसार कहां सुख पावे, त्रिगुण अंतर खपे खपावे, नाही पार उतारा है, कूकर सूकर कई है कूड़ियारा, पौ के मरे पौ पौ पौ हारा, मन तन चूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगे हारा है, सतगुर मिले तमनुआ टेके, राम नाम दे शरण परे के, हर तन नाम अमोलक देवे, हर जप दरगे प्यारा है, राम नाम साधु शरणाई, सतगुरु बचनी गत मित पाई, नानक हर जप हर मन मेरे, हर मेले मिलन हारा है, मारू मेला पहला, कर रहो रे मन मुग्ध याने, राम जपो अंतर्गत प्याने, लालच छोड़ रचो अपरंपर, क्यों पावो मुक्त द्वारा है, जिस बिसरे जम जोहन लागे, सब सुख जाहे दुखां फुन आगे, राम नाम जप गुरमुख जीड़े, एहो परम तत् विचारा है, हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा, एनस राम रहो रंग राते, एहो जप तप संजम सारा है, राम नाम गुरबचनी बोलो, संत सभा में ए रस कोलो, गुरमत खोज लहो कर अपना, बौड़ना गर्भ मजारा है, सच तीरथ नावो हर गुण गावो, सत विचारो हर लिवलावो, अंतकाल जम जोहे न साके, हर बोलो राम प्यारा है, सत गुर पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना, जिसको सतगुर मेल मिलाए, तिस चूका जम पै पारा है, पंच तत् मिल काया कीनी, किसमें राम रतन ले चीनी, आत्म राम राम है आत्म, हर पाये शब्द विचारा है, सत संतोख रहो जन पाई, खिमा गहो सतगुर शरणाई, आत्म चीन पर आत्म चीनो, गुर संगत के निस्तारा है, साकत पूर कपट महते का, हैनत निंदा करें अनेका, बिन सिमरन आवे फुन जावे, गर्भ जोनी नरक मजारा है, साकत जम की कान न चूके, जम का दंड न कबू मूके, बाकी तर्म राय की लीजे, फिर अफरियो पार असारा है, बिन गुर साकत कहो को तरया, हो मैं करता पव जल परया, बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिये पार उतारा है, गुर की दात न मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई, जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है, गुर ते फूले आवो जावो, जन्म मरो फुन पाप कमावो, साकत मूड अचेत न चेते, दुख लागे ता राम पुकारा है, सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए, किसको दोष दे तू प्राणी,

चाले बिखला दे चार बिकार आहे हर की भगत करो जन पाई अकथ कथो मन मने समाई उठ चलता ठाक रखो कर अपने दुख काटे काटन हारा है हर गुरु पूरे की ओट पराती गुरुमुख हर लिव गुरुमुख जाती।

तुम्हारी तू समरथ दयाल मुरारी तेरे चोज न जाने कोई तू पूरा पुरख विदाता है तू आद जुगाद करें प्रतपाला कट कट रूप अनूप दयाला ज्यो तुद पावे तिवे चलावे सब तेरो किया कमाता है अंतर ज्योत पली जग जीवन सब कट पो गए हर रस पीवन आपे ले वे आपे दे वे तिहो लोई जगत पित दाता है जगत उपाय खे

जम कंकर काल पर आता है, जम दर बांधे मिले सजाई, तिस अपराधी गत नहीं काई, करण पलाव करे बिललावे, ज्यों कुंडी मीन पर आता है, साकत फांसी पड़े अकेला, जम वस्किया अंध दुहेला, राम नाम बिन मुक्त ना सूजे, आज काल पच जाता है, सतगुरु बाजना बेली कोई, एथे उथे राखा प्रभ सोई, राम नाम देवे कर कृपा, क्यों सलले सलल मिलाता है, फूले सिख गुरु समझाए, उजड़ जांदे मार्ग पाए, जिस गुरु सेव सदा दिन राती, दुख पंजन संग सखाता है, गुर की पगत करे क्या प्राणी, ब्रह्मे इंद्र महेश ना जाने, सतगुर अलख कहो क्यों लखिए, जिस बख्शे तिसे पछाता है, अंतर प्रेम परापत दर्शन, गुरबाणी स्यो प्रीत सो प्रसन, एनत निर्मल ज्योत सबाई, काट दीपक गुरमुख जाता है।

तिन कट कट अंतर ब्रह्म पचाना। नानक हर जस हर जन की संगत दी जय। जिन सतगुर हर प्रभ जाता है। मारू महला पहला साचे साहिब सिरजन हारे। जिन कर चक्र करे विचारे आपके करता कर।

जिन गुरु पूरे तत न पाए सच सूचे सच रहा है सब साला है सुन सुन आख है आपे दाना सच पराख है जिनको नदर करे प्रभ अपनी गुरमुख सब सलाह है सुन सुन आख है कीर्ति बाणी सुन कही है को अंत न जाने जा को अलख लखाए आपे अकथ कथा बुधता है जन्मे को वाजे वादाए सोह लड़े अज्ञानी गाए जो जन्मे तिस सर पर मरना कृत पया सिर सहा है संजोग विजोग मेरे प्रभ किए सृष्ट उपाय दुखा सुख दिए दुख

सच्चा वखर जिस तन पल्ले शब्द सच्चे ओ महा है। काची सौदी तोता आवे गुरुमुख वणज करे प्रभु पावे।

तारा डाल छोड़ तत्मूल पराता मन साचा ओ महा है। हर के लोग नहीं जम मारे ना दुख देखे पंथ करारे। राम नाम कथ अंतर पूजा और न दूजा कहा है। कोड़ न कथने सिफ सजाई।

मेरा कर्म तर्म सच हाथ तुम्हारे रे परवाह अखुट पंडारे तू दयाल कृपाल सदा प्रभ आपे मेल मिलाएगा आपे देख दिखावे आपे आपे थाप उठापे आपे आपे जोर विछोड़े करता आपे मार जीवाएगा जेती है तेती तुद अंदर देखे आप बैठ बिजमंदर नानक साच।

जो किछ करे सो आपन पाणे, लख चौरासी जी उपाए, पाणे सह लवाएंदा, जो तिस पावे सो नेचो होवे, मनमुख आप गनाए रोवे, नामो पुल्ला ठौर न पाए, आए जाए दुख पाएंदा, निर्मल काया उजल हंसा, तिस विच नाम निरंजन अंसा, सगले दुख अमृत कर पीवे, बहुर दुख न पाएंदा, बहु साधो दुख प्राप्त होवे, ओगो रोग सो अंत विगोवे, हरखो सोग न मिटई कभू, बिन पाणे परवाएंदा, ज्ञान विहूनी पवे सभाई, साचा रव रहा लिव लाई, निरपौ शब्द गुरु सच जाता, ज्योति ज्योत मिलाएंदा, अटल अडोल अतोल मुरारे, खिन में चाहे फिर उसारे, रूप न रेखिया मित नहीं कीमत, शब्द पेद पति आएंदा, हम दासन के दास प्यारे, साधक साच पले विचारे, मन्ने नाओ सोई जिन जासी, आपके साथ बिड़ाएंदा, पल्ले साच सचे सच्यारा, साचे पावे शब्द प्यारा, त्रिभुवन साच कला तर थापी, साचे ही पति आएंदा, वड्डा वड्डा आखे सब कोई, गुरु बिन सो जी किने न होई, साच मिले सो साचे पाए, ना विछड़ दुख पाएंदा, गुरु विचुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन में मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस देवडे आई, मेल न पच्छो ताएंदा, आपे करता आपे पुगता, आपे तृप्ता आपे मुक्ता, आपे मुक्त दान मुक्ति सर।

नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा मारू मेला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा तरन ना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सुन समाद लगाएंदा खानी ना बाणी पौन ना पानी ओ पत खपत ना आवन जानी खंड पताल सपत नहीं सागर नदी ना नीर वहाएंदा ना तद सुरग मच पयाला दोजक पेत नहीं।

नहीं जात ना जन्मा ना सो दुख सुख पाएगा ना तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम पेख ना कोई ना को नाथ कहाएगा जप तप संयम ना व्रत पूजा ना को आख वखाने दूजा आपे आप उपाय विदसे आपे कीमत पाएगा ना सुच संयम तुलसी माला गोपी कान न गौ गुआला संत मंत पखंड न कोई ना को वंश बजाएगा कर्म तर्म नहीं माया माखी जात जन्म नहीं दिसे आखी ममता जाल काल नहीं माथे ना को किसे त्याएगा निंद बिंद नहीं जियो न जिंदो ना तद गोरख ना माचिंदो ना तद ज्ञान ध्यान कुल ओपत ना को गणत गणाएदा वरन पेख नहीं ब्राह्मण खत्री देव ना देहोरा।

ना को शेख मसाए कहा जी रैयत राव ना हो मैं दुनिया ना को कहन कहाएंदा पाओ ना पगती ना शिव शक्ति साजन मीत बिंद नहीं रखती आपे साओ आपे वनजारा साचे एहो पाएंदा वेद कतेब ना सिमरत शास्त्र पाठ पुराण उदय नहीं आस्त कहता बक्ता आप अगोचर आपे अलख लखाएंदा जात पाना ता जब उपाया बाज कला आदान रहाया ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय माया मोह वधाएंदा विरले को गुर शब्द सुनाया कर कर देखे हुक्म सवाया खंड ब्रह्मंड पता।

नानक साच रते बिस्मादी बिस्म पै गुण गाएंदा मारू मैला पहला आपे आप उपाय निराला साचा थान कियो दयाला पौन पानी अग्नि का बंधन काया कोट रचाएंदा नौ कर खापे खापन हारे दसवें वासा अलख अपार है सायर सप्त परे जल निर्मल गुरमुख मैल न लाएंगा रब सच दीपक जोत सबाई आपे कर वेखे वड्याई जोत स्वरूप सदा सुखदाता सच्चे सोभा पाएंगा गर्म है हाट पटनवा।

पूरे पंडार है, सर्व कला ले आपे रहया गुरमुख किसे बुझाएंदा। नदर करे पूरा गुर पेटे, जम जमदार न मारे फेटे, जो जल अंतर कमल बिगासी आपे बिरसते आएंदा। आपे वर्ख है अमृत तारा, रतन जवे हर लाल अपारा, सतगुर मिले ता पूरा पाये, प्रेम पदार्थ पाएंदा। प्रेम पदार्थ लह अमोलो, कभी न काटस पूरा तोलो, सच्चे का व्यापारी होवे सच्चो सौदा पाएंदा। सच्चा सौदा बिरला को पाए, पूरा सतगुर मिले मिलाए। गुरमुख होए सो हुकम पछाने, माने हुकम समाएदा। हुक्मे आया हुक्म समाया, हुक्मे दीसे जगत उपाया, हुक्मे सुर्ग मच पयाला, हुक्मे कला रहाएदा। हुक्मे तरती तौल सिर पारंग, हुक्मे पौन पानी गैनारंग, हुक्मे शिव शक्ति करवासा, हुक्मे खेल खिलाएदा। हुक्मे आडाने आगासी, हुक्मे जल फल त्रिभुवन वासी, हुक्मे सास गिरा सदा फुन, हुक्मे देख दिखाएदा। हुक्म उपाए दस अवतारा, देव दानव अगणत अपारा, माने हुक्म सो दरगह पै जाए, साथ मिलाए समाएदा। हुक्मे जुग शक्ति गुदारे, हुक्मे सिद्ध साधक विचारे, आप नाथ नथी सब जाकी, बख्शे मुक्त कराएदा। काया कोट करे महराजा, नेब खवास पला दरवाजा, मिथ्या लोभ नाही करवासा, लब पाप पछताएदा। सत संतोख नगर में कारी, जत सत संयम शरण मुरारी, नानक सहज मिले जग जीवन, गुर सबदी पत पाएदा। मारू महला पहला, सुन कला अपरंपर तारी, आप निरालम अपर अपारी, आपे कुदरत कर कर देखे, सुनो सुन उपाएदा। कौन पानी सुने के साजे, श्रेष्ठ उपाय काया गढ़ राजे, अग्न पानी जियो जोत कुमारी, सुनने कला रहाएदा। सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय, सुनने वर्ते जुग सवाए, इस पद विचारे सो जन पूरा, इस मिलिए परम चुकाएदा। सुनो सपत सरोवर थापे, जिन साजे विचारे आपे, तित सत्सर मनुआ गुरमुख नावे, फिर बहुड़ जोन न पाएदा। सुनो चंद सूरज गैनारे, किसकी ज्योत त्रिभुवन सारे, सुनने अलख अपार निरालम, सुनने ताड़ी लाएदा। सुनो तरत आकाश उपाए, बिन थम्मा राखे सच काल पाए, त्रिभुवन साज में खुली माया, आप उपाय खपाएदा। सुनो खाणी सुनो बाणी, सुनो उपजी सुन समाणी, कुछ कुछ चलत किया सिर करते, विस्माद शब्द देखाएदा। सुनो रात दिन सदोय किए, ओ पत खपत सुखा दुख दिए, सुख दुख ही ते अमर अतीता, गुरमुख निज कर पाएदा। साम वेद ऋग जुजर असर बन, ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण, ताकी कीमत कह न सके को, त्यों बोले ज्यों बोलाएंदा। सुनो सपत पताल उपाय, सुनो पवन रखे लिवलाए, आपे कारण किया परंपर, सब तेरो किया कमाएंदा। राज्य तम सत कल तेरी छाया, जन्म मरण हो मैं दुख पाया, जिसनो कृपा करे हर गुरमुख, गुण

का गुरमुख समझाए रोग न होई। हे गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुग है जुगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त पया पत पाएदा। पंच तत् सुनो परिघाषा, दे संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा पला दोई मस्तक लीखे, पाप पुन भी जाएदा। उत्तम सतगुरु पुरुष निराले, शब्द रते हर रसमत वाले, रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाये, पूरे पाग मिलाएदा। इस मन माया को न्यो कनेरा, कोई बूझो ज्ञानी करो निवेरा, आशा मनसा।

अंदर जुगत समाई रहे हो निरालम राया, जग तिसकी छाया जिस बाप न माया, ना तिस पैन ना प्राव कमाया, ना तिस ओपत खपत पुल जाती, ओ अजरावर मन पाया। तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला, सब संतोख शब्द अतल सहज पाए लिवलाया, त्रैवरताए चौथे करवासा, काल विकाल किए इक ग्रासा, निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन, गुर अनहद शब्द दिखाया। उत्तम जन संत पले हर प्यारे, हर रस माते पार उतारे, नानक रेण संत जन संगत,

किया आत्म राम पाए सुखतिया कर्म करतूत अमृत फल लागा हर नाम रतन मन पाया ना किस भूख प्यास मन मान्या सर्व निरंजन कट कट जान्या अमृत रस राता केवल बैरागी गुरमत पाए सुवाया अध्यात्म कर्म करे दिन राती निर्मल ज्योत निरंतर जाती सब दिर साल रसन रस रसना बेन रसाल बजाया बेन रसाल बजावे सोई जाकी त्रिभुवन सोजी होई नानक बूजो ए विद गुरमत हर राम नाम लिवलाया ऐसे जन विरले संसारे गुर शब्द विचारे रह निरारे आप तरह संगत कुल तारे तिन सफल जन्म जग आया कर दर मंदर जाने सोई जिस पूरे गुर ते सोजी होई काया गर महल मैली प्रभ साचा सच साचा तख्त रचाया चतुर्दश हाथ दीवे दो साखी सेवक पंच नाही बिचाखी अंतर वस्त अनूप निर्मोलक गुर मिले हर तन पाया तख्त बहे तख्त की लायक पंच समाये गुरमत पायक आद जुगादी है भी होसी सहसा परम चुकाया तख्त सलाम होवे दिन राती क्यो साथ वडाई गुरमत लिव जाती नानक राम जपो तर तारी हर अंत सखाई पाया मारू मैला पहला हर तन संचो रे जन पाई सतगुरु सेव रहो सरनाई तस्कर चोर ना लागे ताको तुन उपजे शब्द जगाया तू एकंकार निरालम राजा तू आप सवारे जन के काजा अमर अडोल अपार अमोलक हर अस्थिर स्थान सुहाया देही नगरी उत्तम थाना पंचलोक वसें प्रदान।

नानक हर प्रभु सो पौ पंजन, गुरु मिले हर प्रभु पाया, काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाने, आपे जाने आप पछाने, सब किसका चोज सवाया, आपे साव आपे वनजारा, आपे परखे परखनहारा, आपे कस कस वट्टी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रभु तारी, कट कट रव रहा बनवारी, पुरख अतीत वसे ने केवल, गुरु पुरख है पुरख मिलाया, प्रभु दाना बीना गर्भ गवाए, दूजा मेटे एक दिखाए, आशा माए निरालम जोनी, अकुल निरंजन गाया, हों में मेट शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञानी सोई, नानक हर जस हर गुण लाहार, सत्संगत सच फल पाया, मारू मैला पहला, सच कहो सच्य कर रहना, जीवत मरो पव जल जग तरना, गुर बोहित गुर बेड़ी तुल्हा, मन हर जप पार लंगाया, हों मैं ममता लोभ विनाशन, नौ दर मुक्ते दसवें आसन, ऊपर परे परे अपरंपर, जिन आपे आप उपाया, गुरमत ले वो हर लिव तरिये, अकल गाये जमते क्या डरिये, जत जत देखो तत तत तुम ही, और ना दुतिया गाया, सच हर नाम सच है सरना, सच गुर शब्द जिते लग तरना, अकत कठ है देख है अपरंपर, सुन गर्व ना जो नी जाया, सच बिन सत संतोख ना पावे, बिन गुरु मुक्त ना आवे जावे, मूल मंत्र हर नाम रसायन, कहो नानक पूरा पाया, सच बिन पाव जल जाए न तरिया, एहो समुंद्र अथा मां बिक परिया, रह अतीत गुरमतले ऊपर, हर निरपो कै कर पाया, झूठी जग हित की चतराई, बिलम ना लागे आवे जाई, नाम विसार चले अभिमानी, उपजे बिन खपाया, उपजे बिन से बंधन बंदे, हों मैं माया के गल फंदे, जिस राम नाम नाही मत गुरमत, सो जमपुर बंद चलाया, गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाये, बिन गुर राम नाम क्यों त्याये, गुरमत लेहो तरो पवज उतर, मुक्त पहे सुख पाया, गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे, गुरमत सायर पाहन तारे, गुरमत लेहो परम पद पाये, नानक गुर परम चुकाया, गुरमत लेहो तरो सच तारी, आत्म चीनो हृदय मुरारी, जम के साहे काटे हर जप अकल निरंजन पाया, गुरमत पंच सखे गुर पाई, गुरमत अगन निवार समाई, मनमुख नाम जपो जग जीवन, रिद अंतर अलख लखाया, गुरमुख बूझे शब्द पति जय, उस्तक निंदा किसकी की जय, चीनो आप जपो जगदीशर, हर जगन्नाथ मन पाया, जो ब्रह्मंड खंड सो जानो, गुरमुख बूझो शब्द पछाणो, कट कट पोगे पोगन हारा, रह अतीत सवाया, गुरमत बोलो हर जस सूचा, गुरमत आखी देखो ऊचा, श्रवणी नाम सुने हर बाणी, नानक हर रंग रंगाया, मारू मेला पहला, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज हो निचिंदा, क्रम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया, नित दामन जो चमक चंदायन देखे, एनस ज्योत निरंतर देखे, आनंद रूप अनूप स्वरूपा, गुरपुर देखाया, सतगुर मिलो आपे प्रवतारे, सत्कर सूर दीपक गहनारे, देख अदिष्ट रहो लिव लागी, सब त्रिभवन ब्रह्म सबाया, अमृत रस पाए तृष्णा पौ जाए, अनपौ पद पावे आप गवाए, ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा, निर्मल शब्द कमाया, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग जुग हर जस दीजे, हर जपिए अंत न पाया, अंतर नाम प्राप्त हीरा, हर जपते मन मन से तीरा, दुकट कट पौ पंजन पाई है, बाहुर जन्म न जाया, भगत हेत गुर सब तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा, हर पावे गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सवाया, जिन जप जपियो सतगुर मत वाके,
जमकंकर काल सेवक पगता के उत्तम संगत गत मित उत्तम जग पौजल पार कराया। ए पौजल जगत शब्द गुर तरिय अंतर की दुविधा अंतर जरिय पंच बाण ले जम को मारे गगनंतर तनक चढ़ाया। साकत नर शब्द सुरत क्यों पाये शब्द सुरत बिन आये जाये नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे पाग मिलाया। निरपौ सतगुर है रखवाला भगत परापत गुरु गोपाला सुन आनंद अनाहद वाजे गुर शब्द निरंजन पाया। निरपौ सो सिर नाही लेखा आप अलेख कुदरत है देखा आप अतीत अजोनी संभो नानक गुरमत सो पाया। अंतर की जब सतगुर जाने सो निरपौ गुर शब्द पछाने अंतर देख निरंतर बूझे अंत न मन डोलाया। निरपौ सो अब अंतर वसया एनक नाम निरंजन रसिया नानक हर जब संगत पाये हर सहजे सहज मिलाया। अंतर बाहर सो प्रभु जाने रह अलिप्त चलते कर आने ऊपर आद सर्व तिहु लोई सच नानक अमृत रस पाया। मारू मैला पहला कुदरत करने हार अपारा कीते का नाही क्यों चारा जी उपाय रिजक दे आपे सिर सिर हुक्म चलाया। हुक्म चलाए रहा पर पूरे किस नेड़े किस आखां दूरे गुप्त प्रगट हर कट कट देखो वर्ते ताक सबाया। जिसको मेले सुर समाए गुर शब्दी हर नाम ते आए अनद रूप अनूप अगोचर गुर मिले परम जाया। मन तन तन ते नाम प्यारा अंत सखाई चलन वारा मोह पसार नहीं संग बेली बिन हर गुर किन सुख पाया। जिसको नदर करे गुर पूरा शब्द मिलाए गुरमत सूरा नानक गुर के चरण सरेवो जिन पूला मार्ग पाया। संत जना हर तन जस प्यारा गुरमत पाया नाम तुम्हारा जाचक सेव करे दर हर के हर दर गए जस गाया। सत गुर मिले ता महल बुलाए साची दर गए गत पत पाए साकत ठोर नाई हर मंदर जन्म मरे दुख पाया। सेवो सतगुर समुंद अथाहा पावो नाम रतन तन लाहा विख्या मल जाए अमृत सरनावो गुर सर संतोख पाया। सतगुर सेवो संत न की जय आशा माहे निराश रही जय संसा दुख बिना सन सेवो फिर बहुर रोग न लाया। साचे पावे तिस वडी आए कौन सो दूजा तिस समझाए हर गुर मूरत एका वर्ते नानक हर गुर पाया। वाचे पुस्तक वेद पुराना इक बह सुने सुनावे काना अजदर कपट कहो क्यों खुले बिन सतगुर तत न पाया। करे विपूत लगावे पस में अंतर क्रोध चंडाल सोहो में पखंड की ने जोग न पाये बिन सतगुर अलख न पाया। तीरथ वर्त नेम करे उद्याना जत सत संजम कथे ज्ञाना राम नाम बिन क्यों सुख पाये बिन सतगुर परम न जाया। न्योली करम प्रियंगम पाठी रेचक कुंभक पूरक मनहाठी पखंड तरम प्रीत।

नानक आत्म राम सभाया। गुर सतगुर अलख लखाया, मारू सोले मैला तीजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हुक्मे सहजे सृष्ट उपाए, कर कर वेखे अपनी वड्याई। आपे करे कराए आपे, हुक्मे रहा समाई है। माया मोह जगत गुबारा, गुरमुख बूझे को विचारा। आपे नजर करे सो पाए, आपे मेल मिलाई है। आपे मेले दे वड्याई, गुर प्रसादी कीमत पाई। मनमुख बहुत फिरे बिललांदी, दूजे पाए खुआई है। हौं मैं माया विचे पाई, मनमुख पूले पत गवाई। गुरमुख होवे सो नाए राचे, साचे रहा समाई है। गुर ते ज्ञान नाम रतन पाया, मन सामार मन माहे समाया। आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है। सतगुर सेवे आस गवाए, मिल प्रीतम शब्द सुख पाए। अंतर प्यार पगति राता, सहज मते बन आई है। दुख निवारण गुर से जाता, आप मिलिया जग जीवन दाता। जिसनो लाए सोई बूझे, पौ परम शरीरों जाई है। आपे गुरुमुख

ने संसारा जल जल खपे बहुत विकारा मन मुक्त और न पाए कबू सतगुरु बूझ बुझाई है सतगुरु सेवन सेवड पागी साचे नाम सदा लिव लागी अंतर नाम रविया ने केवल कृष्णा शब्द बुझाई है सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरले किने पछाणी सच्चे शब्द रते बैरागी आवन जान रहाई है शब्द बुझे सो मैल चुकाए निर्मल नाम वसे मन आए सतगुर अपना सद ही सेवे हों मैं विच्चों जाई है गुर ते बूझे तांदर सूझे नाम विहूणा कत कत लूझे सतगुर सेवे की वड्याई कृष्णा फूक गवाई है आपे आप मिले ता बूझे ज्ञान विहूणा किछु न सूझे गुर की दात सदा मन अंतर बाणी शब्द वजाई है जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया।

नानक दास कह बेनंती, पीठिया नाम दर पाई है मारू महला तीजा, एको एक वर्त है सब सोई, गुरमुख गिरला बूझे कोई, एको रव रहा सब अंतर, तिस दिन अवर न कोई है, लख चौरासी जी उपाय, ज्ञानी चानी आठ सुनाए, सबना रिजक समाए आपे, कीमत होर न होई है, माया मोह अंध अंधारा, हौं मैं मेरा पसरिया पासारा, अंदिन जलत रहे दिन राती, गुर बिन शांत न होई है, आपे जोड़ विछोड़े आपे, आपे थाप उठापे आपे, सच्चा हुक्म सच्चा पासारा, होरन हुक्म ना होई है, आपे लाए ले सो लागे, गुर प्रसादी जम का पौ पागे, अंतर सबद सदा सुखदाता, गुरमुख बूझे कोई है, आपे मेले मेल मिलाए, पूर्व लिखिया को मेटना ना जाए, आम दिन भगत करे दिन राती, गुरमुख सेवा होई है, सतगुर सेव सदा सुख जाता, आपे आए मिलिया सबना का।

सूजै अंग दिन नाम रवै दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है मन मुक्तात दूजै है लागा जन्मत की नाम वो अपागा आवत जात बिरसा जन्म गवाया बिन गुरु मुक्त ना होई है काया कुसुद हो मैं मल लाई जे सो तो वै ता मैल ना जाई सबर तो पै ता हच्छी हो वै फिर मैली मूल ना होई है पंच दूत काया संगारे मर मर जम में शब्द ना विचारे अंतर माया मोह गुबारा जो सुपने शुद्ध ना होई है एक पंचा मार शब्द है लागे सतगुर आए मिलियावट पागे अंतर साथ रहे रंग राते सहज समावे सोई है गुर की चाल गुरु ते जापे पूरा सेवक शब्द जापे सदा शब्द रवे कट अंतर रसना रस चाखे सच सोई है हम मैं मारे शब्द निवारे हर का नाम रखे उधारे एक बिन हो होर ना जाना सहजे होए सो होई है बिन सतगुर सहज किने नहीं पाया गुरमुख बूझे सत समाया सच्चा सेव शब्द सच राते हम मैं शब्दे खोई है आपे गुण

है। सात से ते पत होई है, मारू महला तीजा, जग जीवन साचा एको दाता। गुर सेवा से शब्द पछाता, एको अमर एका पत साही, जुग जुग सिरकार बनाई है, सोजन निर्मल जिन आप पछाता, आपे आए मिलिया सुखदाता, रसना शब्द रसी गुण गावे, दर्शा से पत पाई है, गुरमुख नाम मिले वड्याई, मनमुख निंदक पत गवाई, नाम रते परमहंस बैरागी, निज कर तारी लाई है, शब्द मरे सोई जन पूरा, सतगुर आख सुनाए सूरा, काया अंदर अमृत सर साचा, मन पीवे पाए सुवाई है, पढ़ पंडित अवरा समझाए, पर जलते की खबर न पाए, बिन सतगुर से वे नाम न पाए, परखा के सांत न आई है, एक पसम लगाए फिरे पेक तारी, बिन शब्द हूँ मैं किन मारी, हम दिन जलत रहे दिन राती, परम पेक परमाई है, एक ग्रे कुटुम्ब में सदा उदासी, शब्द मोए हर नाम निवासी, हम दिन सदा रहे रंग राते, तह पाए भगत चित लाई है, मन मुख निंदा कर कर विगुता, अंतर लोभ पहुँक है जिस कुत्ता, जम काल तिस कदे न छोड़े, अंत गया पछताई है, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुर को नाम न पाए, प्रभ ऐसी बंत बनाई है, एक सिद्ध साधिक बहुत विचारी, एक ऐनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मिलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है, स्नान दान करे नहीं बूझे, एक मनुआ मार मने सो लूझे, साचे शब्द रते करंगी, साचे शब्द मिलाई है, आपे सिरजे दे वड्याई, आपे पाणे दे मिलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ क्यों फुरमाई है, सतगुर सेवे से जन साचे, मन मुख सेव ना जानन काचे, आपे करता कर कर वेखे, जो पावे त्यों लाई है, जुग जुग साचा एको दाता, पूरे पाग गुर शब्द पछाता, शब्द मिले से विछड़े नाही, नदरी सहज मिलाई है, हूँ मैं माया मैल कमाया, मर मर जम मैं दूजा पाया, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, मन देखो लिव लाई है, जो तिस पावे सोई करसी, आपो हुआ ना किछ होसी, नानक नाम मिले वड्याई, दर्शा ते पत पाई है, मारू महला तीजा, जो आया सो सबको जासी, दूजे पाए बांदा जम फासी, सतगुरु राखे से जन उभरे, साचे साथ समाई है, आपे करता कर कर वेख है, जिसनो नदर करे सोई जन लेख है, गुरमुख ज्ञान से सब किस सूझे, अज्ञानी अंध कमाई है, मन मुख सहसा बूझ न पाई, मर मर जम में जन्म गवाई, गुरमुख नाम रते सुख पाया, सहजे साज समाई है, संदे तावत मन पया मनूरा।

सी का मुख बोले दुर्मत नाम न पाई है। अवगणियारी कंस न पावे मन की जूठी जूठ कमावे। फिर का साव न जाने मूरख बिन गुरबूझ न पाई है। दुर्मत खोटी खोट कमावे सिगार करे फिर खत्म न पावे। गुणवंती सदा पिर रावे सदगुरु मेल मिलाई है। आपे हुक्म करे सब वेखे इकना बख्श ले तुर लेखे। हम दिन नाम रते सच पाया आपे मेल मिलाई है। हम मैं तात मुह रस लाई गुरमुख लिव साची सहज समाई। आपे मेल है आपे कर वेखे बिन सतगुरु बूझ न पाई है। एक शब्द विचार सदा जन जागे एक माया मोह सोए रहे अपागे। आपे करे कराए आपे होर करना किछु न जाई है। काल मार गुर शब्द निवारे हर का नाम रखे और धारे। सतगुरु सेवा के सुख पाया हर के नाम समाई है। दूजे पाए फिरे देवानी माया मोह दुख माए समानी। बहुते पेक करे न पाए बिन सतगुरु सुख न पाई है। किसनो कहिए जा आप कराए जित पावे तित राह चलाए। आपे मेहरवान सुख दाता जो पावे तिह चलाई है। आपे करता आपे पुगता आपे संजम आपे जुगता। आपे निर्मल मेहरवान मधुसूदन जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई है। सेवड पागी जिन्नी एको जाता कट कट वस रहा जग जीवन दाता। एक है गुप्त प्रगट है आपे गुरमुख परम पहु जाई है। गुरमुख हर जियो एको जाता अंतर नाम शब्द पछाता। जिस तू दे सोई जन पाए नानक नाम वडाई है। मारू महला तीजा सत साला ही गहर गंभीर है। सब जग है तिस ही कहती रह सब कट भोग वह सदा दिन राती। आपे सुख निवासी है सच्चा साहिब सच्ची नाई। गुरु प्रसादी मन वसाई आपे आए वस्या कट अंतर टूटी जम की फांसी है। किस सेवी तै किस सलाही सतगुर सेवी शब्द सलाही। सच्चे शब्द सदा मत उत्तम अंतर कमल प्रगासी है। देही काची कागद मिकदारा बूंद पवे बिन सह कहत ना लागे बारा। कंचन काया गुरमुख बूझे जिस अंतर नाम निवासी है। सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पोजन सच आधारा। सदा तृप्त पवित्र है पावन जित कट हर नाम निवासी है। हौ तिन बलिहारी जो साचे लागे हर गुण गावे अम दिन जागे। साचा सुख सदा तिन अंतर रसना हर रस राशी है। हर नाम चेता अवर न पूजा एको सेवी अवर न दूजा। पूरे गुर सब सच दिखाया सच्चे नाम निवासी है। प्रम प्रम जोनी फिर आया आप पूला जा खत्म पुलाया। हर जियो मिले ता गुरमुख बूझे चीने शब्द अविनाशी है। काम क्रोध परे हम अपराधी क्या मुह ले बोले ना हम गुण ना सेवा सादी। डुबदे पाथर मेल ले हो तुम आपे साथ नाम अविनाशी है। ना कोई करे न करने जोगा आपे करे करावे तो होएगा। आपे बख्श ले सुख पाए सभी नाम निवासी है। त्यो तन धरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणज अपारा। सच तन जमया कोट ना आवे अंतर नाम निवासी है। हर जियो अवगणियारे नो गुण की जय आपे बख्श ले नाम दी जय। गुरमुख होवे सो पट पाए इकत नाम निवासी है। अंतर हर तन समझ ना होई गुर प्रसादी बूझे कोई। गुरमुख होवे सो तन पाए सभी नाम निवासी है। अनलवाओ परम फुलाई माया मोह सुध न काई। मनमुख अंधे किछु न सूझे गुरमत नाम प्रगासी है। मनमुख हो मैं माया सूते अपना कर न समाले अंत विगूते। पर निंदा करें बहु चिंता जाले दुखे दुख निवासी है। आपे करते कार कराई आपे गुरमुख दे बुझाई। नानक नाम रते

आपे लाए ले जग जीवन दाता, आपे बख्शे दे वडियाई, गुरमत एव मन पी जय है, माया लहर शब्द निवारी, एव मन निर्मल हो मैं मारी, सहजे गुण गावे रंग राता, रसना राम रवि जय है, मेरी मेरी करत विहानी, मन मुख ना बूझे फिर आनी, जम काल कड़ी मौत निहाली।

माया मोह मैल पतंग ना लागै, गुरमति हर नाम पी जाए, सब नाम विच वरतै एक सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, हौं मैं मार सदा सुख पाया।

वेद पढ़े हर नाम न बूझे, माया कारण पढ़ पढ़ लूजे, अंतर मैल अज्ञानी अंधा, क्यों कर दुत्तर करी जय हे, वेद बाद सब आंख वखाने, ना अंतर पीजे ना शब्द पछाने, पुन पाप सब वेद दृढ़ाया, गुरुमुख अमृत पी जय हे, आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई, नानक नाम रते मन साचा, सच्चो सच रवि जय हे, मारू मैला तीजा, सच्चे सच्चा सच रचाया, निज कर वस्या तिथे मोह न माया, सद ही सात वस्या कट अंतर, गुरमुख करनी सारी है, सच्चा सौदा सचवा पारा, ना तिथे परम न दूजा पसारा, सच्चा तन खटिया कदे तोट न आवे, बूझे को विचारी है, सच्चे लाए से जन लागे, अंतर शब्द मस्तक वड़।

की पौड़ी ज्ञान रतन हूँ मैं मारी है। माया मोह शब्द जलाया सच मन वस्या जा सुद पाया। सच्चे की सब सच्ची करनी हूँ मैं सिखाने वारी है। माया मोह सब आपे कीना गुरमुख विरले किन्ही चीना। गुरमुख वो वैसो सच कमावे साची करनी सारी है। कार कमाई जो मेरे प्रभु पाई हूँ मैं तृष्णा शब्द बुझाई। गुरमत सद ही अंतर शीतल हूँ मैं मार निवारी है। सच लगे तिन सब किस पावे सच्चे शब्दे सच सुहावे। ऐसे साचे से दर साचे नगरी नदर सवारी है। बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सवाया। बिन गुर दुख सुख जाते नाही माया मोह दुख पारी है। साचा शब्द जिना मन पाया पूरब लिखिया तिनी कमाया। सच्चो सेवै सच प्यावे सच रते विचारी है। गुर की सेवा मीठी लागी अन दिन सुख सहज समाधि। हर हर करत्या मन निर्मल होआ गुर की सेव प्यारी है। से जन सुखिए सतगुर सच्चे लाए आपे पाने आप मिलाए। सतगुर राखे से जन उभरे होर माया मोह खुआरी है। गुरमुख साचा शब्द पछाता ना तिस कुटुंब ना तिस माता। एको एक रव्या सब अंतर सब ना जिया का आधारी है। हूँ मैं मेरा दूजा पाया किछ ना चले तुर खत्म लिख पाया। गुर साचे ते साच कमावे साचे दुख निवारी है। जा तू देह सदा सुख पाए साचे सब दे साच कमाए। अंदर साचा मन तन साचा

जा आपे आप उपाय उपन्ना सब में वर्ते एक प्रसन्ना सबना सार करे जग जीवन जिन अपना आप पछाता है जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय फिर सिर संदे आपे लाए जिस पावे तिस आपे मेले जिन गुरुमुख एक हो जाता है आवा गौण है संसारा माया मोह बहुचित है विकारा तिर साचा साला ही सदही जिन गुरु का शब्द पछाता है एक मूल लगे ओनी सुख पाया डाली लागे तिन्नी जन्म गवाया अमृत फल तिन जन को लागे जो बोले अमृत बाता है।

जा तुद पाना ता सच्ची कारे लाए अवगुण छोड़ गुण माए समाए गुण में एको निर्मल साचा गुर कह शब्द पछाता है जह देखा तह एको सोई दूजी दुर्मत शब्द देखोई एक स्ने प्रभ

जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग मजी ठहराता है, मनमुख ज्ञान कते न होई, फिर आवे ठौर न कोई, गुरुमुख ज्ञान सदा साला है, जुग जुग एक हो जाता है, मन मुख कार करे सब दुख सबाए, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाए, गुरुमुख शब्द वसे मन साचा, सद से वे सुख दाता है। जह देखा तू सबनी थाई, पूरे गुर सब को जी पाई, नामो नाम से आई है सदा सद, ये मन ना मेरा ता है, ना मेरा ता पवित्र शरीरा, बिन नामे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, इतना गुरुमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुरु बूझ बुझाई, बिन नामे मुक्त किने ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह

दर साचे साच पछाता है मारू सो ले तीजा। आपे करता सब जिस करना जी जंक सब तेरी सरना। आपे गुप्त वर्त सब अंतर गुर कै शब्द पछाता है। हर के भगत परे पंडारा आपे।

कर कृपा आप पछाता है। जिसनो नदर होवे तुर तेरी, मरे न जम्मे चूके फेरी। साचे गुण गावे दिन राती, जुग जुग एक हो जाता है। माया मोह सब जगत उपाया, ब्रह्मा विष्णु देव सबाया। जो तुड पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है। पाप पुनवर्ते संसारा, हर्ष शोक सब दुख है पारा। गुरुमुख हो वह सो सुख पाए, जिन गुरुमुख नाम पछाता है। कीर्तन कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मोख द्वारा। पूर्व लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है। माया मोह हर क्यों चितना लागे, दूजे पाए कणा दुख आगे। मनमुख परम पुले पेख सारी, अंतकाल पछताता है। हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किलबिस काटे दुख सवाए। हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर तेती मन राता है। जिसनो नजर करे सो गुण निद गाए, हों मैं मेरा ठाक रहाए। गुण अवगुण काहे को दाता, गुरुमुख वीर ली जाता है। मेरा प्रभ निर्मल अत अपारा, आपे मेले गुर शब्द विचारा। आपे बख्शे सच दृढ़ाए, मन तन साचे राता है। मन तन मेला विच जोत अपारा, गुरमत बूझे कर विचारा। हों मैं मार सदा मन निर्मल, रसना सेव सुख दाता है। गढ़ काया अंदर बहु हट बजारा, तिस विच नाम है अत अपारा। गुर कै शब्द सदा दर्शो है, हों मैं मार पछाता है। रतन अमोलक अगम अपारा, कीमत कवन करे बेचारा। गुर कै शब्दे तोल तोलाए, अंतर शब्द पछाता है। सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा, माया मोह पसरिया पासारा। मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझे, गुरमुख विर ले जाता है। आपे करता करे कराए, सच्ची बाणी सच दृढ़ाए। नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एक हो जाता है। मारू महला तीजा, को सच सेवियो सृजन हारा। सबदे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई। आपे अगम असहा है, आपे सच्चा सत वर्ताए। एक जन सच है आपे लाए, साचो सेवे साच कमावे। नामे सच समाहा है, तुर पगता मेले आप मिलाए। सच्ची पगती आपे लाए, साची बाणी सदा गुण गावे। इस जन्मे का लाहा है, गुरुमुख

करें पर आप पछाने, एक बिन को अवर न जाने, सच्चा सा सच्चे बन जा रे, पूंजी नाम विसाहा है, आपे साजे श्रेष्ठ उपाय, विरले को गुर शब्द बुझाए, सतगुर सेवे से जन साचे, काटे जम का फाहा है, पन्ने करे सवारे साजे, माया मोह दूजे जंत पाजे, मन मुख सिरे सदा अंध कमावे, जम का जेवड़ा गल फाहा है, आपे बख्शे गुर सेवा लाए, गुरमती नाम मन वसाए, अंदर नाम ते आए साचा, इस जग में नामो लाहा है, आपे सच्चा सच्ची नाई, गुरमुख देवे मन वसाई, जिन मन वस्या से जन सो है, तिन सिर चूका कहा है, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुर प्रसादी मन वसाई, सदा शब्द सलाही गुणदाता, लेखा कोई न मंगे ताहा है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा, अंत न पावे अलखवेवा, जिनको नजर करे तू अपनी, गुरमुख अलख लखाहा है, पूरे सतगुर सो जी पाई, एको नाम मन वसाई, नाम जपी तै नाम ते आई, महल पाए गुण गाहा है, सेवक सेवे मन हुक्म अपारा, मन मुख हुक्म न जाने सारा, हुक्मे मन्ने हुक्मे वड्याई, हुक्मे वे परवाहा है, गुर प्रसादी हुक्म पछाने, तावत राखे।

सबत सलाह है से जन निर्मल निज करवा सा ताहा है। सदा भगत तेरी शरण आई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई। ज्यों तुद पावे त्यों तू राखे गुरु।

सच देवो सच समाहा है मारू मैला तीजा। सतगुर सेवन सेवड पागी अंदिन साच नाम लिव लागी। सदा सुख दाता रव्या कट अंतर शब्द सच्चा ओ माहा है। नदर करे ता गुरु मिलाए हर का नाम मन वसाए। हर मन वस्या सदा सुख दाता सबदे मन ओ माहा है। कृपा करे ता मेल मिलाए हो मैं ममता शब्द जलाए। सदा मुक्त रहे इक रंगी नाही किसे नाल कहा है। बिन सतगुरु सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई न पावे पारा। जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्द लाहा है। दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा पाओ आप वरताया। गुरमुख होवे सो अलिप्तो वरते मन मुख का क्या बेसाहा है। से मन मुख जो शब्द ना पछाने गुर के तय की सार न जाने। तै बिन क्यों निरपो सच पाये जम काड लेगा सहा है। अफरियो जम मारिया ना जाई गुर के शब्दे नेर ना आई। शब्द सुने ता दूरों पागे मत मारे हर जियो वे परवाह है। हर जियो की है सब फिरकारा एहो जम क्या करे विचारा। हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मे कटदा सहा है। गुरमुख साचे किया आकारा गुरमुख पसरिया सब पासारा। गुरमुख होवे सो सच बूझे शब्द सच्चे सुख ताहा है। गुरमुख जाता कर्म विधाता जुगचारे गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरे ना जन्मे गुरमुख गुरमुख शब्द समाहा है। गुरमुख नाम शब्द साला है अगम अगोचर वे

आए, गुरुमुख हो वह सो नाम बूझे, काटे दुर्मत साहा है, गुरुमुख उपजे साज समावे, ना मर जमे ना जूनी पावे, गुरुमुख सदा रहे रंग राते, अंदिन लें दे लाहा है, गुरुमुख भगत सोहे दरबारे, सच्ची बाणी सब सवारे, अंदिन गुण गावे दिन राती, सह छेती कर जाहा है, सतगुर पूरा सब सुनाए, हम दिन भगत करो लिव लाए, हर गुण गावे सद ही निर्मल, निर्मल गुण पाप सहा है, गुण का दाता सच्चा कोई, गुरमुख बिरला बूझे कोई, नानक जन नाम सलाहे, बिसे सो नाम बेपरवाह है, मारू महला तीजा, हर जियो सेवियो अगम अपारा, किसदा अंत न पाये पारा वारा, गुर प्रसाद रविया कट अंतर तित कट मत अगाहा है, सब में वरते एको सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सबना प्रतपाल करे जग जीवन, दींदा रिजिक संभाहा है, पूरे सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगत उपाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर साहा पास साहा है, सच्चा सतगुर शब्द अपारा, किस दै शब्द निस्तर है संसारा, आपे करता कर कर वेख है, देंदा सास गिराहा है, कोट मदे किसे बुझाए, गुर कै शब्द रते रंग लाए, हर साला है सदा सुखदाता, हर

पूरा साथ दृढ़ाए, सच्चे सबद सदा गुण गाए, गुणदाता वरते सब अंतर, सिर सिर लिखदा साहा है, सदा हदूर गुरमुख जाते, सब दे सेवे सो जंत्रापे, अन दिन सेवे सच्ची बाणी, सबद सच्चे ओ महा है, अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए, मन हठ कर्म फिर जो नी पाए, विख्या कारण लब लोभ कमावे, दुर्मत का दो रहा है, पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर के शब्द हर नाम चित लाए, मन तन हर रविया कट अंतर, मन पीने भगत सलाहा है, मेरा प्रभु साचा असुर संगारण, गुर के शब्द भगत निस्तारण, मेरा प्रभु साचा सद ही साचा, फिर साहा पाप साहा है, से भगत सच्चे तेरे मन पाए, दर कीर्तन करे गुर शब्द सुहाए, साची बाणी अन दिन गावे, निरसन का नाम विसाहा है, जिन आपे मेल भी छोड़े नाही, गुर के शब्द सदा साला ही, सबना सिर तू एको साहिब, सब दे नाम सलाहा है, बिन शब्द तुदनो कोई न जानी, तुद आपे कथी अकथ कहानी, आपे शब्द सदा गुरदाता, हर नाम जप संभा है, तू आपे करता सृजनहारा, तेरा लिखिया कोई न मेटनहारा, गुरमुख नाम देवे तू आपे, सहसा गणत ना ताहा है, भगत सच्चे तेरे दरबारे, सब दे सेवन पाए प्यारे।

गुर कै शब्द अमृति आया, अमृति अमरा पद होए, गुर कै शब्द रस पाहा है, आप पछाने सो सब गुण जाने, गुर कै शब्द हर नाम वखाने, हम दिन नाम रता दिन राती, माया मोह चुकाहा है, गुर सेवा ते सब किछ पाए, हौ मैं मेरा आप गवाए, आपे कृपा करे सुखदाता, गुर कै शब्द सोहा है, गुर का शब्द अमृत है बाणी, हम दिन हर का नाम वखाणी, हर हर सच्चा वसै कट अंतर, सो कट निर्मल ताहा है, सेवक सेवे शब्द सलाहे, सदा रंग राते हर गुण गावे, आपे बक्से शब्द मिलाए, परमल वास मन ताहा है, शब्दे अकप तथे साला है, मेरे प्रभ साचे वे परवाहे, आपे गुण दाता शब्द मिलाए, शब्द का रस ताहा है, मन मुख पूला ठौर न पाए, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाए, बिख्या राते बिख्या खोजे, मर्जन में दुख ताहा है, आपे आप आप साला है, तेरे गुण प्रभ तुझी माहे, तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची, आपे अलख अथाहा है, बिन गुरदाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए, गुर कृपा ते तत अंतर वस्या, सब दे सच सलाहा है, से जन मिले

पूरे गुरते सो जी होई, हर रस पीने सदा त्यायन, गुरमत शील सनाहा है, अंदर रंग सदा प्यारा, गुर कै सबद हर नाम प्यारा, नौ निद नाम वस्या सठ अंतर, छोड़िया माया काला है, रैयत राजे दुर्मत दोई, बिन सतगुर सेवे एक न होई, एक त्यायन सदा सुख पायन, नेचल राज तिनाहा है, आमन जाना रखे न कोई, जम्मन मरण तिसहते होई, गुरमुख साचा सदा त्यावो, गत मुक्त तिसहते पाहा है, सच संजम

हौ मैं मोह उपजय संसारा, सब जग बिन सह नाम विसारा, बिन सतगुर सेवे नाम न पाये, नाम सच्चा जग लाहा है, सच्चा अमर शब्द तुहाया, पंच शब्द मिलवा जावाया, सदा कारज सच नाम सुहेला, बिन शब्द कारज केहा है, छिन में हसे छिन में रोवे, दूजी दुर्मत कारज न होवे, संजोग विजोग करते लिख पाए, कीर्तना चले चलाहा है, जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए, हर क्यों सद ही रह समाए, गुर कृपा से मिले वड्याए, हौ मैं रोग ना ताहा है, रस रस खाए पिंड वधाए, एक करे गुर शब्द ना कमाए, अंतर रोग महा दुख पारी, बिस्ता माए समाहा है, वेद पढ़े पढ़ बाद वखाने, कट में ब्रह्म तिस शब्द ना पछाने, गुरमुख होवे सो तत बिलोवे, रसना हर रस्ता है, सार वस छोड़े बाहर तावे, मन मुख अंधे साध न पावे, अन रस राती रसना फीकी, बोले हर रस मूल न ताहा है, मन मुख देही परम पकारो, दुर्मत मरे नित होए खुआरो, काम क्रोध मन दूजे लाया, सुपने सुख न ताहा है, कंचन देही शब्द पतारो, आम दिन पोग पोगे हर स्यो प्यारो, महला अंदर गैर महल पाए, पाना बुझ समाहा है, आपे देवे देवनहारा, तिस आगे नहीं किसे का चारा, आपे बक्ते शब्द मिलाए, तिस दा शब्द अथाह है, जियो पे

हर जप जाप समाहा है मारू महला तीजा। गुरमुख नाद वेद विचार गुरमुख ज्ञान ध्यान अपार। गुरमुख कार करे प्रभ पावे गुरमुख पूरा पाएदा। गुरमुख मनुआ उल्ट परावे गुरमुख बाणी नाद बजावे। गुरमुख सच रते बैरागी निज कर वासा पाएदा। गुर की साखी अमृत पाखी सच्चे सबदे सच तुवाखी। सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच समाएदा। गुरमुख मन निर्मल सत करनावे मैल न लागे सच।

सब सेम है सत्यो सच्चा। गुरमुख सबक सुनाएदा गुरमुख हो वै सो सो जी पाए। हो मैं माया परम गवाए गुर की पौड़ी उत्तम ऊंची दर सच्चे हर गुण गाएदा। गुरमुख सच संजम करनी सार गुरमुख पाए मोख द्वार। पाए पगत सदा रंग राता आप गवाए समाएदा। गुरमुख हो वै मन खोज सुनाए सच्चे नाम सदा लिवलाए। जो तिस पावे सोई करसी जो सच्चे मन पाएदा। जां तिस पावे सतगुरु मिलाए जां तिस पावे ता मन वसाए। अपने पाने सदा रंग

गुरमुख निर्मल मैल न लावे, नानक नाम रते विचारी, नाम में नाम समाएदा, मारू महला तीजा, आपे श्रेष्ठ हुकम सब साजी, आपे खाप उठाप निवाजी, आपे न्याय करे सब साचा, साचे साथ मिलाएदा, काया कोट है आकारा, माया मोह पसरिया पासा।

तक अंतर रसना नाम से आएगा। जिस अंतर पवे अंतर नहीं पाले, माया मोह बद्दा जम काले। जम की फांसी कब होना टूटे, दूजे पाए परमाएगा। जब तब संयम होर कोई नाही, जब लग गुर का शब्द ना कमाही। गुर के शब्द मिलिया सच पाया, सच्चे सच समाएगा। काम क्रोध सबल संसारा, बहु कर्म कमावे सब दुख का पसारा। सतगुरु सेवे से सुख पावे, सच्चे शब्द मिलाएगा। पौन पानी है बेसंतर, माया मोह वर्त है सब अंतर। जिनकी ते जात से पछाने, माया मोह चुकाएगा। एक माया मोह गर्भ व्यापे, हमें होए रहे हैं आपे। जम काले की खबर न पाई, अंत गए।

सच नाम सितलाएंदा मारू महला तीजा आद जुगाद दया पत दाता पूरे गुर कै शब्द पचाता तुदनो सेवै से तुझे समावै तू आपे मेल मिलाएंदा अगम अगोचर की।

मत देहे सो होवे तू आपे शब्द बुझाएंदा आन दिन आर जा छिजदी जाए रैन दिन दोए साखी आए मन मुख अंध ना के तै मूड़ा सिर ऊपर काल रुआएंदा मन तन शीतल गुर चरणी लागा अंतर परम गया पौ पागा सदा आनंद सच्चे गुण गावे सच बाणी बोलाएंदा जिन तू जाता कर्म विधाता पूरे पाग गुर शब्द पछाता जत पत सच सच

जुग छत्ती कियो गुबारा, तू आपे जाने सिरजनहारा, होर क्या को कह के आख वखाने, तू आपे कीमत पाएंदा, ओंकार सब सृष्ट उपाय, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई, आपे वेख करे सब साचा, आपे पन कराएंदा, बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुरते नदरी आई, सदा अलिप्त रह गुर सबदी, साचे सों चितलाएंदा, बाजे बाजे तुन आकारा, आप वजाए वजावन हारा,

सहसा मूल न चुके विकारा, गुरमुख वो वैसो गणत चुकाए, सच्चे सच समाए दा, जे सच दे ता पाए कोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सच नाम सलाहे रंग राता, गुर कृपा ते सुख पाए दा, जप तप संजम नाम प्यारा, किलविख काटे काटनहारा, हर कै नाम तन मन शीतल होवा, सहजे सहज समाए दा, अंतर लोभ मन मैले मल लाए, मैले कर्म करे दुख पाए, कूड़ो कूड़ करे वा पारा, कूड़ बोल दुख पाए दा, निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए, गुर कै पाणे चले दिन राती, नाम चेत सुख पाए दा, आप सिरंदा सच्चा सोई, आप उपाय खपाए सोई, गुरमुख हो वैसो सदा सलाहे, मिल साचे सुख पाए दा, अनेक जतन करे इंद्री वसना होई, काम क्रोध जले सब कोई, सतगुरु

सहजे भगत करे दिन राती, आपे भगत कराएंदा। सतगुर ते बिछड़े तिन्नी दुख ताया, अंदिन मारिये दुख सबाया। मत्थे काले महल न पावे, दुख ही विच दुख पाएंदा। सतगुर सेवे सेवड़ पागी।

अंतर साज परम सुखाए सत सचै का आपे दाता जिस देवे सो सच पाएदा आपे करता सबना का सोई जिसनो आप बुझाए बुझे कोई आपे बख्शे दे वडियाई आपे मेल मिलाएदा हो मैं कर दिया जन्म गवाया आगे मोह न चूके माया अगे जम काल लेखा ले रहे जो तिल कानी पीड़ाएदा पूरे पाक गुर सेवा होई नजर करे ता सेवे कोई जम काल तिस नेड़ ना आवे महल सच्चे सुख पाएदा तिन सुख पाया जो तुद पाए पूरे पाक गुर सेवा लाए तेरे हथ है सब वड्याई जिस देवे सो पाएदा अंदर प्रदास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए ज्ञान

अपना पाना आप मनाएंदा, तेरा पाना मन्ने सो मिले तुदाए, जिस पाना पावे सो तुझे समाए, पाने विच वड्डी वड्याई, पाना किसे कराएंदा, जात इस पावे ता गुरु मिलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए, खुद अपने पाने सब श्रेष्ठ उपाई, जितनो पाना दे तिस पाएंदा, मनमुख अंध करे चतुराई, पाना न मन्ने बहुत दुख पाई, पर में पूला आवे जाए, कर महल न कभू पाएंदा, सतगुर मेले दे वड्याई, सतगुर की

रसना नाम से आए रस पी जाए, रस ही ते रस पाएगा, महले अंदर महल को पाए, गुर कह शब्द सच चित लाए, जिसनो सच देव सोई सच पाए, सच्चे सच मिलाएगा, नाम विसार मन तन दुख पाया, माया मोह सब रोग कमाया, बिन नामे मन तन है कुश्ती, नरके वासा पाएगा, नाम रते तिन निर्मल देहा, निर्मल हंसा।

गुर कै शब्द हर मन वसाए, गुर कृपा ते नाम वसिया कट अंतर, नामो नाम ते आइंदा, नावे नो लोचे जेती सब आई, नाव तिना मिले तुर पुरब कमाई, जिनी नाव पाया सेवड पागी, गुर कै शब्द मिलाएंदा, काया कोट अत अपारा, तिस विच बह प्रभ करे विचारा, सच्चा न्याय सच्चो वापारा, निचल वासा पाएंदा, अंतर कर बंके थान सुहाया, गुरमुख विरले किने थान पाया, इस साथ निभ है साला है।

शरीर सब मूल है माया, दूजे पाए परम पुलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएगा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर्श कह जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएगा, बिन पादा गुर से

गुर प्रसादी हर मिले मिलाया, सच्चा प्रभु सच्चा वापारा, नाम अमोलक पाएदा, इस काया की कीमत किने न पाई, मेरा ठाकुर ए बणत बनाई, गुरमुख हो वै सो काया सो दे, आपे आप मिलाएदा, काया विच तोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजे वे परवाहा, गुरमुख वणज सदा सुख पाए, सहजे सहज मिलाएदा, सच्चा महल सच्चे पंडारा, आपे देवे देवनहारा, गुरमुख साला है सुखदाते, मन मेले कीमत पाएदा, काया विच वस्त कीमत नहीं पाई, गुरमुख आपे दे वड्याई, जिसदा हट सोई वत जाने, गुरमुख दे ना पछोताएदा, हर जियो सब में रहा समाई, गुर प्रसादी पाया जाई, आपे मेल मिलाए आपे, सब दे सहज समाएदा, आपे सच्चा शब्द मिलाए, शब्दे विच्चों परम चुकाए, नानक नाम मिले वड्याई, नामे ही सुख पाएंदा, मारू महला तीजा, अगम अगोचर वे परवाहे, आपे मेहरवान अगम अथाहे, अपड़ कोई न सके तिसनो, गुर शब्दी मेलाया, तुदनो सेवे जो तुद पावे, गुर कै शब्दे सच समावे, अन दिन गुण रवे दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मरे से मरण सवारे, हर के गुण हृदय उतारे, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाव चुकाया, हर जियो मेले आप मिलाए।

अंत न पारा कीमत नहीं पाई। आपे दया करे सुखदाता गुण में गुणी समाया। इस जग में मोह है पसारा मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा। तंदे तावत जन्म गवाया बिन नावे दुख पाया। कर्म होवे ता सतगुरु पाए हौ मैं मैल शब्द जलाए। मन निर्मल ज्ञान रतन चानन अज्ञान अंधेर गवाया। तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई सच नाम हर हृदय वसाई। कीमत कौन करे प्रभ तेरी तू आपे सहज समाया। नाम अमोलक अगम अपारा ना को हुआ तो लनहारा। आपे तोले तोल तोलाए गुर शब्दी मेल तो

नाए समाया अज्ञान तृष्णा इस तने जलाए। इस दी बूझे जे गुर शब्द कमाए तन।

मिलाया पूरे शब्द भगत सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई मन तन सच्ची भगती राता सच्चे सो चित लाया हौं मैं विच सब जले शरीरा कर्म होवे पेटे गुरपूरा अंतर अज्ञान शब्द बुझाए सतगुर ते सुख पाया मन मुख अंधा अंध कमाए बहु संकट जो नी परमाए जम का जेवड़ा कदे न काटे अंते बहु दुख पाया आवन जाना शब्द निवारे सच नाम रखे उधारे गुर के शब्द मरे मन मारे हौं मैं जाए समाया आवन जाने परज विगोई बिन सतगुर थिर कोई न होई अंतर जोत शब्द

पंच दूत वस आया, बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुबे वारो वारा, सतगुर पेटे सच दृढ़ाए, सच नाम मन पाया, साचा दर साचा दरबारा, सच्चे सेवे शब्द प्यारा, सच्ची तुन सच्चे गुण गावा, सच्चे माए समाया, करे अंदर को कर पाए, गुर कै शब्दे सह सुवाए, उथे सोग विजोग ना व्यापे।

दुखो दुख कमाया, सतगुर बाजो संगत न होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई, सहजे गुण रवे दिन राती, ज्योति ज्योत मिलाया, काया बिरख पंखी विचवासा, अमृत चुगे गुर सब

आपे कृपा करे नाम देवै, नानक नाम समाई है। ज्ञान रतन मन प्रगट पया, नाम पदार्थ सहजे लया। ए वडियाई गुर ते पाई, सतगुर को सद बल जाई है। प्रगटिया सूर निस्मिटिया अंधियारा, अज्ञान मिटिया गुर रतन अपारा। सतगुर ज्ञान रतन अत पारी, कर्म मिले सुख पाई है। गुरुमुख नाम प्रगटी है सोए, चहु जुग निर्मल हच्छा लोए। नाम में नाम रते सुख पाया, नाम रहा लिव लाई है। गुरुमुख नाम प्राप्त होवे, सहजे जागे सहजे सोवे। गुरुमुख नाम समाय समावे, नानक नाम त्याई है। पगता मुख अमृत है बाणी, गुरुमुख हर नाम आख वखाणी। हर हर करत सदा मन बिगसे, हर चरणी मन लाई है। हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किछ नाही, सतगुर ते समझ पड़ी मन माही। हो दयाल कृपा कर हर जियो, सतगुर की सेवा लाई है। जिन सतगुर जाता तिन एक पछाता, सर्वे रव रहा सुखदाता। आत्म चीन परम पद पाया, सेवा सुरत समाई है। जिनको आद मिली वडियाई, सतगुर मन वसिया लिव लाई। आप मिलिया जग जीवन दाता, नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा, हर अगम अगोचर सदा अविनाशी। सर्वे रव रहा कटवासी, तिस बिन

गगन रहाया हुक्मे चरणा, अगन उपाय ईदन मह बांधी, सो प्रभ राख पाई हे। जी जंत को रिजक संभाहे, करण कारण समरथ अपाहे, खिन मह थाप उथापन हारा, सोई तेरा सहाय है। मात गर्भ में जिन प्रतपालिया, सास गिरास होए संग समालिया, सदा सदा जपिय सो प्रीतम, वड्डी जिस वड्या

थानंतर अंतर जामी सिमर सिमर पूरन परमेश्वर चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा हर जस कीर्तन संग तन ताहा ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने जीत आवो वसो कर अपने लख चौरासी नरक न देखो रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मंड उदाहरण हारा ऊंच अथा अगम अपारा जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी सो जनत सहते आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले कर कृपा की ने कर गोले अनहद ऋण चुनकार

जित उतरै पूख प्यासा है, सगले कर्म धर्म जुग सादा, बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा, पई कृपा नानक सत्संगे, तो तन फिर आनंद उलासा है, तन अंधी फिर चपल सियाना।

जो प्रेह बचन कहे तन साचे, तन कछु ना समझे चंचल काचे, बहुर बहुर फिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासाए, आई आ गया फिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया।

मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटा खावे, जितने नरक से मनमुख पोगे, गुरमुख लेप ना मासा है, गुरमुख सोए जे हर जियो पा।

मेरा कट कट पूरन सिर सिरैन मेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा है हरखवंत अनंत दयाला प्रगट रहो प्रभु।

गुरु गोपाल गुरु गोविंदा गुरु दयाल सदा बख्शिंदा गुरु सासत सिमरत खट कर्मा गुरु पवित्र अस्थाना है गुरु सिमरत सब किल विखनास है गुरु सिमरत जम संग न फास है गुरु सिमरत मन निर्मल होवे गुरु काटे अपमाना है गुरु का सेवक नरक न जाए।

सतगुर पेट हर जस मुख पणिए कल कलेश मिटाए सतगुर हर दरगे देवे माना है अगम अगोचर गुरु दिखाया पूला मार्ग सतगुर पाया गुर सेवक को बिघन न पगती हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है गुर दृष्टाया सबनी ठाई जल थल पूर रहा गोसाई ऊंच ऊन सब एक समाना मन लागा सहत्याना है गुर मिले सब तृष्ण बुझाई गुर मिले ने जो है माई सत संतोख दिया गुरपूर है नाम अमृत पी पाना है गुर की बाणी सब माए समाणी आप सुनी तैं आप वखाणी जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे तिन पाया ने चल थाना है सतगुर की महिमा सतगुर जाने जो किच करे सो आपन पाने साधु तूर जाचे जन तेरे ना।

हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी, अनेक रंग करें बहु पांति, जो पिता पूत लड़ाएदा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ता मिली है जान ले मिलाई, गुरमुख प्रगट पया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखाएदा, तू आपे करता कारण करना, सृष्ट उपाय तरी

श्रवण सुनिए। दूजी अवर न जाप सकाई, सगल तुम्हारी तारणा। आप चितारे अपना किया, आपे आप प्रवथिया। आप उपाय रचुन पसारा, आपे कट कट सारणा। एक उपाय वड दरबारी, एक उदासी एक करबारी। एक पूखे एक त्रिपत अघाए, सब सह तेरा पारणा। आपे सत सत सत साचा, ओत पोत भगतन संगराचा। आपे गुप्त आपे है प्रगट, अपना आप पसारणा। सदा सदा सद होवन हारा, ऊंचा अगम अथा।

प्रभु पुरख निरारे आप छोड़ पे शरण आए जिसका साथ इस कालना ऐसा कोवड़ पागी आया आठ पहर जिन खसम ते आया तिस जन के संग तर

गुर की सेव न जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई, जिसनो लाए ले सो सेवक, जिस वड पाग मथाएना, गुर की महिमा बेद न जाने, तुच्छ मात सुन सुन वखाने, पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर, जिस सिमरत मन शीतला।

पायणा संतन की शरणाई पड़िया जियो प्राण तन आगे तरिया सेवा सुरत न जाना काई तुम करो दया किरमायणा निर्गुण को संग लिहो रलाए कर कृपा मोह टहले लाए पखा फेरो पीसो संत आगे चरण तोए सुख पायणा बहुत दुआरे परम परम आया तुमरी कृपा ते तुम शरण आया सदा सदा संतें संग राखो इहो नाम दान देव।

सिद्धैत सब सिमरै अगनत ना जाई जस गना सिमरै पश पंखी सब पूता सिमरै वन पर्वत अवधूता लता बलि साख सब सिमरै रब रहया स्वामी सब मना सिमरै थूल सूखम सब जनता सिमरै सिद्ध साधिक हरमंता गुप्त प्रगट सिमरै प्रभ मेरे सगल पवन।

परम रुना। गुरु का शब्द वसै मन जाके, दुख दर्द प्रमता का भागे। सुख सहज आनंद नाम रस, अनहद बाणी सहज तुना। सो तनवंता जिन प्रवत्याया, सो पतवंता जिन

गुर ज्ञान अंजन काट्यो परम सगला अवर न दिसे एक बिना ऊंचे ते ऊंचा दरबारा चहन न जाई अंत न पारा गैर गंभीर अथा स्वामी।

पंजवा प्रभ समरथ सर्व सुख दाना सिमरो नाम हो मेहरवाना हर दाता जी जंत पेखारी जन बांचे जा चंगना मांगो जन तूर परम गत पावो जन्म जन्म की मैल मिटावो दीर्घ रोग मिटे।

पंगना मन तन अर्प तरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतिपालक हत त्यागी हो मैं हंतना जल थल पूरन अंतर जामी कट कट रव्या अचल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर तोट भंडार नाही रत्न।

एको एक रविया सब ठाई, तिस बिन दूजा कोई नाही, आद मद अंत प्रभ रविया, त्रिष्ण बुझी परमंगना, गुर परमेश्वर गुर गोविंद, गुर कर्ता गुर सदबक्संद, गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना।

आन मंगन ने किंचना काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बनी हर बाणी मन नाम मजी ठहरंगना सोले कला संपूर्ण फलिया अनत कला होए ठाकुर चढ़िया अनद विनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले मैला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद तू साहेब हों सेव।

जिस जाए अगम अगोचर बेअंत अतोला है ना ही किछ आहारा कीमत कोई न जाने दूजा आपे आप निरंजन पूजा आप सुज्ञानी आप त्यानी आप सतवंता अत गाड़ा केतड़िया दिन गुप्त कहाया।

आपे सूरा अमर चलाया, आपे शिव वरतायन अंतर, आपे शीतल ठार गड़ा, जिसे निवाजे गुरमुख साजे, नाम वसे तिस अनहद वाजे, तिस ही सुख तिस ही ठकुराई, तिसे न आवे जम नेड़ा, कीमत कागज कही न जाई, कहो नानक बेअंत गुसाई, आद मद अंत प्रभ सोई।

अच्युत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर जामी मधुसूदन दामोदर स्वामी रिखी केश गोवर्धन तारी मुरली मनोहर हर रंगा मोहन माधव कृष्ण मुरारे जगदीशर हर जियो असर संगारे जग जीवन अविनाशी ठाकुर।

खाओ अविनाशी अवगत अगोचर सब किछ तुझ ही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी मछ कछ कूरम आ गया औतरासी केशव चलत करें निराले कीता लोड़ें सो होएगा निराहारी निर्वैर समाया तार खेल चतुर पुज कहाया।

मुकुट बैन शंख चक्र गदा है तारी महासारथी सत्संगा पीत पीतंबर त्रिभवन धनी जगन्नाथ गोपाल मुखपणी सारंग तार भगवान बीठला मैं गणत न आवे सरबंगा नेह कंटक नेह केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पयाल।

तुदलेप नहीं एक तिल रंगा, एक जी गुण कमन बखाने, सहस फनी शेख अंत न जाने, नवतन नाम जपे दिन राती, एक गुण नाही प्रभ कह संगा, ओट गही जगत पित सरनाया।

मस्तक लाए परम पद पावो, जिस प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाते, तिन साधु चरण लै हृदय पराते, सगल नाम निधान तिन पाया, अनहद शब्द मन वाजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जेबा।

दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदक ले बांधो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पैखा का, पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लाह आला हुजरा, सच कमावे सोई काजी, जो दिल सो दे होई हाजी, सो मौला मलऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफतरा, सबे वक्त सबे कर वेला, खालक याद दिले मह मौला, तस्बी याद करो दस मर्दन, सुन्नत सील बंधान बरा, दिल में जानो सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फान।

सिमरत नाम अन दिन जागे अनद विनोद करे हर सिमरन तिस माया संग न ताल का रोग सोग दुख तिस नाही साध संग हर कीर्तन गाए।

इनकी तोड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरै नाही काहू बेरा, इनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अंकार सजाए, तिस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हों बलिहारी सतगुरु पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ विसरै नाही, आठ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का, मारू मेला पंजवा, इको अंकार सतगुर प्रसाद। चरण कमल हृदय नित तारी, गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साज सवारे, सास दरास समाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग पज अचुत स्वामी, दरगै शोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौनिध, सर्व कल्याण जे मन में चाहे, मिल साधु स्वामी रावणा, सासत सिमरत वेद बखान।

बदने कटे ना कटाए सोई होए जे करते भावे कह कह आप वजावना अंधकूप ते से ही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा तार रखे कर अपने मिल साधु गोविंद त्यावना तेरी कीमत कहना जाई अचरज रूप वड्डी वड्याई।

है मनमाए समाना, हर जियो का महल पाया सच लाए त्याना, जिन गुरु प्रसादी मन जीतिया जग तिन्हें जिताना। श्लोक महला तीजा, जोगी होवा जग पवा कर कर पी ख्या लेओ, दरगे लेखा मंगिए किस किस उत्तर देओ, पिख्या नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल, देखी हाथ ना लदिया सब बदी जमकाल, नानक गल्ला झूठिया सच्चा नाम समाल। मैला तीजा, जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवियो ना कोई, ऐसा सतगुरु।

छोड़ लहो जिस जेवड़ अवर न कोए, तिस शरणाई छूटी है लेखा मंगे न कोए, सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होए, नानक सच्चे हुक्म मने सच्ची वड्याई दे, सच्चे माहि समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी, सूरे ए ना आखिए अंकार मरे दुख पावे, अंधे आपना पछाणनी दूजे पच जावे, अत क्रोध स्यो लूज दे अगे पिछे दुख पावे, हर जियो अंकार ना पावे।

मारे एवं मन मारे या न मरे जे लोचे सब कोए नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुरु पेटे सोए पौड़ी। दोवे तरफा उपाय उन विच सकत शिव वासा शक्ति किने न पायो फिर जन्म विनाशा गुर सेवे सांत पाये जब सांस गिरासा सिमरत सासत सोध देख उत्तम हरदासा नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। श्लोक महला तीजा होवा पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार नवखंड मध्य पूजिया अपने चज विचार मत सच्चा अखर पुल जाए चौके पिटे ना कोए झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा आप उपाय करे आप आपे नजर करे आपे दे वडिआइया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजे अफरियो जग में वर्तदा पापी स्यों लूजे गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजे सो हर शरणाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजे मन विचार हर जप करे हर दरगे सीजे। श्लोक महला पहला।

इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाए हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुबाए पौड़ी मनमुख काल व्यापदा मोय माया लागे।

जो हर लिव जागे सब तेरी तुद छड़ावनी सब तुदै लागे। श्लोक महला पहला। सर्वे जोय अगच्छमी दुख कनेरो आत कालर लादस सर लागणो।

नानक मेलन नाम पौड़ी आपे पिंड सवारियों विच नव निध नाम इक आपे परम पुलायन तिन ने फल काम इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम इकनी सुन के मन्या हर उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम श्लोक महला पहला पोल तन पै मन वसे है कै पादर हीड अत डापन दुख कणो तीने खा परीड महला पहला मांदल बेद से बाजनो कणो तड़िए जोए नानक नाम संभाल तू बीजो अवर न कोई महला पहला सागर गुणी अथा किन हाथा ला देखिए वड्डा वे परवाव सतगुर मिले ता पार पवा मज पर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथी पुख पौड़ी जिन्नी अंदर पालिया गुर शब्द सुहावे जो इच्छन सो पाएंदे हर नाम ते आवे जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले सो हर गुण गावे तरम राय तिन का मित है जम मग ना पावे हर नाम ते आवे दिन सरात हर नाम समावे श्लोक महला पहला सुनिए एक वखाणी है सुरग मृत पयाल हुक्म न जाई मेट

मने दुख जाए, आपे दाता सुखैदा आपे दे सजाए, नानक एवे जानिए सब किछ तिसैर जाए। पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन, बिन नामे तृप्त नाही, दूजे परम पुलाया हो मैं दुख पाही। बिन कर्मा किछु ना पाये जे बहुत लो चाही, आवे जाए जम्मे मरे गुर सब छुटाही, आप करे किस आखिए दूजा को नाही। श्लोक मैला तीजा, इस जग में संती तन खटिया, जिना सतगुर मिलिया प्रभ आए, सतगुर सच दृढ़ाया इस तन की कीमत कही न जाए, इत तन पाये पुख लथी सुख वस्या मन आए, जिना को तुर लिखिया तिनी पाया आए, मन मुख जगत निरतन है माया नो बिलाए, अंदिन फिरदा सदा रहे पुख न कदे जाए, सांत ना कदे आवई न सुख वसे मन आए, सदा चिंत चित वदार है सहसा कदे न जाए, नानक विण सतगुर मत पवी, सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए, सदा सदा सुख में रहे सच्चे माए समाए। मैला तीजा, जिन उपाय मेदनी सोई सार करे, एको सिमरो पाए रहो तिस बिन अवरना कोए, खाना शब्द चंगियाया जित खादे सदा तृप्त होए, पैनन सिफत सनाए है सदा सदा ओ उजला मैला कदे न होए, सहजे सच तन खटिया थोड़ा कदे न होए, देही नो शब्द सिगार है जित सदा सदा सुख होए, नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप विखा ले सोए। पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापे, हर हर नाम ते आई है हो मैं अज्ञान गवापे, अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापे, जिन चाखिया से निरपो पे से हर रस त्रापे, हर कृपा तार पियाया फिर काल न व्यापे। श्लोक मैला तीजा, लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी, गुण न विहाजे कोए, गुण का गाहक नानका विरला कोई होए, गुर प्रसादी गुण पायन जिसनो नदर करे। महला तीजा, गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार, नानक हुकम मन्ने सुख पाये गुर सब जी विचार। पौड़ी अंदर राजा तक

सब कोए पौड़ी सबे थोक विसार इको मित कर मन तन होए निहाल पापा दह हर आवन जाना चुके जन्म ना जाए मर सच नाम आधार सोग ना मोए जर नानक नाम निदान मन में संजतार।

पाणे जेवड होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूरब लिखिया तिन सच कमाया नानक ते शरणागति जिन जगत उपाया श्लोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं तै की नाही बिंद नानक मोया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पतरी वाचनी सुखी हूँ सुखसार सो ब्राह्मण पला आखी है जे बूझे ब्रह्म विचार हर साल आहे।

अंदर सुख ना होवई मन मुख जन्म खुआर। नानक नाम रते से उबरे गुर कै हेत अपार पौड़ी। आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा, जो हुक्म न बूझे खसम का सोई नर कच्चा। जित पावे तित लाएदा गुरमुख हर सच्चा, सबना का साहिब एक है गुर सबदी रचा। गुरमुख सदा सलाही है सब तिस दे जचा, जो नानक आप नचाएदा तिभी को नचा सुध।

काजल हार तमोल रस बिन पसे हवरस छार पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच सच सब धारिया गुरमुख की तो था।

तू नायक सगल पौन, तेरी कुदरत कोई न जाने, मेरे ठाकुर सगल रौन। तुझे अपड़ कोई न सके, तू अब नासी जग उधरण।

तू होर तू पाए न लभई अब नासे सृष्ट करण दखणे महला पंजवा। जे तू वतै अंगणे हब धरत सुहावी होए हिकस कंत बाहरी मैंडी बात न पुछे कोई।

के सतवंता, जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता। सब ब्रह्म पसार पसारयो आपे खेलंता, यो आवागमन रचायो कर चोज देखंता। तिस बौड़ गर्भ ना पावई जिस देव गुरमंता, जो आप चलावे त्यों चल दे किच वस ना जनता। दखने महला पंजवा, कुरिये कुरिये वैद्या तलगाड़ा महरेर, वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर। महला पंजवा, सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे, नानक आतसड़ी मंज नैनू बिया ढल पबन ज्यो ज्यो।

जिस मेलै सतगुर आप तिसके सब कुल तरा। सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा। दखने महला पंजवा गैड डड़ा त्रिन छाया।

शिव सकत वरताइया, शिव अगै शक्ति हारिया, एव हर पाइया, एक विचों ही तुद रखिया, जो सतसंग मिलाइया। जल विचों बिंब उठा लियो, जल माए समाइया, दखने

अब मजाए खाली कोई न जानिए तै सगी भाग मथाए जिन्नी मेरा सज्जन रावया पौड़ी हों डाडी दर गुण गावदा।

जित भुख ले जावे प्रभ जीओ देवो दर्शन आपना। जित ढाडी तृप्तावे अरदास सुनी दातार, प्रभ ढाडी को महल बुलावे। प्रभ देख दया दुख भुख गई ढाडी।

मन तन अत गुलाल नानक बिन नावै आलू दिया जित्ती होर ख्याल पवड़ी हर जीओ जा तू मेरा मित्र है ता क्या मैं काड़ा जिन्नी ठगी जग ठगया से तुद मार निवाड़ा गुरु भोजन पार लंघाया जित्ता पावाड़ा गुरमती सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रियां वस कर दित्ती ओ सतवंता साड़ा जित लाइयन तित्तै लगदियां नै खिंजो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुर अंदर वाड़ा।

पालिया तुझ जे वड़ना साईया मैं दसो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाईया मन अर्प्यो हो मैं तजो इत पंथ जुलाईया नित सेवो साहिब अपना सत

मस्त सब लोग सिदासी, काजी शेख मसाय का सब उठ जासी। पीर पैगंबर औलिए को थिर न रहासी, रोजा बाग निवाज कते विभिन्न बुझे सब जासी। लख चौरासी मेजनी सब आवे जासी, मेचल सच खुदाए।

दया धर्म तप नेचलो जिस कर्म लिखादा नेचल मस्तक लेख लिखया सो टल ना टलादा नेचल संगत साध जन बचन नेचल गुर सादा जिन को पूरब लिखया तिन सदा सदा आरादा श्लोक रखने महला पंजवा जो डुबंदो आप सो तराए किन खे तारे निरो भी तार नानक फिर स्यो रत्या महला पंजवा जिथ कोई कथन नाओ सुनंदो मापिरे मुँह जुलाओ तथ नानक फिरी पसंदो हरे उठियो महला पंजवा मेरी मेरी।

सुखदायक ज्ञान रास नाम धन सौ प्यों इस सौदे लायक सांझी गुरु नाल बहालिया।

कीमत कहन न जाइए सच सा अडोलै सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुद नो तोलै बन्नन गड़न समरथ है ओपत सब परलै करण कारण समरथ है घट घट सब बोलै रुजक समाहे सब सह।

रहा हूँ। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खरचंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। जी बधो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कत पाई, आपस को मुनवर कर थापो, काको कहो कसाई। मन के अंधे आप न बूझो, काहे बुझावो भाई, माया कारण विद्या बेचो, जन्म अभिर था जाई। नारद बचन व्यास कहत है, सुख को पूछो जाई, कह कबीर राम है रम छूटो, ना है तबूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है, जो लो मनो न तजे विकार, जे घर बन संसार किया ते पूरे संसार। सार सुख पाई है रामा, रंग रवो आत्मा राम रहो, जटा भसम लेपन किया कहा गुफा में बास। मन जीते जग जीतया, जाते बिछया ते होए उदास। अंजन दे सब कोई सुख चान माहे बिडान, ज्ञान अंजन जे पाया ते लोयन परवान। कह कबीर अब जानया, गुरु जान दिया समझाए, अंतर्गत हर

राम उदक दे जन पिया ते बहुर न पई प्यास। गोर प्रसाद जे बूझिया आसा ते भया निराश। सब सच नजरी आया जो आत्म भया उदास। राम नाम रस

मुकद भयो चौहू जुग जान्यो, जस कीरत माथे छत्र धर्यो। राजा राम जपत को न करयो, गुरु उपदेश साधकी संगत। भगत भगत ताको नाम परयो रहाओ। शंख चक्र माला तिलक विराजत, देख प्रताप जम डरयो। निर्भव भय राम बल गर्जत, जन्म मरण संताप हरयो। अम्बरीक को दियो अभय पद, राज भवीकन अधिक करयो। नौ निधि ठाकुर दई सुदामै, धुरु अटल अज हूं न टरयो। भगत हेत मारयो हर नाखस, नरसिंह रूप होय देत हरयो। नामा कै भगत बस के सब।

पेट भरो पसवा जो सोयो, मनुख जन्म है हारे रहाओ। साध संगत कब हो नहीं कीनी, रचियो धंधे झूठ। स्वान सूकर बायस जिमे, भटकत चाल्यो।

लालच लागे जन्म गवाया माया परम भुलाएगा। धन जो बन का गर्व न की गय कागज जो गल जाएगा। जो जम आए केस गय पटके ता दिन कृष्ण बस।

चार पदार्थ अष्टमा सिद्ध नव निध कर तलता कै हर हर हर न जपस रसना अवर सब छाड़ बचन रचना रहाओ नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अक्षर माहे व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरना है। सहज समाज उपाध रहत हो बड़े भाग लिव लागी कह रविदास उदास दास मत जन्म।

कोई न बेली गुरमुख अमृत पीवा। रचना राच रहे निरंकारी सब मन कर्म सुकर्मा। नानक पंथ निहाले साधन तू सुन आत्म रामा। बाबिया प्रयो बोले को कल बानिया साधन सब रस चोले अंक समानिया। हर अंक समानी जा प्रभानी सासो हागन नारे। नव घर थाप मैल घर ऊंचो निज घर वास मुरारे। सब तेरी तू मेरा प्रीतम निस्बास रंग रावे। नाने प्रियो प्रियो चवे बबीहा को कल सबद सुहावे। तू सुन हर रस भिन्ने प्रीतम आपने मन तन रवत रवन्ने। घड़ी ना बिसरे क्यों घड़ी बिसारी हो बलहारी हो जीवा गुण गाए। ना कोई मेरा हो किसके रा हर बिन रहन न जाए। ओट गई हर चरण निवासे।

सावन सर्फ मना घन वर्ष ऋतु आए, मैं मन तन सौ पावे फिर पर देश सिधाए, फिर घरनी आवे मरिए हावे, दामन चमक डा।

नानक सा सोहा गण चंके फिर कै अंक समावे बादों परम भूली पर जो बन पछताने जल थल नीर भरे बरस रुते रंग मानी बरसे निज काली क्यों सुख बाली दादर मोर लवंते प्रिय प्रिय चवे बबीहा बोले भुयंगम फिर डसंते मच्छर डंग सायर पर सुबर बिन हर क्यों सुख पाई है नानक पूछ चलो गुरु अपने जय प्रभु तै ही जाइए असुन आओ फिरा साधन झूर मुई सामिली है प्रभु मेले दूजे पाय सुई झूठ विभूति तापिर मोती को कह कहां से फुले आगे काम पिछे रुत जाडा देश चलत मन डोले दै दिस साख हरी हरियावल सहज पसे सो मीठा नानक सुन मिलो प्यारे सतगुर पय बसीठा कतन किरत पया जो प्रभु पाया दीपक सहज बले तत जलाया दीपक रस्ते लो धन फिर मेलो धन ओ मा है सरसी अवगुण मारी मर न सीजै गुण मारी ता मरसी नाम भगत दे निज घर बैठे अजो तिनाड़ी आसा नानक मिलो कबड़ दर खोलो एक घड़ी खतमासा मंगल माओ भला हर गुण अंक समावे गुणवंती गुण रवे मैं फिर नेचल पावे नेचल चतुर सुजान विदाता चंचल जगत सबाया ज्ञान ज्ञान गुण अंक समाने तब पाने ता पाया गीत नाद कवित कवे सुन राम नाम दुख भागे नानक साधन नहा प्यारी अब भक्ति तिर आगे भोख तुखार पड़े वर्ण तृण रसोख आवत की नाही मंतन वसे मुखे मंतन रव रहा जग जीवन गुर सब धी रंग मानी अंडर धीरज सेतज उद्भुज गट गट जोत समानी दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो नानक रंग रवै रस रसिया हर्षो प्रीत स्नेहो माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जानिया साजन सहज मिले गुण गय अंक समानिया प्रीतम गुण अंके सुन प्रभु बंके सुरभावा सरनावा गंग जमुन तै बेनी संगम सात समुंद समावा पुन दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता नानक माघ महारस हर जप असर तीरथ नाता फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया अनदिन रस भया आप गवाया मन मोह चुकाया जा तुझ पाया कर कृपा घर आओ बहुते वेच करे फिर बाजो मैली दान खाओ हार डोर रस पाट पटंबर तिर लोड़ी सिंगारी नानक मेर लही गुरु अपने घर वर पाया नारी बेदस मारुति छिट्टी वार भले घड़ी मुरत पर

राखो खेती हर बुरहे की, जागर शोर न लागे। जम मगन जाओ ना दुख पाओ, जम का डर बहु भागे। राम सास दीपक गुरमत द्वारा, मन साचा मुख त्यावे। नानक मूर्ख

जमनाती कब घूंघट कैसा मटकी फोड़ निरारी, नानक आप पछाने गुरमुख तत् बिचारी। सुखारी महला पहला। मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले, गुर अलख लखाया अवर न दूजा पाले। गुर अलख लखाया जा तिन पाया जा प्रभ कृपा तारी, जग जीवन दाता पुरुष विदाता सहज मिले बनवारी। नगर करे तू तारे तरिये सच देवो दीन दयाला, प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्व जिया प्रतपाला। भरपूर तार रहे

जब लग दर्श न होए क्यों अमृत पीवी है राम। क्यों अमृत पीवी है हर दिन जीवी है तिस दिन रह न जाए। हम दिन प्रो प्रो करे दिन राती फिर दिन प्यास न जाए। अपनी कृपा करो हर प्यारे हर हर नाम सब सारिया। गुर के शब्द मिलिया मैं प्रीतम हर सतगुर वित्तो वारिया। जब देखा फिर प्यारा हर गुण रस रवा राम। मेरे अंतर हुए विगास प्रो प्रो सत नित चवा राम। प्रो चवा प्यारे शब्द निस्तारे बिन देखे तृप्त न आवे। शब्द सिगार होवे नित कामन हर हर नाम प्यावे। दया दान मंगत जन दी जय मैं प्रीतम देहो।

ले वो हर जियो हम लागे सतगुर पाए गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोया राम काया गढ़ सोया मेरे प्रभ मोया क्यों साथ गिरास विसारी है अदृश्य अगोचर पकड़िया गुर सबदी हो सतगुर के बलिहारी है सतगुर आगे शीश टेक दियो जे सतगुर साचे भावे आपे दया करो प्रभ दाते नानक अंक समावे तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा जो तुम त्याए जगदीश ते जन पाओ बिखम तरा बिखम पाओ तिन तरया सुहेला जिन हर हर नाम ते आया गुरवास सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मिलाया ज्योति ज्योत मिल ज्योत खवाणी हर कृपा कर तरणी तरा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा तू अलख अपेयो अगम गुर सतगुर बचन लया तन तन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे जा बह गुरमुख हर नाम बोले जा खड़े गुरमुख हर हर कया तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेव्या गुरमत हरे तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे तिनके पाप दोख सब बिन से जिन मन चित इक अरा दिया तिनका जन्म सफल्यो सब किया करते जिन गुरु बचनी सच पाखिया ते तन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पाओ बिखम तरे सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेविया गुरमत हरे तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला हमरे हाथ किचना है जा तू मेले ता हों आए मिला जिनको तू हर मेले स्वामी सब तिन का लेखा छुटक गया तिनकी गणत ना करो को भाई जो गुरबचनी हर मेल लया नानक दयाल हुआ तिन ऊपर जिन गुर का पाना मनिया पला तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला तुखारी महला चौथा तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ तिन तू त्याया मेरा राम जिन कै तुर लेख माथ जिन को तुर हर लिख्या स्वामी तिन हर हर नाम आरा दिया तिन के पाप इक निमक सब लाथे जिन गुरु वचनी हर जापिया तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया तिन देखे हो पया सनाथ तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ तू जल थल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी जिन जपिया हर मन चीत हर जप जप मुक्त कणी जिन जपिया हर ते मुक्त प्राणी तिनके उजल मुख हर द्वार ओए हलत पलत जन पे सुहेले हर राख लिए रखन हार हर संत संगत जन सुनो पाई गुरमुख हर सेवा सफल बनी तू जल थल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी तू थान सनम तर हर एको एक रव्या वन त्रिन त्रिभवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया सब चवे हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे सो तन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते भावे सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सब चवया तू थान सनंतर हर एको एक रव्या तेरी भगत पंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले जिस कै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिके हर गुण हृदय टिके तिस कै जिस अंतर पाओ पावनी होई बिन पै किने ना प्रेम पाया बिन पै पार ना उतरिया कोई पाओ पाओ प्रीत नानक तिसे लागे जिस तू अपनी कृपा।

ले कपट तपट बुद्ध तृष्णा जीवों पेख दरसारी कौन सो जतन उपाव कनेहा सेवा कौन बिचारी मान अभिमान मोह तज नानक संते संग उधारी किरारा महला पंजवा हर हर हर गुण गावो करो कृपा गोपाल गोविंदे अपना नाम जपावो रहाओ कार्ड लिए प्रभ आन बिखेते साध संग मन लावो प्रम्पो मोह कट्यो गुरु वचनी अपना दर्श दिखावो सबकी रेण होए मन मेरा अहं बुद्ध तजावो अपनी भगत देह दयाला वडपागी नानक हर पावो किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारत जात तज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात रहाओ।

कर गए लिहो दास नानक कहो प्रभ जियो होए साथ केदारा महला पंजवा हर बिन कोए न चालस साथ दीना नाथ करना पत स्वामी अनाथा के नाथ राव सुत संपत बिख्या रस ओगवत नै निभत जम कै पात नाम निधान गाओ गुण गोविंद उदर सागर के खात करण समरथ अटत अगोचर हर सिमरत दुख लात नानक दीन तूर जन बाचत मिले लिखत तुरमात किदारा मैला पंजवा कर पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद बिसरत नाहे मनते हरी अब एह प्रीत मां परबल सही आन बिखै जरी रहाओ बूंद कहा त्याग चात्रिक मीन रहत न करी गुण गोपाल उचार रसना तेव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी किदारा महला पंजवा प्रीतम बस रिद में खोर परम पीत निवार ठाकुर गह लियो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारो तोर संत संग हर चरण बोहत उदरते लै मोर गर्भ कुंट में जिने तारियो नहीं दिखे बन में होर हर सकत शरण समरथ ना

त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान, मिथन मोह दुरंत आशा झूठ कर परमान, सत पुरख अकाल मूर्त हृदय तारो त्यान, नाम निधान लाभ नानक बस ए परवान, केदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार, कल कलेश ना कछ व्यापे संत संग व्यवहार, रहाओ कर अनग्रह आप राख्यो न उपजतो बेकार, जिस परापत होए सिमरे तिस दहत नह संसार, सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार, नानक दास शरणागति तेरे संतना की चार, केदारा महला पंजवा हर के नाम बिन त्रिग स्रोत, जीवन रूप विसार जीवे ते कत जीवन होत, रहाओ खात पीत अनेक बिंजन जैसे पार बाहक खोत, आठ पैर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत, तज गोपाल जे आन लागे ते बहु प्रकारी रोत, कर जोर नानक दान मांगे हर रखो कंठ परोत, किदारा महला पंजवा संत तूर ले मुखमली गुण।

अचुत सदा पूरन नह दोख ब्या पैंकली राव। गुरु बचन कार्य सर्व पूरन ईत ऊत ना हली। प्रभ एक अनक सर्वत पूरन दिखे अग्न ना जली। जय पूजा लीनो दास अपनो ज्योति ज्योत रली। प्रभ चरण शरण अनाथ आयो नानक हर संग चली। केदारा महला पंजवा। हर के नाम की मन रुचे कोट शांत आनंद पूरन जलत छाती बुझे रहाओ। संत मार्ग चलत प्राणी पतत उदरे मुचे। रेन जन की लगी मस्तक अनेक तीरथ सुचे। चरण कमल ध्यान पीतर कट कटे स्वामी सुजय। शरण देव अपार नानक बहुर जम नहीं लू।

राम ना जपो कवन प्रम फूले, तुम ते काल ना दूरे, अनेक जतन कर एहो तन राखो, रह अवस्था पूरे। आपन किया कछु न होवे, क्या तो करे परानी, जा तिस पावे सतगुरु पेटे, एको नाम बखानी। बलुआ के करुआ में बसे।

राव लाल से चोट बिकार महामद के बिद औद बिहान कह कबीर अंत की देर आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मटिया संग न कछ ले जाए। रहाओ देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लो संग माए मरहट लग सब लोग कुटुंब मिल हंस इकेला जाए। वह सुत वह बित वह पुर पाटन बौर न देखे आए कहत कबीर राम की न सिमरो जन्म अकारत जाए। राकेदारा बाणी रविदास जीओ की इको अंकार सतगुरु प्रसाद। खत कर्म कुल संयुक्त है हर भगत हृदय नाहे चरनार बिंद ना कथा पावे सुपत तुल समान। रे चित चेत चेत अचेत काहे ना बालनी कह देख किस जात ते कह पदे अमरियो राम भगत विशेख। रहाओ स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत लोग बपुरा क्या सारा है तीन लोक प्रवेश। अजामल पिंगला लुबत कुंचर गए हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरे रविदास। राग पैरों मैला पहला कर पहला चौक दे इको।

विडाणी करे कराए जाने आप, नानक देखे थाप उथाप इको अंकार। सतगुर प्रसाद राग पैरों महला पहला कर दूजा, गुर के शब्द तरे मुन केते इंद्रादिक ब्रह्माद तरे, सनक सनंदन तपसी जन केते गुर प्रसादी पार परे। पल जल बिन शब्द क्यों तरिए, नाम बिना जग रोग व्यापिया, दुबदा डुब डुब मरिए रहाओ। गुर देवा गुर अलख वे।

मन मनते मानिया मन सामने समाई मन जोगी मन बिनस बियोगी मन समझे गुण गाई गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब पर कुरलीना साथ शब्द निस्तारा पैरों महला पहला नैनी दृष्ट नहीं तन ही ना जर जीत्या सिर कालो रूप रंग रहस नहीं साचा क्यों छोड़े जम जालो प्राणी हर जप जन्म गयो साच शब्द बिन कब होना छूटत बिरसा जन्म भयो रहाओ तन में काम क्रोध हो ममता कथन पीर अत भारी गुरमुख राम जपो रस रसना किन विद तर तू तारी बैरे करन अकल भई होची शब्द सहज नहीं बूझिया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंग न सूझिया रह उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी प्रणवत नानक गुरमुख छूट

नेत्री तुंद करण तय बहरे मनमुख नाम न जानी अंगुले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुरु की सेवा चाले मूल गवाए रहाओ जेहवा रंग नहीं हर राती जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापक पशु पे कदे होए नानी के अमृत का रस विरली पाया सतगुर मेल मिलाए जब लग शब्द पेड़ नहीं आया तब लग काल संताए अन को दर कर कबू न जानस एक को दर्श प्यारा गुर प्रसाद परम पद पाया नानक कह विचारा पैरों महला पहला सगली रैन सोवत गलफाही दिनस जंजाल गवाया किन पल कड़ी नहीं प्रभ जानिया जिन एहो जगत उपाया मन रे क्यों छूटस दुख पारी क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ पूंदो कवल मन मुख मत होची।

नहीं पाए। शास्त्र वेद त्रै गुण है माया, अंधलो तंद कमाई, खोयो मूल लाभ कह पावस, दुर्मत ज्ञान विहूने, शब्द विचार राम रस चाख्या। नानक साच पति ने पैरू महला पहला, गुर के संग रह दिन राती, राम रसन रंग राता, अवर न जानस शब्द पछाणस, अंतर जान पछाता। सोजन ऐसा मैं मन पावे, आप मार अपरंपर राता, गुर की कार कमावे रहाओ, अंतर बाहर पुरख निरंजन, आद पुरख आदेशो, कट कट अंतर सर्व निरंतर, रव रहा सच वेशो, साच रते सच अमृत जेवा, मिथ्या मैल नाराई, निर्मल नाम अमृत रस चाख्या, शब्द रते पत पाई, गुणी गुणी मिल लाहा पावस, गुरमुख नाम वडाई, सगले दुख मिटे गुर सेवा, नानक नाम सखाई, पैरों महला पहला, हृदय नाम सर्व तन तारण, गुर प्रसादी पाई है, अमर पदार्थ ते कृतार्थ, सहज ज्ञान लिवलाई है, मन रे राम भगत चितलाई है, गुरमुख राम नाम जप हृदय, सहज खेती कर जाइए रहाओ, परम पेद पाओ कभू न छूटत, आवत जात न जानी, बिन हर नाम को मुक्त न पावस, डूब मुए बिन पानी, तंदा करत सगली पत खोवस, परम न मिटत गवारा, बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी।

ए तंद पसारा अकुल निरंजन स्यों मन मानिया मन ही ते मन मुआ अंतर बाहर एक को जानिया नानक अवर न दुआ पैरों मैला पहला जगन होम पुन तप पूजा दे दुखी नित दुख सह राम नाम बिन मुक्त न पावत मुक्त नाम गुरमुख लह राम नाम बिन बिसे जग जन्मा बिक खावे बिक बोली बोले बिन नावे ने फल मर प्रवना राव पुस्तक पाठ ब्या करन वखाने संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे दंड कमंडल सिखा सूत तोती तीरथ गवन अप प्रमन करे राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सोपार परे जटा मुकुट तन पखम लगाई बस्तर छोड़ तन नगन भया राम नाम बिन तृप्त ना आवे किरत के बांधे पेख पाया जेते जी जंत जल फल महियल जत्र कत्र तू सर्व जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक चोल पिया।

ब्रह्म बिन देखो ब्राह्मण होए, जात का गर्भ न कर मूर्ख गावारा। इस गर्भ से चले बहुत विकार आ रहा, चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई, माटी एक सगल संसारा, बोविद पांडे करे कुमारा, पंच तत् मिल देही काकारा, कट वद को करे बिचारा, कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई।

खाचा फल पाई। रे जन कैसे करो पुकारा, हुक्मे होआ हुक्मे वर्तारा। राहो एहो अकार तेरा है तारा, खिन में बिन से करत न लागे बारा। कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुर कृपा ते परम पद पाया। कहत नानक मार जी वाले सोए, ऐसा बूझो परम ना फूलो कोए। पैरों महला तीजा।

कसाई मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई पंत नानक करे क्या कोए जिसनो आप मिला वै सोए पैरों महला तीजा सो मुन जे मन की दुबदा मारे दुबदा मार ब्रह्म विचारे इस मन को कोई खोजो भाई मन खोजत नाम नौनिद।

चार हुक्म बुझ समान। कर्म होवे गुर कृपा करे, यह मन जागे इस मन की दुविधा मरे। मन का स्वभाव सदा बैरागी, सब में वसे अतीत अनुरागी। कहत नानक जो जाने पेओ, आद पुरख निरंजन देओ। पैरों महला तीजा, राम नाम जगत निस्तारा, पावजल पार उतारा।

सिमरत शास्त्र पणे मुन केते बिन शब्द सुरत न पाई त्रै गुण सबे रोग व्यापे ममता सुरत गवाई एक आपे काड लय प्रभ आपे गुरु सेवा प्रभ लाए हर का नाम निधानो पाया सुख वस्या मन आए।

पूरे पाग पाई है। जिनी राम नाम चितलाया पैरों महला तीजा। शब्द विचारे सोजन साचा जिनके हृदय साचा सोई। साची भगत करे दिन राती तां तन दुख न होई। भगत भगत कहे सब कोई दिन सतगुर सेवे भगत न पाये। पूरे पाग मिले प्रभ सोई राव मन मुख मूल गवावे।

कृष्णा अगन पचाए सदा आनंद राम रस राते। हृदय नाम दुबदा मन पागी हर हर अमृत पी तृप्ताते। रहाओ आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिम साजी।

उनका दाता। अवगुण शब्द जलाए जिन मन वस्या से जन सोहे, हृदय नाम वसाए कर दर मेल सतगुरु दिखाया। रंग सो रलिया माने जो कुछ कहे सो पला कर।

गुर प्रसाद परम पद पाया, सब इच पुजावन हार राव, सब में एको रब रहा, गुर बिन बूझ न पाए, गुरमुख प्रगट होआ मेरा, हर प्रभ अंग दिन हर गुण गाए, सुखदाता हर एक है, होरथे सुख न पाए, सतगुरु जिनी न सेवया, दाता से अंत गए पछताए, सतगुरु सेव सदा सुख पाया, फिर दुख न लागे ताए, नानक हर भगत प्राप्त होई, ज्योति जोत समाए, पैरों महला तीजा, बाज गुरु जगत बौराना, फूला चोटा खाए, मर मर जमे सदा दुख पाए, डर की खबर न पाए, मेरे मन सदा रहो सतगुर की शरणा, हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर सबदे पव जल करना रहाओ, देख करे बहुत चित डोले, अंतर काम क्रोध अहंकार, अंतर तिसा भूख अत बहुती, पौकत फिरे दरबार, गुर के शब्द मरे फिर जीवे, तिनको मुक्त द्वार, अंतर शांत सदा सुख होवे, हर राख्या उदार, जो तिस भावे तिवे चलावे, करना किसु न जाई, नानक गुरमुख शब्द संभाले, राम नाम वड्याई, पैरों महला तीजा, हो मैं माया मोह खुआया, दुख खट्टे दुख खाए, अंतर लोभ हलक दुख पारी, बिन विवेक परमाए, मन मुख त्रिग जीवन सहसार, राम नाम सुपने नहीं चेतिया, हर सो कदे न लागे प्यार रहाओ, पशुआ कर्म करे नहीं बूझे, कूड़ कमावे कूड़ो होए, सतगुरु मिले ता उल्टी होवे, खोज लह जन कोए, हर हर नाम हृदय

के मार्ग पाए। आपके गुरुमुख देव दे आए, नानक नाम समाए पैरों महला पीजा। मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला, दूजे पाए फाके जम जाला। सतगुरु करे मेरी प्रतपाला, हर सुखदाता मेरे नाला। गुरु उपदेश प्रहलाद हर उचरे, सासना के बालक गम न करे। रहाओ माता उपदेश है प्रहलाद प्यारे, पुत्र राम नाम छोड़ो।

प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाकरे बिगाड़े, दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा होए रघुराया, हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार, हर तेरा कहा तुझले उबार, किन मैं पयान रूप लिख्या थम उपार, हरनाकस नखी विदारिया प्रहलाद लिया उबार, संत जना के हर जियो कार सवारे, प्रहलाद जन के इतनी कुले उदारे, गुर के शब्द हो मैं बिख मारे, नानक राम नाम संत निस्तारे, पैरों महला तीजा आपे दैंत लाए, दिते संत जना को आपे राखा सोई, जो तेरी सदा सरनाई तिन मन दुख न होई, जुग जुग भगता की रखदा आया, दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किछु न जाने, शब्द मेल मिलाया रहाओ, अन दिन भगत करे दिन राती दुबदा सब देखोई, सदा निर्मल है जो सच राते सच वस्या मन सोई, मूरख दुबदा पने मूल

कर कृपा मेलो सब संगत टूट गई माया जमजाली रहाओ। गुरुमुख सेवा काल जिन काली किस करिए सब सची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली विच काया नगर लद्दा हर पाली। हम बारिक हर पिता प्रतपाली जन नानक तारो नगर निहाली। पैरों महला चौथा सब कट तेरे तू सबना माहे तुझ के बाहर कोई नाहे। हर सुखदाता मेरे मन जाप।

जिसको तुम हर राखिया भावे तिसके नेड़े कोई न जावे। तू जल थल मैयल सब ते भरपूर जन नानक हर जप हाजरा हजू।

हर बाहर जो कुछ करे सोई पल होसी, हर क्या वो अंग दिन नाम मुरार, हर जो कुछ करे सो आते आते वो पूछ ना किसे करे विचार, नानक सो प्रभु सदा त्याय है जिन मेलिया सतगुरु कृपा तार, पैरों महला चौथा ए साधु हर मेलो स्वामी, जिन जपिया गत होए हमारी, तिनका दर्श देख मन बिगसे, किन किन किन कहो हो बलिहारी, हर हृदय जप नाम मुरारी, कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास की जय पनिहारी रहो, तिन मत उत्तम तिन पत उत्तम, जिन हृदय वस्या बनवारी, तिन की सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत होए हमारी, जिन ऐसा सतगुरु साधना पाया, ते हर दरगे का दे मारी, ते नर निंदक सोग न पावे, तिन नक काटे सुरजन हारी, हर आप बुलावे आप बोले।

परम पूले नर करक कचरायण, जन्म मरण के रहत नारायण। रहाओ कर पंजीर खवायो चोर, ओ जन्म ना मरे रे साकत ठोर। सगल

सुकाया खट शास्त्र मूर्ख सुनाया जैसे दहदिस पवन चलाया दिन कण खलहान जैसे दान पाया क्यों साकत ते को

तन मैं पारणा तन तन मेरे नारायणा, नानक बोले अमृत बाणी एक बिना दूजा नहीं जानी। पैरों महला पंजवा आगे दे पाछे नारायण, मद भाग हर प्रेम रसायन। प्रभु हमारे शास्त्र सौन, सुख सहज आनंद गृह पौन। रहाओ रसना नाम करण सुन जीवे, प्रभु सिमर सिमर अमृत पीवे। जन्म जन्म के दुख निवारे, अनहद शब्द बजे दरबारे। कर कृपा प्रभु लिए मिलाए, नानक प्रभु शरणागत आए। पैरों महला पंजवा कोट मनोरथ आ

आओ पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम पै ने काम राजमाल साधन दरबार सिमरत नाम पूरन आचार नानक दास एहो किया विचार बिन हर नाम मिथ्या सब चार पैरो महला पंजवा लेप न लागो तिलका मूल दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल हर जन राखे पार ब्रह्म आप पापी मुआ गुर प्रताप रहाओ अपना

आपी पछया आप समायन रहाओ। दास राम जियो लागी प्रीत, निंदक की होई विपरीत। पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया। आए न जाई रहा समाई, नानक दास हर की शरणाई। राग पैरों महला पंजवा, चौक दे कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद श्री कर मोहन सगल उपावन, निरंकार सुखदाता।

कहाओ ठाकुर छोड़ दासी को सिमरै मनमुख अंध अज्ञाना हर की पगत करे तिन निंदे निगुरे पशु समाना जियो पिंड तन तन सब प्रभ का साचत कहते मेरा अहं बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संजम तट तीरथ नहीं पाया मिटिया आप पे शरणाई गुरमुख नानक जगत कराया पैरों महला पंजवा बन में पेख्यो तृण में पेख्यो गृह पेख्यो उदासाए दंड तार जट तारे पेख्यो वर्त नेम तीर खाए संत संग पेख्यो मन माए पूब प्याल सर्व में पूरन रस मंगल गुण गाए रहाओ जोग पेख सन्यास पेख्यो जत जंगम कापड़ाए।

जन नानक अपर न साचै कोय, पैरो मैला पंजवा। तौ करिए जे होवे बाहर, तौ करिए जे विसरै नर हर, तौ करिए जे दूजा पाए, क्या करिए जा रहा समाए। माया मोह करे कड़पतिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ।

तौ करिए जे किछ होए सिंघाणे, तौ करिए जे फूल रंजाणे, गुर कहया जो होए सब प्रभु ते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभु तू है ठाकुर सबको तेरा, जो पावे त्यों करे निवेरा, दुतिया नासत इक रहया समाए, राखो पैज नानक शरणाए, पहरों मेला पंजवा, बिन बाजे कह

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सब सद ही चूरे, बिन गुरु दीक्षा कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व विकार, कहो नानक दर का विचार, पैरों मेला पंजवा, हूँ मैं रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस लीना, दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाग रोग खप

कवर बिनसानो एक रोग का सगल संसारा त्रिविध रोग में बदे बिकारा रोगे मरता रोगे जन्मे रोगे फिर जोनी पर मैं रोग बंद रहन गति न पावे बिन सतगुरु रोग कटहे न जावे पार ब्रह्म जिसकी दया वहाँ पकड़ रोगों कद लया टूटे बंधन साध संग पाया कहो नानक गुरु रोग मिटाया पैरों महला पंजवा चीत आवे ता महा आनंद चीत आवे ता सब दुख पांजे चीत आवे ता श्रद्धा पूरी चीत आवे ता कभे न चूरी।

मन मानिया नानक भगवंता पैरों महला पंजवा। बाप हमारा सद चरण जीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निज करवासी। हम सुख पाया त

नानक उदरे नाम पुने चार, हवर कर्म लोके पतियार, पैरो महला पंजवा, नमस्कार ता को लख बार, रुमन दी जय ता को वार, सिमरन ता कै मिटे संताप, होय आनंद न व्यापे ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम, जास जपत पूरन सब काम रहाओ, जाकी दृष्टि दुख डेरा तह, अमृत नाम सी तल मन गहे, अनित पगत जा।

जा को सतगुरु जी ओ नाम, जा को पेट्यो ठाकुर अपना, मन तन शीतल हर हर जपना। कहो नानक जो जन प्रभु पाए, ताकी रेन बिरला को पाए, पैरो महला पंजवा। चितवत पाप ना आलक आवे, बेसुआ भजत किसने शरमावे। सारो दिन मजूरी करे, हर सिमरन की वेला बज्जर सिर पर। माया लग पूलो संसार, आप पुलाया पुला।

पूरन होत न कारज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तरफ मुआ ज्यो जल बिन मीना, जिसके राखे हुए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुरु पूरा पाया, पैरो मैला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाए, राम नाम जी को आधार, गुरु प्रसाद जपो नित पाए, तार ले सागर संसार राव, जिनको लिखिया हर एहो निधान।

जिस लड़ लाए ले सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भक्तन का आप, अपनी महिमा आपे जाप, जी जंत सब तेरे हाथ, नानक के प्रभु सभी साथ, पैरों महला पंजवा, नाम हमारे अंतर जामी, नाम हमारे आवे कामी, रोम रोम रविया हर नाम, सतगुरु पूरे तीनों दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमूला अपर

स्वाओ नाम न विसरे संत प्रसाद नाम लेत अनहद पूरे नाद प्रभ कृपा ते नाम नौ निज पाई गुर कृपा ते नाम स्यों बने आई तनवंते से ही प्रदान।

रंग रसमाने, कट कट अंतर तुम्हें समाने, तुमरी कृपा ते जपिए नाओ, साध संग तुमरे गुण गाओ, तुमरी दया ते होए दर्द विनाश, तुमरी माया ते कमल विलास, हों बलिहार जाऊं गुरुदेव, सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव, दया करो ठाकुर प्रभु मेरे, गुण गावे नानक।

नाम तिसर नाही सदा सुख होए कर कृपा जा को मिले सोए रहाओ जा के कर्तव्य लते न जाए जा का परवासा सब कट माए

सिर पाप सा साचा सोए, जिसकी ओट किसे की आशा, दुख सुख हमरा किसी पासा, राख लीनो सब जन का पर्दा, नानक किसकी इज्जत करदा, पैरों महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चिताया, बूझ बैराग करे जे कोए, जन्म मरण फिर सोग न होए, दिखला का सब

मूर मुग्ध होए चतुर सुज्ञान सगल पयान का पौन से जन अपने के हर मन बसे पार ब्रह्म प्रभ सुख निदान तत् ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए पैरों महला पंजवा संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्त सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग होए एक प्रीत संत मंडल कहाँ का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रहे संत मंडल में जम किछु ना कहे संत संग होए निर्मल बाणी संत मंडल में नाम वखाणी संत मंडल का नेचर आसन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग हो मैं दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुण पास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक ओत पोत भगवान पैरों मैला पंजवा रोग कवन जा राखे आप जिस जन होए न दुख संताप जिस ऊपर प्रभु कृपा करे जिस ऊपर ते काल पर हरे सदा सखाई हर हर नाम जिस चीत आवे तो सदा सुख होवे नित ना आवे ता कै जाम रहाओ जब ए नासो तब किने उपाया कवन मूल के क्या प्रगटाया आपे मार आप जीवाले अपने भगत को सदा

कोए हर हर नाम जपै जन सोए रहाओ अहंग बुद्ध का छोड़िया संग काम क्रोध का उतरिया रंग नाम तिराए हर हर, हर

कोई भगत जपे नाम जाप मन पर दास गुते मत लई। कहो नानक ता।

कहो नानक प्रभु कृपा करी, सास गिरास जपो हर हरी, पैरों महला पंजवा, सबसे ऊंचा जाका नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जिस सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख वसे मन आए, सिमर मना

सगल कटा के अंतर जामे, कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरणाए। पैरों महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवे, नाम विहून सुखी क्यों सोवे। हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे, मूल बिना शाखा कत आहे। गुरु गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे, बंधन काट हर संग मिलाए रहो।

नानक सब किस प्रग ते होए, पैरों मैला पंजवा मन तन राता राम रंग चरणे। सर्व मनोरथ पूरन करने आठ पैर गावत भगवान।

सो तनवंता जिस बुद्ध विवेक, सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पछानी, गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रैंत आया, टूटे बंधन पूरन आसा, हर के चरण रिद माय निवासा, कहो नानक जाके पूरन कर्मा, सो जन आया प्रभु की शरणा, आप प्रेत पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने, पैरो महला पंजवा, नाम लैत किछ बिघन ना लागे, नाम सुनत जम दूरों पागे, नाम लैत सब दुख है नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ, हर सिमरत किछ चाख न जो है, हर सिमरत दैत देओ न पो है, हर सिमरत मोह मान न बदे, हर सिमरत गर्भ जोन न रुदे, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माए अकेला, जात अजात जपे जन कोए, जो जापे तिसकी गत होए, हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूरन रंग, नानक को प्रभु कृपा तार, सास सास हर दियो चितार, पैरों महला पंजवा, आपे सासत आपे बेद, आपे कट कट जाने पेद, ज्योत स्वरूप जाकी सब वत, करण कारण पूरन समरथ, प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुख आरादो, दुश्मन दुख ना आवे नेरे, रहाओ आपे वन त्रिन त्रिभुवन सार, जा कै सूत परोया पार, आपे शिव शक्ति संजोगी, आपे निर्वाणी आपे पोगी, जत कत देखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए, सागर तरिये नाम के रंग, गुण गावे नानक साथ संग, मुक्त पुगत जुगत वस जाके, ऊना नाही किस जनता के, कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास से जनतन, पैरो मेला पंजवा, भगता मन आनंद गोबिंद, अस्थित पय बिनसी सब चिंद, पै प्रम बिनस गए खिन माहे, पार ब्रह्म वसिया मन आए, राम राम संत सदा सहाय, कर बाहर नाले परमेश्वर रव रहे।

आदि जुगाद भगत गुण गायन, तिसकी तर प्रभ का मन जोर, एक बिना दूजा नहीं और, नानक कै मन इहो पुरखारथ, प्रभु हमारा सारे स्वारथ। पैरो महला पंजवा, पै कौ पौ पड़या सिमरत हर नाम, सगल ब्याद मिटी त्रयो गुण की, दास के होए पूरन काम रहाओ। हर के लोग सदा गुण गावे, तिनको मिलिया पूरन धाम, जन का दर्श बांचे दिन राती, होए पुनीत धर्म राय जाम। काम क्रोध लोभ मद निंदा, साध संग मिटिया अभिमान, ऐसे संत पेटे वड पागी।

प्रतपाल प्रभ कृपाल कवन गुण गनी अनेक रंग बहुत रंग सर्व को तनी रहाओ अनेक ज्ञान अनेक ध्यान अनेक जाप जाप ताप अनेक गुणत तुनत ललित अनेक ताप।

सगल फल पुने पैरों अष्टपदियां महला पहला कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। आत्म मह राम, राम मह आत्म चीनस गुर बिचारा अमृत बाण।

आई हम मूड मुग्ध किछ बूझे नाही तू आपे दे बुझाई जो तुद पावे सोई करसी अवर न करना जाई जगत उपाय तुद तंदे लाया पूंडी कार कमाई जन्म पदार्थ जुए हारिया सबदे सुरत न पाई मन मुख मरे तिन किछू ना सूजे।

साचे हर प्रभ आप मिलाए गुर की वाणी शब्द पछाती साच रहे लिव लाए तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल गुर के शब्द विचारे नानक तिन कै सद

आया, कहो नानक सत्य तत मिलाया, पैरों महला पंजवा, कोट बिशन कीने अवतार, कोट ब्रह्मंड जाके तर्मसाल, कोट महेश उपाय समाए।

தர்த்தியான कोट तपीसर तप ही करते कोट मुनीसर मौन में रहते अवगत नाथ अगो

अचिंत वस्यो मन सुख विश्रामा, अचिंत हमारे अनहत वाजय, अचिंत हमारे गोविंद गाजय, अचिंत हमारे मन पति आना, नेचल तनी अचिंत पछाना, अचिंतो उपजो सगल विवेका, अचिंत चरी हथ हर हर टेका, अचिंत प्रभु

सोतरवर चंदन होय निबरियो पारस के संग तांबा बिगरियो सो तांबा कंचन होय निबरियो संतन संग कबीरा बिगरियो सो कबीर रामे होय निबरियो माथे तिलक हाथ

आहे। क्यों लीजै गड बंका पाई, दोवर कोट अरतेवर खाई, रहाओ पांच पच्चीस मोह मद मत्सर, आडी परबल माया, जन गरीब को जोर न पहुंचे।

साथ पैरों कबीर जियो अष्टपदी कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम द्रो

तू मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूरज जा कह प्रगास, कोट महादेव अर कबिलास, दुर्गा कोट जा कह मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम रहाओ।

बासक कोट सेज बिस्तर है, समुंद कोट जाके पानी हार, रुमावल कोट अठारे पार, कोट कमेर परे पंडार, कोटक लक्ष्मी करे सिगार, कोटक पाप

रहाओ। जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी, कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए, कबहु न टूटस रहा समाए, नामे चित लाया सचनाए।

ना। पापी का कर अग्ने माहे, जलत रहे मिटवे कब नाहे। राव हर की भगत ना देखे जाए, मार्ग छोड़ अमार्ग पाए। मूलो पूला आवे जाए, अमृत डार लाद बिख खाए।

पास जाके मस्तक लिखियो कर्मा सो पज पर है गुर की सरना कहत नाम दियो इहो विचार इन विद संतो उतरो पार संडा मर कह जाए पुकारे पड़े नहीं हम ही पछारे राम कहे करताल बजावे चटिया सब बिगाड़े।

पर फड़ चित समाल सोए सदा सदा गोविंद। पोलिया हूँ मैं सुरत विसार, हूँ मैं मार विचार मन, गुण विच गुण लै सार रहाओ, कर्म पेड़ साखा हरी, धर्म फुल फल ज्ञान, पत प्राप्त छाव कणी, चूका मन अभिमान, अखी कुदरत कन्नी बाणी, मुख आखण सच नाम, पत का तन पूरा हो आ लागा सहज ध्यान, महारुति आवना वेखो कर्म कमाए, नानक हरे न सू कहीं जे गुरमुख रहे समाए। महला पहला बसंत रुत आई ले सरस बसंत माहे।

पहला सगल पवन तेरी माया मोह मैं अवर नदी सह सर्व तो हो तू सुरनाथा देवा देव हर नाम मिले गुरचरण सेव मेरे सुंदर गहर गंभीर लाल गुरमुख राम नाम गुण गाए तू अपरंपर सर्व पाल रहाओ बिन साध ना पाये हर का संग बिन गुर मैल मलीन अंग बिन हर नाम ना सुध

गुर संग दिखायो राम राय, मिल सकी सहेली हर गुण बने, हर प्रभ संग खेले वर कामन, गुरमुख खोजत मन मने रहाओ, मनमुखी दुहागन नाहे पेओ, ओ कट कट रावे सर्व प्रेओ, गुरमुख तिरची ने संग देओ, गुर नाम दृढ़ाया जप जपेओ, बिन गुर भगत न पाओ होए, बिन गुर संत ना संग दे, बिन गुर अंधले तंद रोए, मन गुरमुख निर्मल मल शब्द खोए, गुर मन

तैसे संत जन राम नाम रवत रहे। मैं मूरख मुग्ध ऊपर करो दया, तौ शरणागत रहो पया। कहत नानक संसार के ने फल कामा, गुरु प्रसाद को पा।

सालग्राम बिप पूज मनावो, सुकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बांधो, दया करो दयाला,

दयाला प्रणवत नानक दासन दासा दया करो दयाला बसंत महला पहला हिंडोल सौरड़ी बस सब किस सांझी।

अखिमा तन संगरे कया सुने न छाया माने तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन सोला खिन मासा बसंत हिंडोल मैला पैला साचा साहो गुरु सुखदाता हर मेले सुख गवाए कर कृपा हर भगत दृढ़ाए हम दिन हर गुण गाए मत पूले रे मन चेत हरी बिन गुरमुखत नाही त्रैलोई गुरमुख पाये नाम हरी रहाओ बिन भगती नहीं सतगुर पाये बिन पागा नहीं भगत हरी बिन पागा सत्संग न पाये कर्म मिले हर नाम हरी कट कट गुप्त उपाय देखे प्रगट गुरमुख संत जना हर हर करे सो हर रंग पीने हर जल अमृत नाम मना जिनको तख्त में

तीजा राते साथ हर नाम निहाला दया करो प्रभु दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोए ज्यों पावे त्यों राखे सोए गुरु गोपाल मेरे मन पाए रह ना सकूं दर्शन देखे।

गुर कै शब्द रहा भरपूर जी जंत की करे प्रतपाल गुर प्रसादी सब समाल दरसा चै पत्थरों कर जाए नानक नाम बढ़ाई पाए बसंत महला तीजा अंतर पूजा मनते होए एको वेखै और न कोए दूजे लोकी बहुत दुख पाया सतगुर मैनु एक दिखाया मेरा प्रभु मौलिया सद बसंत ए मन मौलिया गाए गुण गोविंद राव गुर पूछो तुम करो विचार ता प्रभु साचे लगे प्यार आप छोड़ होए दासत पाए तो जग जीवन वसै मन आए भगत करे सद वेखे हजूर मेरा प्रभु सद रहा भरपूर इस भक्ति का कोई जाने पेओ सब मेरा प्रभु आत्म देओ आपे सतगुरु मेरे।

हर सोई करे जे हर जीव भावे, सदा सुख शरीर पाने चित लावे, अपना प्रभ सेवे सहज सुभाए, नानक नाम वसै मन आए, बसंत महला तीजा, माया मोह शब्द जलाए, मन तन हरिया सतगुरु भाए, सफल्यो बिरख हर कै द्वार, साची बाणी नाम प्यार, ए मन हरिया सहज सुभाए, सच पल लागे सतगुरु भाए रहाओ, आपे नेड़े आपे दूर, गुर कै शब्द वेखे सद हजूर, छावकणी फूली बन राए, गुरमुख बिगते सहज सुभाए, अन दिन कीर्तन करे दिन रात, सतगुर गवाई विच्चों झूठ परात, परपंच वेख रहा विस्माद, गुरमुख पाये नाम प्रसाद, आपे करता सब रख भोग, जो किछ करे सोई पर होग, वड्डा दाता तिल ना तमाए, नानक मिलिए शब्द कमाए, बसंत महला तीजा, पूरे पाग सचकार कमावे, एक पोचे तै फिर जोन ना आवे, सफल जन्म इस जग में आया, सच नाम सहज समाया, गुरमुख कार करो लिव लाए, हर नाम सेवो विच्चों आप गवाए रहाओ, तिस जन की है साची बाणी, गुर कै शब्द जग माए समाणी, चहु जुग पसरी साची सोए, नाम रता जन प्रगट होए, इक साचे शब्द रहे लिव लाए, से जन साचे

में लावा होए, जिन सच्चे व्या तिन रस पाया, नानक सहजे नाम सुमाया, बसंत महला तीजा, भगत करें जन देखा जूर, संत जना की पग पंकज धूर, हर सेती सद रहे लिव लाए, पूरे सतगुरु दिया बुझाए, दासा का दास बिरला कोई होए, ऊतम पदवी पावे सोए रहाओ, एको से वो अवर न कोए, जित से वे सदा सुख होए, ना ओ मरे न आवे जाए, तिस बिन अवर से भी क्यों माए, से जन साचे जिनी साच पछाणिया, आप मार सहजे नाम समाणिया, गुरमुख नाम प्राप्त होए, मन निर्मल निर्मल सच होए, जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान, साच सबद प्रभ एक सियान, हर रस चाखे ता सुध होए, नानक नाम रते सच

जीवत मरे मर मरण सवार है, गुरु कै शब्द साच उधार है रहाओ। गुरुमुख सच पोजन पवित शरीरा, मन निर्मल सद गुणी गहीरा, जब मैं मरे ना आवे जाए, गुरु प्रसादी साच समाए, साचा से वो साच पछाने, गुरु कै शब्द हर दर निशाने, दर साचे सच शोभा होए, निज करवासा पावे सोए, आप अपूल सच्चा सच सोए, और सब पूले दूजे पत होए, साचा सेवो साची बाणी, नानक नामे साच समाणी, बसंत महला तीजा, बिन कर्मा सब परम पुलाई, माया मोह बहुत दुख पाई, मन मुख अंधे ठौर न पाई, बिस्ता का कीड़ा बिस्ता माए समाए, हुकम मने सो जन प्रवान, गुर कै शब्द नाम निशान, रहाओ साच रते जिना तुर लिख पाया।

शांत न होए, बहु अभिमान अपनी पक होए, सेवड पागी जिन शब्द पछाणिया, बार जांदा कर मैं आणिया, कर मैं वक्त अगम अपारा, गुरमत खोजे शब्द बिचारा, नाम नाम निध पाई कर ही माए, सदा रंग राते सच समाए, आप करे किछ करन न जाए, आपे पावे ले।

बनस्पत मौली चढ़िया बसंत, हे मन मौलिया सतगुरु संग, तुम साथ से आवो मुग्ध मना, ता सुख पावो मेरे मना रहाओ, इत मन मौलिया पया आनंद, अमृत फल पाया।

पूरे पाग हर पगत कराए, इस मन को बसंत की लगे न सोए, ए मन जलिया दूजे दोए रहाओ, यो मन तंदे बांधा कर्म कमाए, माया मूठा सदा बिन लाए, यो मन छूटे जा सतगुरु पेटे, जम काल की फिर आवे ना फेटे, ए मन छूटा गुरु लिया छाए, नानक माया मो शब्द जलाए, बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बन राए, ए जी जंत फूले हर चित लाए, इन विद ए मन हरिया होए, हर हर नाम जपे दिन राती, गुरमुख हो मैं कद्दे तोए रहाओ, सतगुर पानी शब्द सुनाए, ए जग हरिया सतगुर पाए, फल फूल लागे जा पे लाए, मूल लगे ता

टूट तिना की अकुली है पाई, सब संगत मेल मिलाए, आप सराय करे आप भाई, जिन हरिया की आ सब कोए, नानक मन तन सुख सब

ज्यों पसरी सूरज किरण जोत, ज्यों कट कट रमैया ओत पोत, एको हर रविया सर्व थाए, गुर सब दी मिलिए।

रहाओ। काट काट अंतर एको हर सोए, गुर मिलिया एक प्रगट होए। एको एक रहा परपूर, साकत नर लोभी जाने दूर। एको एक वर्तै हर लोए, नानक हर एको करे सो होए। बसंत महला चौथा, रैन दिनस दोए सदे पए। मन हर सिमरो अंत सदा रख ले, हर हर चेत सदा मन मेरे। सब आलस दुख पंज प्रभ पाया, गुरमत गावो गुण प्रभ के रे रहाओ। मन मुख फिर हो मैं मोए, काल दैत संगारे जमपुर गए। गुरमुख हर हर हर लिव लागे, जन्म मरण दो दुख पागे। भगत जना को हर कृपा धारी, गुरु नानक तुखा मिले।

राम नाम रतन कोठड़ी घर मंदिर एक लुकानी, सतगुरु मिले ता खोजिए मिल ज्योति जोत समानी। माधो साधु जन देव मिलाए,

मत खोज परे तब पकरे, तन साबत रास उबरिया पाखंड परम उपाव कर था के, हृद अंतर माया माया साधु पुरख पुरख पत पाया, अज्ञान अंधेर गवाया जगन्नाथ जगदीश गुसाई, कर कृपा साध मिलावे नानक शांत होवे मन अंतर, नित हृदय हर गुण गावे बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अगम गुसाई, हम कीरे किरम तुम नछे हर दीन दयाल करो प्रभ कृपा, गुर सत गुरु चरण हम बन छे, गोविंद जी ओ सत संगत मेल कर कृप छे, जन्म जन्म के किल रिख मल परया।

हम किए पतत पवीचे बसंत ही डोल मैला चौथा मेरा एक छिन मनुआ रह न सके नित हर हर नाम रस गी दे जो बारिक रसक परयो थन माता थन का दे बिलल बिली दे गोविंद जी ओ मेरे मन तन नाम हर दी दे।

जे जन जपियो नाम निरंजन नरहर उपदेश गुरु हर प्री दे जन्म जन्म की हों मैं मल निकसी हर अमृत हर जल नी दे हमरे कर्म ना बिचरो ठाकुर तुम पैज रखो अपनी दे हर पावे सुन बिनो बिनंती जन नानक शरण पवी दे बसंत हिंडोल मेला चौथा मन खिन खिन परम परम बहुत आवे दिल कर नहीं वाता पाई है गुर अंकत शब्द दारू सिर तारियो कर मंदर आन वसाई है गोविंद जी ओ सत्संगत मेल हर त्याई है हों मैं रोग गया सुख पाया हर सहज समाग लगाई है रहाओ कर रतन लाल बहु मानक ला दे मन प्रम्या लह ना सकाई है ज्यो ओडा कूप गोज खिन काडे त्यो सतगुर वस्त लहाई है जिन ऐसा सतगुर साधना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीव आई है जन्म पदार्थ पुन फल पाया कौडी बदले जाई है मधुसूदन हर तार प्रभ कृपा कर कृपा गुरु मिलाई है जन नानक निर्वाण पद पाया मिल साधु हर गुण गाई है बसंत हिंडोल मेला चौथा आवन जान पया दुख बिख्या दे मन मुख सुनी सुन राम नाम खिन पल नहीं चेत्या जम पके काल सुलुंज गोविंद जी ओ बिखो में ममता मुंज सत संगत गुर की हर प्यारी मिल संगत हर रस कुंज राव सत संगत साथ दया कर मेलो शरणागत साधु पंज हम डूबदे पाथर काट ले हो प्रभ तुम दीन दयाल दुख पंज हर उस्तत तारो रिद अंतर स्वामी सत संगत मिल बुद लंज।

पग तारा दें जोग जुगत, नेत्र संतोखे दर्श पेख, रसना गाए गुण अनेक, तृष्णा बूजी गुर प्रसाद, मन आधा ना हर रसें स्वाद, सेवक लागो चरण सेव, आद पुरख अपरंपर देव, सगल उधार

तरों टेक, सर्व कला प्रभु तुम पर बीन, अंत न पावे जलह मीन, अगम अगम ऊंचे ते ऊंच, हम थोरे तुम बहुत मूच, जिन तू त्याया से गनी, जिन तू पाया से पनी, जिन तू सेव्या सुखी से, संत शरण नानक परे, बसंत महला।

लागे। एवड पाग हो है जिस प्राणी सो पाए इह पद निर्वाणी। रहाओ दूजी सेवा जीवन बिरथा कछु न होई है पूरन अर्था।

नानक जन हर हर त्याए। बसंत महला पंजवा, मन तन पीतर लागी प्यास, गुरदयाल पूरी मेरी आस, किलविख काटे साध संग, नाम जप्यो हर नाम रंग, गुर प्रसाद बसंत बना, चरण कमल हृदय उधारे, सदा सदा हर जस सुना रहाओ। समरथ स्वामी कारण करण, मोहे अनाथ प्रभु तेरी शरण, जी जंत तेरे आधार करके।

राम रंग सब गए पाप, राम जपत पत नहीं संताप, गोविंद जपत सब मिटे अंधेर, हर सिमरत कछ नाहे फेर, बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यो सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जय गोविंद भगत सो तन देश।

जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवा, सच परमेश्वर नित नवा, गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप, जा कै सिमरन नहीं संताप। खसम त्याई इक मन इक भाए, गुर पूरे की सदा शरणाई, साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ, अपने जन प्रभ आप रखे, दुष्ट दूत सब प्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देश दुसंतर रहे ताए, किर्त ओना का मिटस नाहे, ओए अपना बीजिया आप खाए, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुँच ना सकस कोए, प्रभ दास रखे कर जतन आप, अखंड पूरन जाको प्रताप, गुण गोविंद नित रसन गाए, नानक जी वह हर चरण ध्याए। बसंत महला पंजवा, गुर चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी मया, सर्व मनोरथ पूरन काम, जप जी वह नानक राम नाम, सारुत सुहावी जित हर्षित आवे, बिन सत गुरु दी सह बिल लांती, सापत फिर आवे जावे, रहाओ।

तब कियो निवास, हर जप जप होई पूरन आस, जल थल मैयल रव रया, गुर मिल नानक हर हर कया, अष्ट सिद्ध नवनिध एहे, करम प्राप्त जिस नाम देहे, प्रभ जप जप जीवे तेरे दास, गुर मिल नानक कमल पर गास, बसंत महला पंजवा कर पहला, इक तुके इक ओंकार, सतगुर प्रसाद, सगल इच्छा जप पुनिया, प्रभ मेले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोविंद रवन जोग, जित रवे सुख सहज भोग रहाओ, कर कृपा नदर निहालिया, अपना दास आप संभालिया,

नानक प्रभ कृपा भई बसंत महला पंजवा रोग मिटाए प्रभु आप बालक राखे अपने कर थाप सांत सहज गृह सद बसंत गुरपुरे की सरणी आए कल्याण रूप जप।

सुखदाता जपदे नीत नीत बसंत महला पंजवा हुकम कर कीने निहाल अपने सेवक को पया दया।

देख फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो प्रभ सभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बासकू।

दुबदा दूर करो लिवलाए। हर नामे के हो वो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए। इन बिद पासा तालो बीर, गुरमुख नाम जपो दिन।

कर जाते। हर आपे खेले आपे देखे, हर आपे रचन रचाया। जन नानक गुरमुख जो नर खेले, सो जिन बाजी कर आया। बसंत महला पंजवा हिंडोल, तेरी कुदरत तू है जाने, और न दूजा जाने। जिसनों कृपा

है भाणा कहो नानक कह तया द्वारे रख ले वो मुगद अजाना बसंत हिंडोल मैला पन्नवा मूल न बूझे आप न सूझे परम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म प्रवधनी।

या जानो या पीतर जो राम बसत है साचो ताहे पछानो रहाओ। यो जग है संपत सुपने की देख कहाँ ऐडानो। संग तिहार है कछु न चाले ताहे कहाँ लपटानो। उस्तक निंदा दो पर हर हर कीरत उर्यानो। जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो। बसंत महलानो।

आओ यो जग तुए का पहार तै साचा मानिया के विचार तन धारा संपत ग्रहे कछ संग ना चाले समझ ले एक पवित्र नारायण।

बार अंत की होए सहाय। कहो नानक गुण ताके गाए, बसंत महला पहला, अष्टपदियां कर पहला, दो तुकियां इको अंकार। सतगुरु प्रसाद जग कौआ नाम नहीं चीत, नाम विसार।

आधार गुर शब्दी बिक प्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे गुर कै शब्द पछाना तो है नानक ठाडे चाहे प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा धार बसंत महला पहला मन फूलो परमस आए जाए अतलुबद लुभानो विकम माए नह अस्थिर दिशे एक भाए ज्यों मीन कुंडलिया कं

तू अपुल ना पूलो कदे ना है, गुर शब्द सुनाए मत आगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मान्या सच सलाहे, बसंत महला पहला, दर्शन की प्यास जिस नर होए, एक तराचे पर हर दोए, दूर दर्द मत अमृत खाए, गुरमुख

चैन अभाव नानक हो मैं शब्द जलाया सतगुरु साचा दर्श दिखाया बसंत महला पहला चंचल चीत न पावे पारा आवत जात न लागे बारा दुख कणो मरिए कर तारा बिन प्रीतम को करे न सारा सब उत्तम किस आखो ही ना हर पगती सच नाम पतीना रहाओ औखद कर था।

रोग व्यापे कट कट रव रहा प्रभ जापे सुख दुख ही ते गुर शब्द अतीता नानक राम रवै हित चीता बसंत महला पहला हित तुकिया मत पसम अंधूर।

चाहे गुण नानक बोले पली बाण, तुम हो सुजा खेल हो पछाण, बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अगली कार, मन मुख पर मैं मजगुबार, मन अंधला अंधली मत लागे, गुर करनी बिन परम ना पागे, रहाओ मन मुख अंधले गुरमत ना भाई, पशु भय अभिमान ना जाए, लख चौरासी जंत उपाए, मेरे ठाकुर भाणे सिर समाए, सगली पूले नहीं शब्द अचार, सो समझे जिस गुर करतार, गुर के चाकर ठाकुर भाणे, बख्श लिए नाही जमकाने, जिनके हृदय एको भाया, आपे मेले परम चुकाया, बेमोहताज बेअंक अपारा, सचपति जय करने हारा।

तू अकल निरंजन परम हीर, तू आपे करता करण जोग, ने केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद, बसंत हिंडोल में

वे चौहत दिए एका एका वारी मेहरवान मधुसूदन माधो ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ कर कर लश्कर पावक तेरा धर्म करे सिकदारी करती देख मिले इक वेरा आव तेरा भंडारी नासा बूर होवे फिर मंगे नारद करे खुआ।

कर कर सिफत तुम्हारी, तीरत सिमरत पुन दान किचला मिले दिहाड़ी, नानक नाम मिले वड़ियाई मेका कड़ी समाली, बसंत हिडोल कर दूजा महला चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद। पाया नगर एक बालक वसिया खिन पल थिर ना रहाई, अनेक उपाव जतन कर खाके बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिले ता पूरा पाई है।

आता आपे जल अपरंपर करता आपे मेल मिलावे नानक गुरुमुख सहज मिलाए जो जल जलह समावे। बसंत महला पंजवा कर पहला दो तुकिया इको अंकार सतगुर प्रसाद सुन साखी मन जत प्यार अजामल उदरिया कह एक बार बाल्मीकि कह हुआ साध संग त्रू को मिलिया हर निसंग तेरिया संता जांचो चरण रेन ले मस्तक लावो कर कृपा देन रहाओ गन का उदरी हर कह तोत गज इंद्र त्यायो हर कियो मोक विप्र सुदा में दाल दुपंज रे मन तू भी पज गोविंद बदक उदार्यो खम प्रहार कुबजा उदरी अंगुष्ट धार बिदर उधार्यो दासत भाए रे मन तू भी हर ध्याए प्रहलाद रखी।

भगत बिहुना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद पजो मेरे सदा मीत साथ शब्द कर सदा प्रीत रहा।

कुमार मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे, ईट मीत को सखाना है। आप बीज आपे ही खाए, जाके कीने होत विकार, से छोड़ चले आखिन में गवार, माया मोह।

हर का नाम से आए कै हो वरिया भाई, कर्म लिखन तय पाई है ए रुत सुहाई, वन त्रिन त्रिभुवन मौलिया अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजे लखी सब छाई, नानक सिमरै एक नाम फिर बहुर न ताई, पंजे बदे मां बली कर सच्चा ढोआ, अपने चरण जपायन विच दया खड़ोआ, रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोआ, दिन रह नाम से आयदा फिर पाए न मोआ, जिस ते उपजिया नाम का।

अगम अगोचर साहेबो दूसर लवेन लावे सच पूरे गुर उपदेशिया नानक सुनावे बसंत माणी भगता की कबीर जी कर पहला इकोंकार सतगुर प्रसाद मौली धरती मौलिया आकाश कट कट मौलिया आत्म प्रगास राजा राम मौलिया।

जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार, इस देही के अधिक काम, कह कबीर पज राम नाम।

ओए परम पुरुष देव आदि देव भगत हेत नरसिंह देव कह कबीर को लखे न पार प्रहलाद उधारे अनेक बार इस तन मन मदे मदन चोर जिन ज्ञान रतन हिर लीन मोर मैं अनाथ प्रभु कहो काहे को ना बिगू तो मैं को आहे माधो दारन दुख सहो न जाए मेरो चपल बुद्ध स्यों कहा बसाए रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद नाभि कमल जाने ब्रह्माद सब जन जोगी जटा तार सब आपन अवसर चले सार तू अखाओ मोय था नाहे प्रभु दीना नाथ दुख कहो काहे मोरो जन्म मरण दुख आप हीर सुख सागर गुण रहो कबीर नायक एक बन जारे पाच बर्ग पचीसक संग काच नौ बैया दस गुण आहे कसन बेहतर लागी पाहे मोहे ऐसे बनज स्यों नहीं काज जिन्हें कटे मूल नित बदे ब्याज।

चलो बनजारा हाथ चार, पूंजी हिरानी बनज टूट, जय दिस तांडो गयो फूट, कह कबीर मन सरसी काज, सहज समानो ता परम पाज, बसंत हिंडोल कर दूजा इको अंकार, सतगुर प्रसाद। माता जूठी पिता भी जूठा, जूठे ही फल लागे, आवे जूठे जाए भी जूठे, जूठे मरे अभागे,

बैठ खाया, गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा।

गुर का शब्द काटे कोट कर्म बसंत बाणी नाम देव जी की इको ओंकार सतगुर प्रसाद साहिब संकट वे सेवक पजे चिरंकाल न जीवे दो कुल लजे तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे चरण कमल मेरे हीरे बसे रहाओ जैसे अपने तने प्राणी मरण मांडे तैसे संत जना राम नाम ना छाडे गंगा गया गोदावरी

कपे त्रुट तुहाकती सर सोवन चाली लाडली रहाओ तो भी तोवे बिरह बिराता हर चरण मेरा मन राता पंत नाम दियो रम रहा अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की इको अंकार सतगुरु प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाहे पहरावा देखे उब जाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ तू काए गर्भे बावली जैसे पादो खूब राज तू

छोट कह रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जून काम। बसंत कबीर जियो इको ओंकार सतगुर प्रसाद। सुर है की जैसी तेरी चाल तेरी पूछट ऊपर चमक बाल। इस पर में है सो

तेरो मन मानिया हर पाए प्राण अधारा रहाओ। इन विद हर मिलिए वर कामन तन सुहाग प्यारी जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी जिस मन माने अभिमान।

नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर धारी सारंग महला चौथा कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद हर के संत जना की हम धूर मिल सत्संगत परम पद पाया आत्म राम रहा भरपूर रहाओ सतगुर संत मिले शांत पाये दिल विच दुख काटे सब दूर आत्म जोत पई पर फूलत पुरख निरंजन देखिया।

मन मुख प्रम दूजे पाए लाजे अंतर अज्ञान गुबारे सतगुर दाता नजर ना आवे ना उरवार ना पारे सर्वे कट कट रलिया स्वामी सर्व कला कल धारे नानक दासन दास कहत है कर कृपा लियो उबारे सारंग महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाए जो किस करे सो

जिन गुरमत नाम पछाने, पुरख है पुरख मिलिया सुख पाया, सब चूकी आवन जाने। नैनी बिरहों दे

तिल तिल पल पल औध फुल घाटे, बूझ न सके गवार, सो किस करे जे साथ न चाले, त्यो साकत का आचार, संत जना कैसे

जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यों प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन से सब रात रहाओ। हर की उपमा अनेक अनेक अनेक गुण गावत। सुख नारद ब्रह्मा।

ہر کے نکت نکت ہر نکت ہی بستے تے ہر کے جن سادو ہر پگات تے ہر کے جن

पंच शब्द वद पाग मथोरा। तीन जन के सब पाप गए, सब दोख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए। तीन जन के हर मार कदे पंच चोरा। हर राम बोलो हर साधु, हर के जन साधु जगदीश जपो। मन बचन कर्म हर हर अराधु, हर के जन साधु हर राम बोल, हर राम बोल सब पाप गवा दू। नित नित जागरण करो सदा सदा आनंद जप जगदीश्वरा। मन इच्छे फल पावो, सबे फल पावो, धर्म

पर भवन करत रहत निराहारी। तिन जन की सेवा थाए पई जिनको कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले जो पावत हर राम मुरारी।

जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सब सृष्टता प्रभो मेरे मन हर बोल हर पुरुष अविनाशी रहाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पी है जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले जिस सतगुरु सो जन हर हर।

अंतर प्यास चात्र की ज्यों जल की सफल दर्शन कर पाओ रहाओ। अनाथा को नाथ सर्वप्रत पालक भगत वत्सल हर नाओ। जाको कोई न राखे प्राणी

आन उपाओ न को सूजे हरदा सा सरणी पर रहा कहो नानक तब ही मन छुटिए जो सगले अवगुण मेट तरहा सार महला पंजवा माई पीर रही प्रे बहुत विरागे।

विनाशी इक साद बचन आगादा आपके आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो ना जाई।

पाए। जो जो शरण पर्यो करुणानिध ते पाए तराए रहाओ। सुख सोयो अर सहज समायो सहसा गुरहे गवाए। जो चाहत सोई हर कियो मन बांचत पल पाए। हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए।

अवर सब फूले प्रमत ना जानिया, एक सुधा खर जा कह हृदय वस्या, इन वेदें तत पछानिया रहाओ। परवृत मार्ग जेता किस होइए, जेता लोग पचारा।

जगदीश है। खोजत खोजत ए बिचारियो सर्व सुखा हर नामा, कहो नानक किस पयो प्राप्त जा के लेख मथामा। सारंग महला पंजवा, हम दिन राम के गुण कही है, सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बांचत फल लिये रहाओ। आवो संत प्राण सुख दाते सिमरन प्रभु अविनाशी, अनाथे नाथ दीन दुख कंजन पूर रहो कटवासी। गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पी वड पागे, कल कलेश मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे।

परम त्याय उपदेश हमारी गत करन रहाओ। दुख रोग तय सगल विनाशे जो आवे हर संत शरण आप जपे अवर।

गुर प्रसाद नानक संतोखे, नाम प्रभु जप जप उदरन सारंग महला पंजवा, गायो री मैं गुण निध मंगल गायो, पले संजोग पले दिन अवसर जो गोपाल री जायो रहाओ, संते चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत।

कैसे कहूँ मोहे जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर, मन ना रहे बहुविध उमकाई रहाओ। चितवन चितवो प्रिय प्रीत बैराग।

मानस जन्म गुलवाई, गर्भ जून छोड़ जो निकसो तौ लागो अनठाही, करें बुराई ठगाई दिन रहन नेफल कर्म कमाही, कान नाही तो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही।

सो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाई, कहो नानक तिन जन बलिहारी, जो अल्प रहे मन माही, सारंग महला पंजवा, क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिछरत होत मृतका, गृह में रहन न पाई, रहाओ जी ही प्राण को दाता, जाके संग सुहाई, करो कृपा।

मन कहां लुभाइए आन कहो, किंत ऊत प्रभु सदा सहाय, जी संग तेरे काम को रहाओ, अमृत नाम प्रिय प्रीत मनोहर, यह अगावन पान को, अकाल मूर्त है साध संतन की, ठहरनी की ध्यान को, बाणी मंत्र महापुरुषन की, मने उतारन मान को, खोज लहो नानक सुख थाना, हर नामा विश्राम को, सार मेला पंजवा, मन सदा मंगल गोविंद गाए, रोग सोग तेरे मिटे सगल अग्नि।

मोहन काया वो करो जो दरिया, मान करो अभिमान बोलो, फूल चूक तेरी प्रक्रिया रहाओ, निकट सुनो अर देखो नाही, परम परम दुख परिया, होए कृपाल गुर लाहे पार दो, मिलो लाल मन हरिया, एक निमक जे बिसरे स्वामी, जानो कोट दिन सलख बनिया, साध संगत की पीर जो पाई, तो नानक हर संग मिरिया, सारंग महला पन्नवा, अब क्या सोचो सोच बिसारी, करना सा सोई कर रहया, देह नाव बलिहारी रहाओ, चहो दिसे फूल रही बिछिया बिथ, गुर मंत्र मुख गरवारी, हाथ दे राख्यो कै अपना, जो जल कमलाल पानी, हो ना ही किछ मैं क्या हो सा, सब तुम ही कल धारी, नानक पाग परयो हर पाछे, राख संत सदकारी, सारंग महला पंजवा, अब मोहे सर्ब उपाव दिरकाते, करण कारण समरथ स्वामी, हर एक रस्ते में।

प्रमतो हार जो पड़े हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया हे सुख बिहानी राते सारंग महला पंजवा अब मोहे लब दियो है हर टेका गुर दयाल पय सुखदाई अंधुले मानक देखा।

जो अल कमला लो भांगे, गुण निधान मनमोहन लाल ने सुखदाई सर्वांगे, गुरु नानक प्रभ पाहे पठायो, मिलो सखा गल लागे, सार महला पंजवा, अब मोरो ठाकुर शिव मन माना, साध कृपाल दया।

मेरे मन शीत आए त्रय रंगा, बिसरो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा। रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो, हर पाया सत्संगा। ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम, सुख पाए मुख मंगा। प्रयो अपना गुर बसर दीना, पोगो पोग निसंगा। निरपो पै नानक पौ मिटिया, हर पायो पाठंगा। सारंग महला पंजवा, हर जियो के दर्शन को कुर्बानी। बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे, देहा प्रय अंक समानी। रहाओ सूत्र ते गुर की सुहागन, हर पायो सुख।

गुरमिल ऐसे प्रभु ते आया, कयो कृपाल दयाल दुख पंजन, लगे न ताती बाया रहाओ। जेते सास सास हम लेते, तेते ही गुण गाया, निमख न बिसरे करी न बिसरे, सद संगे जत जाया। हौ बल बल बल बल चरण कमल को, बल बल गुर दर्शाया, कहो नानक काहू परवाह, जो सुख सागर में पाया। सारंग महला पंजवा, मेरे मन शब्द लगो गुर मीठा, खुलियो कर्म पयो

सगल फूक मेरी लाके रहाओ। कृपा निधान गुण नायक ठाकुर सुख समूह सब नाथे, एक आस मुई तेरी स्वामी और द्वितीया आस बिराते। नैन तृप्ता से देख दर्शावा गुरकर तारे मेरे माथे। सौ नानक मैं

कहो नानक मिल संत संगत ते मगन पए लिवलाई सारंग मैला पंजवा अपना मीत स्वामी गाये आसना अवर काहू की कीजे सुखदाता प्रभु ध्याय रहाओ सुख मंगल कल्याण जिसे घर तिस ही शरणी पाये तिसे त्याग मानुख जे सेवो तो लाज लोन हो जाये एक ओट पकरी ठाकुर की गुर मिल मत बुध पाये गुण निधान नानक प्रभ मिलिया सगल चुकी मोहताये सारंग महला पंजवा ओट सतानी प्रभ जियो मेरे दृष्ट ना लिया वो अवर

नाम और खद मुखदीनो जाए पया गुर पैरे कमन उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दाते रे काट सिलक जो अपना कीनो नानक सुख कनेर है सारन महला पंजवा प्रभ सिमरत दुख विनाशी पयो कृपाल जी सुखदाता।

तब अरोग जब तुम संग बसतो छुटकत होए रवारे कवन बसेरो दास दासन को थाप्यो थापन हारे नाम न विसरे तब जीवन पाये बिनती नानक हे सारे सारंग मेला पंजवा मन के पै पौ दूर पर आयो लाल दयाल गुलाल लाडले सहज सहज गुन गायो रहाओ गुर बचनात समात कृपा ते बहुर न कथु धायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वचल गृह पायो नाद विनोद कोड आनंदा सहजे सहज समायो करना आप करावन आपे

पैमान अपने पैताना अपने ही पै अर्था किन्ही राज जोबन तन मिलखा किन्ही बाप महतारी सर्व थोक नानक गुर पा।

आज काल खुले तेरी गांठली सारंग महला पंजवा गुरजियो संग तुहारे जानियो कोट जोद ओआ की बात न पुछिए ता दरगे भी मान्यो रहाओ कवन मूल प्राणी का कहिए कवन रूप दृष्टानियो

आपे सगले दूत बिदारे ठाकुर अंतर जाम आपे पत राखी सेवक की आपकी ओ बंदान आद जुगाद सेवक की राख है नानक को प्रभ जान सारंग महला पंजवा तू मेरे मीत सखार प्राण।

जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान, जन का संग पाई है वड भागी, नानक संतन कह कुर्बान। सारंग महला पंजवा, करो गत दयाल संतो मोरी, तुम समरथ कारण करना, टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बीती तुम तारे, सुमत संग

अचिंत हस्त बैरागी कहो नानक जिन जगत ठगाना सो माया हर जन ठागी। सारंग महला पंजवा अब जन ऊपर को ना पुकारे पुकारन को जो उदम

संताप मित्र सत्र पेख समत विचार्यो सगल संबाखन जाप तपत बुझी शीतल आघाने सुन अनहद विषम पै विषमाद अनद भया नानक।

रहाओ। हर हर हर हर मन आराधे, रसना हर जस गावे, सज अभिमान काम क्रोध निंदा, वासुदेव रंग लावे, दामोदर दयाल आराधो गोविंद।

आन उपाव त्याग जन सगले चरण कमल रिद धारे प्राण आधार मीत साजन प्रभ एक है एकंकार है सबते ऊंचे।

मन बासत फल पाओ, सहु नानक लाभ लहा ले चालो, सुख से ती कर जाओ। सारंग महला पंजवा, ठाकुर तुम शरण आई आया।

अनद अनद गुण गाया। बाँ पकड़ कदली ने अपने गृह अंधकूप ते माया, कहो नानक गुर बंधन काटे बिछरत आन मिलाया। सारंग महला पंजवा, हर के नाम की गत ठांडी, वेद पुराण सिमरत साधु जन, खोजत खोजत काढ़ी, रहाओ शिव।

देश सगल अपियाओ सारंग मेला पंजवा होती नहीं कमन कछ करनी यह ओट पाई मिल संते गोपाल एक की सरणी रहाओ पंच दोष छिदर या तन में दिखे ब्याद की।

अच तन वन जो सच तन संचो कबहु न आवो हारे खास खर्चत किछ निकुटत नाही अगनत परे पनारे कहो नानक शोभा संग जावो पार ब्रह्म कै द्वारे सारंग मैला पंजवा प्रभु जी मोहे कमन अनाथ बिचारा कमन मूल ते मानुष करया।

आवे राम शरण वड पागी, एकस बिन किछ होर न जाने, अवर उपाव त्यागी रहाओ। मन बच कर्म अरादे हर हर, साध संग सुख पाया, अनद विनोद अकथ कथा रस, साचे सहज समाया। कर कृपा जो अपना कीनो, ताकी उत्तम बाणी, साध संग नानक निस्तरिये, जोरा ते प्रभु।

नित त्याओ मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाम रहाओ। उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी मया करो भगवान आवत जात दो पख पूरन पाये सुख विश्राम। सोदत सोदत तत विचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी कहो नानक इक राम नाम बिन अवर सगल विद उरी। सारंग महला पंजवा साचे सतगुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख नाते चरण कमल बलिहारा।

गुण गाओ। अगम अगोचर मित नहीं पाये, सगल कथा आधार, नानक वाहो वाहो कहो ताको, जाता अंत न पार। सारंग महला पंजवा, गुर के चरण बसे मन मेरे, पूर रहो ठाकुर सब थाई, निकट बसे सब ने रह रहाओ। बंधन तोर राम लिवलाई, संत संग बन आई।

कहत सुनत किछ शांत ना उपजत बिन विश्वास क्या देखा प्रभु त्याग आन जो चाहत ता कै मुख लागे का लेखा जा कै रास सर्व सुख स्वामी आन ना मानत देखा नानक दर्श मगन मन मोहयो।

जन्म मरण संकट ते छूटे, जगदीश भजन सुख ध्यान, तेरी शरण पूरन सुख सागर, कर कृपा देवो दान, सिमर सिमर नानक प्रभु जीवे, दिल जाए अभिमान, सारंग महला पंजवा, तूरत सोई जे तुर को लागे, सोई तुरंतर सोई बसंदर, हर एक

भगत गुण गावत गीजे होहत न संसार रहाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी एहो साधको आचार। चरण कमल अस्थित रिद अंतर पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी धार। नाम निधान उचरो नित रसना नानक सद बलिहार। सारंग महला पंजमा हर के नाम हीन मत थोरी। सिमरत नाहीं श्री कर ठाकुर मिलत अंध दुख को।

दूसरना है जप तप संयम कर्म सुख साधन तुलना कछु वैला है चरण कमल नानक मन भेद्यो चरण संग समाए सारंग महला पंजवा मेरा प्रभ संगे अंतर जामी आगे कुशल पाछे खेम सूखा।

दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत तोए। सारंग महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए, करो कृपा गोपाल बीठले बिसर ना कभी जाए रहाओ। मन तन तन सब तुमरा स्वामी, आनना दूजी जाए। जो तू राखे तिव ही रहना, तुमरा पैने खाए। साध संगत के बल

निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख बंजन तेरे संतें की रावार।

पीवत अम्यो मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद। सारंग महला पंजवा कीने पाप के बहु कोट दिन सरैनी।

पूरन होत न कथो बातें अंत प्रतिहार रहाओ। सांस सुख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार, आप पर का कछ न जाने काम करो दे जार। संसार सागर दुख व्यापियो दास ले वो तार। चरण कमल

नानक जोन प्रवीण गोविंद बिसरे कवन दुख गनिया सुख नानक हर पद चीन सारंग महला पंजवा मायरी चरने ओट गही दर्शन पेख मेरा मन मोहयो।

पंजवा पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावे गुण गोविंद पूरन ब्रह्म ज्ञान रहाओ साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान जिसे कृपाल हुई।

अपना प्रवति आए रतन जन्म अपार जीतियो बौड़ जोन ना पाए पय कृपाल दयाल गोविंद पया साधु संग हर चरण रास नानक पाए।

मानो द्वितीया पाओ सब लुहराओ त्याग गोपाल अवर जो करना ते बिखिया के खूह दर्श प्यास मेरा मन मोयो काडी नरक ते तू संत प्रसाद मिलियो सुखदाता बिनसी हो मैं हूँ राम रंग राते दास नानक मौलियो मन तन जूह सारंग महला पंजवा।

जोर नानक शरण कृपा निध सागर बिनस्यो आन निहोर सारंग महला पंजवा नीकी राम की तुन सोए चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होए रहाओ चितवता गोपाल दर्शन कलमला कड़ धोए जन्म मरण विकार अंकुर।

हर पज आन कर्म विकार, मान मोह ना बुझत तृष्णा, काल ग्रस्त संसार रहाओ। खात पीवत हस्त सोवत, औद बिति असार, नरक उदर परमंत जलतो।

गोविंद गुप्त होए रहो न्यारो, मत अंग मत अहंकार, कर कृपा प्रभ संत राखे, चरण कमल आधार, कर जोर नानक।

सेवक पै दूर करन कलमल दोख जारे, कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते, राम राम सार भूत नानक तत बिचारे, सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग।

एक शरण गोविंद चरण, संसार सगल ताप हरण, नाम रूप साध संग, नानक पार ग्रामी, सारंग महला पंजवा, गुण लाल गावो गुर देखे, पंचाते एक छूटा, जो साध संग पग रहो रहाओ, दृष्टो कछ संग ना जाए, मान त्याग मोहा, एक हर प्रीत लाए, मिल साध संग सोहा, पायो है गुण निधान, सगल आस पूरी, नानक मन आनंद भये, गुर बिखम गार तोरी, सारंग महला पंजवा।

का स्यों न्यो लगाई। जोदी सै सो सगल विनाश है ज्यो बादर की चाही। तज अभिमान शरण संतन गो मुक्त हो है छिन माही। जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने भी नाही। सारंग महला नावा कहा नर अपनो जन्म गवा।

सौ जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नावा मन कर कबहू न हर गुण गायो विख्या सख्त रहो निस्बासुर कीनो अपनो भायो रहाओ।

सहज समाध सदा लिव हर्ष्यों, जीवा हर गुण गाई, गुर के शब्द रता बैरागी, निज कर ताड़ी लाई, शुद्ध रस नाम।

कोट कल्प के दुख विनाशन सात दृढ़ाए निवेरा रहाओ। क्रोध निवार जले हो ममता प्रेम सदा नौ रंगी अनपो विसर गए प्रभ जाच्या हर निर्माइल संगी। चंचल मत त्याग पौ पंजन पाया एक शब्द लिव लागी हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल ले बढ़ पागी। अवरत सिंच भय सुबर सर गुरमत साच निहाला मन रत नाम रते नहीं केवल आज जुगा दयाला। मोहन मोय लिया मन मोरा बड़े पाग लिव लागी साच विचार किल विक दुख काटे मन निर्मल अनरागी।

हर रस रते अधिकाई, एक तस्बिन मैं अवर न जाना, सतगुरु बूझ बुझाई, अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुबर भरे नाही चित डोले।

जन्म जन्म के किलविक पौ पंजन गुरुमुख एको डी ठाराओ कोट कोटंतर के पाप विनाशन हर साचा मन भाया हर बिन

आवागौन निवार सच राते, सात शब्द मन भाया, सतगुर से सदा सुख पाये, जिन विच्चों आप गवाया, साचे शब्द सहज तुन उपजे, मन साचे लिव लाई, अगम अगोचर नाम निरंजन, गुरमुख मन वसाई, एक समय सब जग तो वरते, विरला एक पछाने, शब्द मरे ता सब किच सूजे, अंधन एक को जाने, जिसनो नजर करे सोई जन बूझे, होर कहना कठिन न जाई, नानक नाम रते सदा बैरागी, एक शब्द लिवलाई सारंग महलाती जा, मन मेरे हर की अकथ कहानी, हर नजर करे सोई जन पाए, गुरमुख विर ले जानी रहाओ, हर गहर गंभीर गुणी गहीर, गुर के शब्द पछानिया, बहुविध कर्म करें पाई दूजे, बिन शब्द बहुरानिया, हर नाम नाम है सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल ना होई, नाम बिना सब जा

मुक्त पए साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया तिनको देख पए कृपाला तिन पव सागर तरिया हम नानी नी

अगम अगाध सुनो जन कथा, पार ब्रह्म की अचरज सभा रहाओ। सदा सदा सतगुरु नमस्कार, गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन पीतर होवे प्रगास, ज्ञान अंजन अज्ञान।

का दाता। कट कट पूरन है अलपाता, कट कट पूरन कर विस्थिरन, जल तरंग ज्यों रचन किया, हब रस माने भोग कटाने।

सा अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थन अंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह न सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोहे।

पीतिए कर कर करता करे करे मनमुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मनमुख दूजा परम है दूजे लोभाया कूड़ कपट कमाम दे कूड़ो अलाया पुत्र कलत्र मोहित है सब दुख समाया जम दर बद्दे मारिए परमे परमाया मनमुख जन्म गवा

नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे। नानक अमृत मने माहे पाये गुर प्रसाद तिन्नी पीता रंग स्यों।

जाए मूर्ख अंधिया अंधी सात कह कह कहन कहायन आप महला पहला आखन औखा सुनन औखा आख ना जाती आख एक आख आखे शब्द पाखे अर्ध उर्द दिन रात जे क्यों होए ता क्यों दिसे जाते रूत ना जात सब कारण करता करे कट औकट कट थाप आखन औखा नानका आख ना जापे आख पौड़ी नाई सुनिए मन रहसिए नामे साथी आई नाई सुनिए मन तृप्तिए सब दुख गवाई नाई सुनिए ना उपजे नामे वड्याई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरुमुख नाम ते आई है नानक लिव लाई श्लोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की पेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मिहो वरे है सब थाई झूठ न तरती झूठ न पानी झूठ न पौने माई समानी नानक निगुरिया गुण

किस ऊपर ऊँट टिकटिके, किसनो जोर करे, किसनो कहिए नानका, किसनो करता दे, हुक्म रहाए अपने।

पूर बोल बोल पौकना चूका धर्म विचार जिन जीवन दे आपत नहीं मोया मंदी सोए।

ता नानक कही है मूरत पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सोल है गुर शब्दी मिलिया। सतगुर के पाणे जो चले हर से पीर लिया, जमकाल जो न सकई कर चानन बलिया। नानक बख्श मिलायन फिर गर्व न गलिया, श्लोक महला पहला सच वर्त संतोष।

वस्त्र पराए आप गर्व करे मूर्ख आन गनाए नानक बिन बूझे किने न पायो फिर आवे जाए महला तीजा मन आनंद भया।

सिमा हर गुरमुख नाम दियाए दुख पुख काणा सब चुकाए सी मियों उठा छे बरलाए सब तरत पाई हरियावली अन जमिया बोहल लाए हर अचिंत बुलावे कृपा कर हर आपे पावे थाए हर किसे त्यावो संत जनो जो अंते ले चलाए हर कीत भगत आनंद है सदा सुख वसे मन आए जिना गुरमुख नाम आराध्या तिना दुख दुख ले जाए जन नानक तृप्तै गाए गुण हर दर्शन देहो सुभाए पौड़ी गुरपूरे की दात नित देवै चढ़े सवाइया तुस देवै आप दया।

आप छोड़ सरनाए पवे मन ले रजाए। गुरमुख जम डंड ना लगे हों मैं विचों जाए। नानक सेवक सोई आखिए जे सत रहे लिवलाए महला तीजा। दात जोत सब

करो बिनु गुर अपने प्रीतम हर बार आन मिलावे सुन तन कोर शीतल मन मोरा लालवती गुण गावे बरसपना में।

मन मानिया हर वर नार तई सोहागण मन तन प्रेम सुखानिया अवगन त्याग तई बैरागण अस्थिर वर सोहाग हरी सोग विजोग तिस कदे ना व्यापे हर प्रभ अपनी कृपा करी आवन जान ही मन में चले पूरे गुर की ओट गही नानक राम नाम जप गुरमुख तन सुहागन सत सही मलार महला पहला साची सुरत नाम नहीं तृप्ते हों मैं करत गवाया।

ऐसा नाम न भाया, रतन पदार्थ पर हर त्या गया, जब को तप ही आया, दिष्टा कीत पे उतही ते, उतही मैं समाया, अधिक स्वाद रोग अधिकाई।

जिन तन तिरका साब न जानिया साबिल को बदन कुमलानी पई निराशी कर्म की फांसी बिन गुर कर्म तुलानी बस कना मेरा सिर कर आया बल जावा गुर अपने प्रीतम जिन हर प्रभ आन मिलाया रहा नौतन प्रीत सदा ठाकुर स्यों हम जिन भगत सुहावी मुक्त पे गुर बरस दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम सारे त्रिभुवन जग तुम्हारा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिले निरंजन पाया।

गुरमत नाम आधारो मुक्त पाई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पट पाई नानक राम नाम रुद अंतर गुरमुख मेल मिलाई महला पहला मलार पर दारा पर तन पर लोबा होमे बिछे बिकार दुष्ट पाओ तब निंद पर आई काम क्रोध चंगार महल में बैठे अगम अपार पीतर अमृत सोई जन पावे जिस गुरु का शब्द रतन आचार रहाओ दुख सुख दो शंकर जाने बुरा पला संसार शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाये सत्संगत गुर प्यार एन सलाहा हर नाम प्राप्त गुरदाता देवनहार गुरमुख सुख सोई जन पाए जिसनो नगर करे करतार काया महल मंदिर कर हरता किसने राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बुलाई है।

सुरता पंडित का कानाओ गुण गोविंद ना जानिए माए अंधी था कुछ कह न जाए क्या कर आँख बखानिए माए रहाओ ऊपर बर समान प्याल क्यों कर कहीं दो विचार दिन जेवा जो जपह आए कोई जाने कैसा नाओ कथनी बदनी रह निवरात सो बूझे हो जिस बात अंतर है निवला।

गर्दना पोले दारू लाए, चंदन का फल चंदन वास, मानस का फल तप में सास, सास दे काया तल पाए, कांके पाछे कोई न खाए, कंचन काया निर्मल हंस, जिसमें नाम निरंजन अंस, दुख रोग सब गया गवाए, नानक छूटे से साचे नाए, मलार महला पहला, दुख मोहरा मारन हरन।

आप कृष्णा उगने की दंज नगर करे ता बंदा तीर ज्यों वेखा ले त्यों वेखा वीर ना यो तंग जाएगा ना जाएंगे खम्ब पौने पानी अग्नि का सन बंद नानक कर्म होवे जति।

मेरा हर पद अगम अगोचर है, कीमत कह न जाए, गुरु प्रसादी बुझिया सब देकार कमाए, नानक नाम चलाए तू हर हर दर शोभा पाए, मलार मैला पीजा गुरमुख कोई गिरना बूझे, जिसनो

पाले, गुरमत सत्संगत ना बिछड़े, अंधन नाम समाले, सबना करता एक तू, नित कर देखे विचार, एक गुरमुख आप मिलाया, बक्षे पलट पंडार, तू आपे सब किस जानदा, किस आगे करी पुकार, हर हर नाम अमृत है नगरी पाया जाए, हम दिन हर हर उचरे, गुर के सह सुवाए, नानक नाम निधान है, नामे ही चुकलाए, मलार महला की जाए, गुर सावाही सदा सुखदा।

एक एक वसे मन स्वामी दूजा और न कोई, एको नाम अमृत है मीठा जग निर्मल सब सोई, नानक नाम प्रभु ते पाया जिनको तुर लिखिया होई, मलार महला तीजा गण गंधर्व नामी सब उदरे गुर का शब्द विचार, हूँ मैं मार सब मन वसाया हर राख्या उधार, जिसे बुझाए सोई बूझे।

समझ सुख अंतर सदा निभय तेरे नाल राव। मन मुखता ठंड कदे न चूके दूजे पाए दुख पाए नाम विसार दिखिया मन राते बिरथा जन्म गवाए ए वेला सुर हाथ न आवे अंदिन सदा पछताए मर मर जन्मे कदे न बूझे विस्ता मैं समाए गुरमुख नाम रते सेव दरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम त्याए।

एक बिन मैं और ना जाना, सतगुरु दिया बुझाई, मन मेरे नाम रहो लिवलाई, अदिष्ट अगोचर अपरंपर करता, गुर के शब्द हर

इहो हुकुम कर श्रेष्ठ उपाय। गुर प्रसादी बूजो भाई, सदा रहो हर की शरणाई। सो पंडित जो तिहा गुणा की पंड उतारे, अन दिन एको नाम वखाणे।

कृपा होए, अनदिन हर गुण गावे सोए, शास्त्र वेद की फिर कूक न होए, मलार मैला तीजा प्रम प्रम जोन मन मुख परमाई, जम काल मारे नित पत गवाई, सतगुर सेवा जम की काम चुकाई, हर प्रभ मिलिया महल कर पाई, प्राणी गुरमुख नाम ध्याए, जन्म पदार्थ दुविधा खोया, कौडी बदले जाए रहाओ, कर कृपा गुरमुख लगे प्यारे, अंतर पग पे हर हर उधार, पव जल शब्द लंघावन हार, दर साचे दुस्से सचार, बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया, बिन गुर परम पूले बहुमाया, हों में ममता बो मोह वधाया, दूजे पाए मन मुख दुख पाया, आपे करता अगम अथाहा, गुर शब्दी जपिए सकलाहा, हाजर हजूर हर वे परवाहा, नानक गुरमुख नाम समाहा,

हौ जीवा सदा हर के गुण गाई। गुर का शब्द महारस मीठा, हर के नाम मुक्त गत पाई रहाओ। माया मोह अज्ञान दुवार, मनमुख मोहे मुक्त गवार। हम दिन तंबा तर्क निहाए, मरमर जम में मिले सजाए। गुरमुख राम नाम ले लाई, पूरे लालच ना लपताई। जो कुछ हो वह सह सुवाए, हर रस पी वह रसन रसाए। कोट मदे कुसें बुझाई।

रखना नाम सब कोई कहे, सतगुरु सेवे का नाम लहे, बंधन तोड़े मुक्त कर गह, गुर शब्दी अस्थिर कर गह, मेरे मन काहे रोष करी जाए, लाहा कलज गुराम नाम है, गुरमत अंदन हृदय रवी जाए, रहाओ बाबी हाँ खिन खिन दिल लाए, बिन फिर देखे नींद ना पाए, यो बिछोड़ा सहाना जाए, सतगुरु मिले का मिले।

मत गुरमत दुख विसारी, सब आशा मनसा बंधन टूटे, हर हर प्रभु कृपा धारी, नैनी हर हर लागी तारी, सतगुरु देख मेरा मन बिगस्यो, जन हर पेटियो बनवारी रहाओ, जिन ऐसा नाम विसारिया मेरा हर हर, तिसके कुल लागी गारी, हर तिसके कुल प्रसूत ना करियो, किस विधवा कर महकारी, हर हर आन मिलावो गुर साधु, जिस एनस हर

गुरपुर हो मैं पीत तोरी, जन नानक मिले बनवारी। मल्हार महला चौथा, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती, ते करें उद्दम तूर साधु की ताई। किल विच मैल परे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की तूर गवाई। तीरथ असठ मज्जन नाई, सब संगत की तूर परी उड़ नेत्री, सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ। जहर नवी तपे पागी रखलानी, केदार था प्यो महसाई। काशी कृष्ण चरावत गाऊ, मिल हर जन शोभा पाई। जितने तीरथ देवी थापे, सब कितने लोचे तूर साधु की ताई। हर का संत मिले।

हर गन हर कार लावे, सतगुर हर हर नाम दिलावे। हर बोलो गुर के सुख मेरे भाई, हर पौजल जगत तरावे रहाओ। जो गुर को जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभु भावे। हर की सेवा सतगुर पूजो, कर कृपा आप करावे। कर्म पूले अज्ञानी अंधुले, कम कम फूल तोड़ावे। निर्जीव पूजे मरा सुरेवे, सब दुखी काल गवावे। ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कहिए, हर हर कथा सुनावे। उस गुर को छादन पूजन पाठ, पतंबर बहुबुदे सतकर मुख संचो। किस पुन की फिर कोट नावे, सतगुर देव प्रतख हर मुहूर्त। जो अमृत वचन सुनावे, नानक पाग पले तिस जन के। जो हर चरणी चित लावे, मल्हार महला चौथा। जिनके हियरे बसियो मेरा सतगुरु, ते संत पले पल पांत। तिन देखे मेरा मन बिगसे, हों तिनके सद बल जांत। ज्ञानी हर बोलो दिन रात, तिनकी तृष्णा पूछ सब उतरी। जो गुरमत राम रसखांत रहाओ, हर के दास साग सखा जन। जिन मिलिया लह जाए प्रांत, जो जल दूध पिन पिन का दे। चुन हंसला त्यों देही ते चुन का दे, साधु हों मैं तात। जिनके प्रीत नाही हर हृदय, ते कपटी नर नित कपट तमात। तिनको क्या कोई देख वाले, वो आप बीज आते ही खाते। हर का चिन्ह सोई हर जन का, हर आते जन में आप रखाते। तन तन गुरु नानक समदर्शी, जिन निंदा उस्तत करी त्रांत। मलार महला चौथा, अगम अगोचर नाम हर उत्तम। हर कृपा ते जप लया, सत संगत साध पाई वड पागी। संग साधु पार पया, मेरे मन अन दिन अंध भया।

0: किन संगत हर मेलो करमया, किन का दर्श देख सुख पाया, दुखों में रोग गया, जो अंगिन हृदय नाम दिया है, सब जन पिना का सफल भया, वो आप करे सुष्ट सरकारी, सब कुल भी पार पया, तुझ आपके आप उपाया सब जग, तुझ आपे वश कर लिया, जन नानक तो प्रभ कृपा धारी, दिख दुखदा काब लिया।
1: मल्हार महला चौथा। गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया, कृष्णा भूख न जाई, मन मुख मूड जलत अहंकारी, हूं मैं विच दुख पाई, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, दुख लागे पछताई, जिसते उपजे तिसे न चेते, त्रिग जीवन त्रिग खाई, प्राणी गुरमुख नाम दे आई, हर हर कृपा करे गुर मेले, हर हर नाम समाई रहा, मन मुख जन्म भया है बिरथा, आवत जात ल जाई, काम क्रोध डूबे अभिमानी, हों मैं विच जल जाई, तिन सिद्ध न बुद्ध भई मत मद्दन, लोभ लहर दुख पाई, गुर बिहून महा दुख पाया, जम तकरे दिल लाई, हर का नाम अगोचर पाया, गुरमुख सह सुभाई, नाम निधान वस्या घट अंतर।

बारिक पिता प्रभदाता फूले बारिक अनेक लख बरिया अनठौर नाही जय जाता रहाओ चंचल मत बारिक बपरे की सर्प अग्न कर मेले माता पिता कंठ लाए राखे अनद सहज तब खेले जिसका पिता तू है मेरे स्वामी इस बारिक भूख कैसी नवनिध नाम निधान गृह तेरे मन बाछे सो लैसी पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारिक मुख मांगे सो देना नानक बारिक दर्श प्रभ चाहे मोहि हृदय बसे नित चरना मलार महला पंजवा सगल विधि जुर आहर करया सजियो सगल अंदेशा कार्य सगल अरंभियो करका ठाकुर का भरोसा सुनिए बाजे बाज सुहावी और पया मैं प्रेह मुख पेखे गृह मंगल सुहलावी रहाओ मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संता जाए खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो भगत करो निर पाए जब प्रेह आए बसे गृह आसन तब हम मंगल गाया मीत साजन मेरे पै सुहेले प्रभु पूरा गुरु मिलाया सखी सहेली पै आनंदा गुर कार्य हमरे पूरे कहो नानक वर मिलिया सुखदाता छोड़ न जाई दूरे मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर को परते कृपा निध छोड़ आम को पूजे आत्म का सी हरते हर बिसरते दुख दुख मरते अनेक बार प्रमे बहुजोनी एक न काहू तरते रहाओ।

नानक शरण चरण कमलन की, तुम ना डारो प्रभ करते राग मलार महला पंजवा, दुख दे कर पहला इको ओंकार सतगुर प्रसाद। प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी, हों एक खिन तिस बिन रह ना सको, प्रीत हमारी लागी रहाओ, उनके संग मोहे

कृपाल पे बड़ पागी महा सुख पाया बर न पाको रेन नानक जन पागी मल्हार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई सगल सहेली सुख पर सूती जी कर लाल बसाई रहाओ मोहे अवगन प्रभु सदा दयाला मोहे निर्गुण क्या चतुराई करो बराबर जो प्रेम संग राती ए हो मैं की टीठाई तई निमानी शरण एकता की गुरु सब गुरु पुरुष सुखदाई एक निमक में मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रहन बिहाई मल्हार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल न लाओ बरस प्यारे मने सदारे होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ।

तत शोभा तले अचारे मल्हार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम ध्याए दुख दर्द बिन से पव सागर गुर की मूरत हृदय बसाए रहाओ दुश्मन हते दुखी सब व्यापे हर शरणाई आया राखन हारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलवित सब काटे नाम निर्मल मन दिया गुण निधान नानक मन वस्या बहुर दुख ना थिया मल्हार महला पंजवा प्रभ मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रेम भगत अपनो नाम दीजे दयाल अनुग्रह तारे रहाओ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आशा संत जना तह करो विनंती मन दर्शन की प्यासा बिछरत

की जय। नाम आधार जीवन तन नानक, प्रभ मेरे कृपा की जय। मल्हार महला पंजवा, अब अपने प्रीतम स्यो बने आई। राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवे निद पाई। उदोत पयो पूरन पावी को, पेटे संत सहाई। सुख उपजे दुख सगल विनाशे, पार ब्रह्म लिवलाई। करो संसार कथन पै सागर, हर नानक चरण ध्याई। मल्हार महला पंजवा, तन हर बरस सगल जग छाया। तय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रहाओ। मिटे कलेश

दीन दुख पंजन आप लिए लड़ लाई हर की ओट जीवे दास तेरे नानक प्रभ शरणाई मलार महला पंजवा मन मेरे हर के चरण रवि जय दर्श प्यास मेरो मन मोयो हर पंख लगाए मिली जय रहाओ खोजत खोजत मार्ग पायो साधु सेव करी जय पार अनग्रो स्वामी मेरे नाम महारस पी जय त्राहे त्राहे कर सरनी आए जल को कृपा की जय कर गह लिहो दास अपने को नानक अपनों की जय मलार महला पंजवा प्रभ को भगत बछल बिरदायो निंदक मार चरण तल दीने अपनो जस वरतायो रहा।

कार्कियो में स्वामी त्रंपो में सुखायो महा आनंद करो दास हर के नानक विश्वास मन आयो राग।

गुरुमुख दिसै ब्रह्म प्रसार, गुरुमुख त्रै गुणिया विस्तार, गुरुमुख नाद वेद विचार, बिन गुर पूरे कोर अंधार। मेरे मन गुर गुर कर सदा सुख पाये, गुर उपदेश हर हृदय वस्यो, सांस गिरास अपना खसम त्याय।

गुर पेटे ना हुए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जाको कर्म लिखिया तुर आए। गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सतगुर शरणाई, नानक गुर पाए।

न जाए। कर कृपा पूरन सुखदाते, तुमरी कृपा ते तू चित आवे। आठ पैर तेरे रंग राते रहाओ, गावन सुनन सब तेरा भाना। हुकुम

ज्ञान, सदा सदा जाइए कुर्बान, काल गवाया करते आप, सदा सदा मन किसनो जाप, दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भगत जाने प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले किसका बोलाया, मलार महला पंजवा, गुर शरणाई सगल निधान, साची दरगे पाये मान, ब्रह्म को दुख दर्द सब जाए, साध संग सब हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सालाए, नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहाओ, सत गुर जेवड़

सो मन निर्मल जो गुर संगराची गुर पूरा पाए वडवाग काम क्रोध लोभ मनते त्याग कर कृपा गुर चरण निवास नानक की प्रभु सत अरदास राग मलार में।

नानक प्रयो प्रीतम किया मल्हार महला पंजवा मन कने प्रमे बने उमक तरस चाले प्रभ मिलबे की चाह रहाओ त्रै गुण माई मोह आई कहो बेदन काहे आन उपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे हज शरण साधु नानका मिल गुण गोविंद गाहे मल्हार महला पंजवा त्रै की शोभ सुहावनी नीकी हा हा हू हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललित गुणग अनक भांत बहुविध रूप दिखावनी नीकी गिरतर थल जल पवन परपुर कट कट लालन छावनी नीकी साध संग रमैया रस पायो नानक जा कै पावनी नीकी मल्हार महला पंजवा गुर प्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर धारे रहाओ दर्श सफलियो दर्श पेखियो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे विषम विस्मय विषम भई अब कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण द्वारे मल्हार महला पंजवा बरस सरस आग्या होहे आनंद सगल भाग रहाओ संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग कन कोर प्रीत मोर चित चात्रिक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोहो त्याग माया तो हो मिल संत नानक जागया मल्हार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ कै संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म पै दयाल बिनस गए बिखे जंजाल सात जना कै चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत मल्हार महला पंजवा कन गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण शरण तरण सागर तुन अनहता रस बैन पथिक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन।

नानक पार उतार मल्हार महला पहला अष्टपदिया कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। चकवी

लक्ष्मीनाई शास्त्रिक जल बिन प्रयो प्रयो टेरे बिलप करे बिललाई कान हर कोर दसो दिस बरसे बिन जल प्यास न जाई मीन निवास उपजे जल ही ते सुख दुख पूर्व कमाई खिन तिल रह ना सके पल जल बिन मरण जीवन तिस्ताई तन वाडी फिर देश निवासी सच्चे गुर पै शब्द पठाई।

अपना काश वारो आपे सुखदाते गोसाई गुर प्रसाद काही फिर पाया कौ नानक तपत बुझाई मलार महला पहला जागत जाग रहे गुर सेवा बिन हर में को नाही अनेक जतन कर रहे न पावे आच पाच टर पाही इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिन सत बार न लागे बवरे हो मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहा।

सर्व सिर मोरा, काल विकाल परम पैखंजन। कागद कोट इहो जग है बपरो, रंगन चेहन चतुराई, नानी सी बूंद पवन पत खोवे, जन्म मरे खिन ताई। नदी उपकंठ जैसे कर तरवर, सरपन कर कर माही, उल्टी नदी कहाँ कर तरवर, सरपन डसे दूजा मन माही। गरुड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी, बिख्या गुरमत जारी, मन तन हेम पै सच पाया, हर की भगत निरारी। जेती है तेती तुद जाते, तू सर्व जिया दयाला, तुमरी शरण परे पत राखो, साच मिले गोपाला। बादी तंद अंध नहीं सूजे, बदिक कर्म कमावे, सतगुरु मिले ता सूजस बूजस।

चात्रिक मीन जल ही ते सुख पावे, सारिंग सबद सुहाई, रैन बबीहा बोलियो मेरी माई, रमाओ त्रैस्यो प्रीत न उल्टे कबहू, जो तै पावे साई, नींद गई हो मैं तन थाकी, सच मत हृदय समाई।

दुर्गै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज करवा साते मगना चालनहार, जित कर वसे तू है बिद जाने भी जो महल न जाते, सतगुर बाजो समझ न होवी, सब जग दबिया छापे, करण तलाव करे बिलला तो बिन गुरु नाम न जापे, पल पंकज में नाम छड़ाए, जे गुर सबक सिंजापे, एक मूर्ख अंधे मुग्ध गवार, एक सतगुर के पै नाम आधार, साची बाणी मीठी अमृत धार, जिन पीती तिस मोख द्वार, नाम पै

आए एक शब्द राचे सत समाए चौदिस हुकम वर्ते प्रभु तेरा चौदिस नाम पतालं सब में शब्द वर्ते प्रभु साचा कर्म मिले बयालं जामन मरणा दिसे सिर उबो खुदया निद्रा कालं नानक नाम मिले मन भावे साची नगर रसालं मलार महला पहला मरण मुकत गत सार न जाने कंठे बैठी गुर शब्द पछाने तू कैसे आर पाथी जाल अलख न जाचे हृदय समाल रहाओ एक जी कै जी आखाही जलत तरती बूढ़ी जलमाही सर्ग जी की ए प्रतपानी जब पकड़ी तब ही पछतानी जब गल फांस

मन मेरे हर हर नाम सितलाए, सतगुर ते हर पाई है साचा, हर स्यों रह समाए रहाओ। सतगुर ते ज्ञान उपजे ता ए संसा जाए, सतगुर ते हर बुझिए गर्भ जोनी नह पाए।

वेद बाणी जग वर्तदा त्रै गुण करे विचार बिन नावै जम दंड सहै मरजन में वारो वार सतगुर पेटे मुक्त होए पाए मोख द्वार मन रे सतगुर सेव समाए वड्डे भाग गुर पूरा पाया हर हर नाम ते आए रहाओ हर अपने पाने सृष्ट उपाय हर आपे दे आधार हर अपने भाने मन निर्मल किया हर स्यों लागा प्यार हर कै पाने

अमृत वर्षे मन संतोषिए सच रहे निवलाए हर कहनाए सदा हरियावली फिर सुख कहना कुमलाए बिन सतगुर किने न पायो मन वे को पतियाए हर कृपा ते सत

नानक नामे ही पत उपजै। हर स्यों रहा समाए मल्हार महला तीजा, अष्टपदी कर दूजा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद हर हर कृपा करे गुरु की कारे लाए, दुख पल्लर हर नाम बसाए। साची गत साचे चित लाए, गुरु की बाणी शब्द सुनाए। मन मेरे हर हर सेव निधान, गुरु कृपा ते हर तन पाई है।

चित कट ना मैं नाम निवास, हों मैं भगत करे सब कोए, ना मन पीजे ना सुखोए, कह कह कहन आप जनाए, बिरथी भगत सब जन्म गवाए, से भगत सतगुरु मन भाए, हम दिन नाम रहे लिवलाए।

नानक साचे साच समाए राग मल्हार छंत मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद। प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संग राते, जन संग राते दिन सराते एक निमख मनो ना विसरे। गोपाल गुण निध सदा संगे सर्व गुण जगदीशरे। मन मोह लीना चरण संगे नाम रस जन माते। नानक प्रीतम कृपाल सदहू किने कोट मदे जाते। प्रीतम तेरी गत अगम अपारे महापतित तुम तारे। पतित पावन भगत वचल कृपा सिंध स्वामिया। संत संगे भजन संगे रहो सदा अंतर जामिया। कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे। नानक दर्श प्यास हर जियो आप लिहो समारे। हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना। जल मीन प्रभ जियो एक तू है बिन आन न जानिए। गह पूजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी मानिए। तज साध संग

आप उसको आप मिलाया, क्रम पंजन हर राया, आचार्य स्वामी अंतरजामी, मिले गुण निध प्यारिया, महा मंगल सुख उपजे, गोविंद गुण निध सारिया, मिल संग सोहे देख मोहे, पूर्व लिखिया पाया, बिनवंत नानक शरण तिनकी, जिन्नी हर हर ध्याया, वार मलार की महला पहला, राणे कैलाश तथा माल दे की तुन, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा। गुर मिलिए मन रहसिय, ज्यों उठे तरण सिगार, सब दिशे हरियावली, सर परे सदर ताल, अंदर रचे सच रंग, ज्यों मंजी छे लाल, कमल विगसे सच मन।

काल खुदया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल एनी अखी नदर न आवई जिचर सब

जिन मन पाओ पाओ होए, नानक तै पाए बाहरी तिन तम सुख न होए। महला तीजा, ऊनव ऊनव आया वरसे नीर निपंग, नानक दुख लागा तिन कामणी जिन कन तैस्यो मन पंग पौड़ी। दोवे तरफा उपाय इक वरत्या, वेद बाणी वरताए अंदर वाद कत्या, परविरत निर्विरत हाठा दोवे विच तरम फिरे रे बारिया। मन मुख कच्चे कूड़ियार तिनी ने चौदर गै हारिया, गुरमती शब्द सूर है काम क्रोध जिन्नी मारिया। सच्चे अंदर महल शब्द सवारिया,

सब करण पलाह करे पौड़ी। सो हर सदा सरे भी है, जिस तर्क न लागे वार, आडाने आकाश।

गुरमुख पक्षों लेखा निबड़े बक्षे सिर पंडार ओथे हाथ ना पड़े कूक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुरु बेली हो।

लाए, जो जल में कमल अलिप्त है ऐसी बंत बनाए, से सुखिए सदा सोने जिन विच्चों आप गवाए, तिन सोग विजोग कदे नहीं जो हर के अंक समाए।

नानक तिनका आख्या आप सुने, जे लयन पन्ने पाए महला तीजा, अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार, गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखिया उधार, हर अमृत पीवे सवा रंग राते हो मैं तृष्णा मार, अमृत हर का नाम है वर्षे कृपा।

कार्य गुण मेरे समाए अपना आप आप तोलसी आपे मिले मिलाए किसकी कीमत ना पवे कहना किछु न जाए हों बलिहारी गुरे अपने जिन सच्ची बूझ दिती बुझाए जगत मुसे अमृत लुटी है मनमुख बूझ न पाए विण नामे नाल न चलसी जासी जन्म गवाए गुरमती जागे तिन्नी कर रखिया दूता का किछ न वसाए श्लोक महला तीजा बाबी हा ना बिललाए ना तरसाए इहो मन खसम का हुक्म मन नानक हुक्म मने तिख उतरे चढ़े चवक गलवन।

जल फल चौबीस वर्ष दाया खाली को ठाव नाही एक जल वर्ष दे तिख मरे ताग तिना के नाही नानक गुरमुख तिन सोजी पई जिन वस्या मन माहे पौड़ी नाथ जति सिद्ध पीर किने अंत न पाया गुरमुख नाम पिया।

नील अनिल अगम सरजीत सवाया, अगन उपाई वाद पुख तिहाया, दुनिया कैसर काल दूजा भाया, रखे रखन हार जिन शब्द बुझाया। श्लोक महला तीजा, यो जल सब कै वरसवा, वरसै पाए सुवाए, से बिरखा हरियावले।

कह अम तन बहुत उपजे जा सहो करे रजाए जित खा दे मन तृप्ति है जिया जुगत समाए यो तन करते का खेल है कदे आवे कदे जाए ज्ञानिया का तन नाम है सद ही रह समाए नानक जिन को नदर करे ता यो तन पल्ले पाए पौड़ी आप कराए करे आप हों कैसों करी पुकार।

छुट्टियां आपे बक्षणहार आपे वेखे सुने आप सबसे दे आधार सब में एक वर्तदार।

सो जन मुक्त सदा होए पौड़ी सच्चा वे परवाहो इको तू धनी तू सब किछ आपे आप दूजे किस गणी मानस कूड़ा गर्भ सच्ची तुदमणि आवा गौण रचाए उपाई मेदनी सतगुर सेवे आपना आया किस गणी जे हो मैं विचो जाए ताके ही गणत गणी मनमुख

सुषमा सुदाने संत धन दूजे पट खोई एक दाते एक मंगते सगना सिर सोई विणना में बाजारिया पीहावल होई पूर्ण खुट्टे नानका सच करे सो होई। श्लोक महला तीजा बाबी हा गुणवंती महल पाया औ गुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसे गुरुमुख सदा हजूर। कूक पुकार ना हो गई नदरी नगर निहाल नानक नाम रते सहजे मिले शब्द गुरु कै काल। महला तीजा बाबी हा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान जल बिन प्यास न उतरे छुटक जाहे मेरे प्राण। तू सुखदाता बेअंत है गुणदाता निधान नानक गुरमुख बख्श ले अंत बेली होए भगवान पौड़ी।

अब गयार जिस बच्चे सो पाए सी गुर सब्दी विचार। श्लोक महला पंजवा। रात में बिहावी सापता जिना विसरै नाओ, राती दिन सुहेलिया नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा। रतन जले हर मान का हब्बे मणि मखन, नानक जो प्रभु पाया सच्चे दर सोहन पौड़ी। सच्चा सतगुर सेव सच समालिया, अंत खलोआ आए जे सतगुर अग्गे कालिया। कोई न सके जमकाल सच्चा रखवालिया, गुरसा की जोत जगाए दीवा बालिया। मन मुख बिन नावे कूड़ियार फिर बेतालिया, पशु मानस चंप लेते अंदरों कालिया। सबो वर्ते सच सच्चे सगर निहालिया, नानक नाम निधान है पूरे गुर देखा लिया। श्लोक महला तीजा। बादी है हुकुम पछाणिया गुर कैसे सुवाए, मेघ वर्षे दया कर गुड़ी छे बरलाए। बाबी है कूक पुकार रह गई सुख वस्या मन आए, नानक सो साल आई है ये दिन दा सबना जिया रिजिक समाए। महला तीजा। चात्रिक तू ना जानही क्या तुद विच तिखा है, कित पीते तिख जाए। दूजे पाए परम्या अमृत जल पल ना पाए, नदर करे जे अपनी ता सतगुरु मिले सुवाए। नानक सतगुरु ते अमृत जल पाया सहजे रहा समाए पौड़ी। एक मन खंड बैसे जाए सदना दे रही, एक पाला चक्कर पान शीतल जल हे वही। एक पसम चढ़ा में अंग मैल ना तो वही,

नानक नाम रते जन निर्मले। सहजे सत समाव पौड़ी, पूरा सतगुर सेव पूरा पाया, पूरे कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया, पूरे ज्ञान त्यान मैल चुकाया, हर हर तीर्थ जान मनुआनाया, शब्द मरे मन मार।

तिन पौ सागर तरना पौरी अगम अगोचर तू तनी सच्चा अलख अपार तू दाता सब मंगते इको देवनहार जिन्नी सेव्या तिन्नी सुख पाया गुरमति विचार इक नानो तुद एवे पांगा माया नाल प्यार गुर कै शब्द सलाही है अंतर प्रेम प्यार विन प्रीति पगत न होई विन सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुद सेव दे एक ताड़ी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार श्लोक महला पहला राती काल कटे दिन काल छिजे काया होए पराल वर्तन वर्त्या सर्व जंजाल पुलिया चुक गया तपताल अंधा चक चक

मन वसाई, अपने पाने को किन सुख पाया, अंधा अंध कमाई, बिख्या कदे ही रजे नाही, मूरख पुख न जाई, दूजे सबको लग विगुता, बिन सतगुरु बूझ न पाई, सतगुरु सेवे सो सुख पाए, जिसनो कृपा करे रजाई। श्लोक महला पहला, शर्म करम दो नानका, जे तन पल्ले पाए, सो तन मित्र न कांडी है, जित सिर चोटा खाए, जिनके पल्ले तन वसे, तिनका नाव फकीर, जिनके हृदय तू वसे, ते नर गुणी गहीर। महला पहला, दुखी दुनी सहेड़ी है, जाए तन लगे।

एक चसे में लख सबको नखे नथिया बक्से तोड़े नख वरना चेहना बहारा लेके बाद अलख क्यों कथिए क्यों आखिए।

अगर जने तानो कुल बंद पूजे प्राण होवे फिर कंद कहां ते आया कहां ओ जान जीवत मर्त रहे परवान हुक्मे बूझे तत पछाने तिहु प्रसाद गुरु ते जाने होंदा सरी अगनानक जान।

बलदी अंदर तेल दुबदा कत्या आया उठी खेल फिर उवत्या नानक सच्चे मेल सच्चे रत्या।

है मन भाया पाल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाना कन चरिया नथसी सतगुर बोलत बेर सच्चा रखसी अगन पखे पहाड़ अंदिन पक्षी फासा चुगे चोग हुक्मी छुटसी करता करे सोहोग कूड़ निखुटसी। श्लोक महला पहला कर में

उलट कमल अमृत भरिया यो मन कथो न जाए अजपा जाप ना विसरे आप जुगाद समाए सब सखियां पंचे मिले गुरमुख निज करवास शब्द खोज एवं कर लह।

सो कराश्री सो ऐसा राजा श्री नरहरि जाचे कालकुलाल ब्रह्मा चतुर्मुख दावणा जिन विश्व संसार राचीले जाके कर ईश्वर बावला जगत गुरु तत्सारसा ज्ञान पाखीले पाप पुण्य जाचे दांगिया।

सारंग रहाओ। सुरसरी सलल कृत बारुणी रे संत जन तर्क नहीं पानन। सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनंद। तर तार अपवित्र तरमानिय रे जैसे कागरा करत विचारंग। भगत भगौत लिखिए तिह ऊपरे पूजिए कर नमस्कार। मेरी जात कुट बांदला टोल टोवंता नितै बनारसी आस पासा। अब बिक्र प्रधान ते करें।

थापियो कहो रविदास पयो जल लेखो जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो। राग का नड़ा चौक दे महला चौथा।

अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। मेरा मन साध जना मिल हरिया, हों बल बल बल बल साध जना को मिल संगत पार उतरिया रहा। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, हम साध जना पद परिया, तन तन साध जिन हर प्रभ जानिया, मिल साधु पत उधरिया। मनुआ चले चले बहु बहु विद, मिल साधु वस गत करिया, जो जल तंत पसारे बगत ग्रस, मीना वसगत करिया। हर के संत संत पालनी के, मिल संत जना मल रहिया, हो मैं दुर्ग गया सबनी कर, जो साबुन कातर करिया। मस्तक लीलात लिखिया तुर ठाकुर, गुर सत गुर चरण उर धरिया, सब दालद दुख पंज प्रभ पाया।

किल बिख दैन पए खिन अंतर, टूट गए माया के फास। क्या हम किर्म क्या कर्म कमावे, मूरख मुग्ध

करी जगदीशर ते सब ऊंच हम नीच विख्यास हमरे अवगुण संग गुर मेटे जन नानक मेल लिए प्रभपात कानड़ा महला चौथा मेरे मन राम नाम।

रंग हर के रे कट कट राम रवियो गुपलाक हर के संत मिले हर प्रगटे उगर गए बिखिया के ताक संत जना की बहुत बहुत शोभा जिन उतारियो हर रस रसाक हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बछराक हर के संत जना

मात पिता बंद पहर साक कानड़ा महला चौथा। मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत हर हर वक्त माया गढ़वेड़ी गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत रहाओ। मिथ्या परम परम

जय राम रविया कट अंतर। अखिर राम रविया रंग प्रीत, हर के संत संत जननी के, जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लहे ना उतरे कबहू, हर हर जाए मिले हर प्रीत। हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर हर नाम दियो मुख औखद, जन नानक पतित पुनीत। कानड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम जगन्नाथ। कूमन केर परे बिख बिखिया, सतगुर काढ़ लिए दे हाथ। रहाओ स्वामी अभय निरंजन नरहर, तुम राख ले हो हम पापी पाथ। काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते, कास्ट लो तरे संग साथ। तुम वड पुरख बड अगम अगोचर, हम टूट रहे पाई नहीं हाथ। तू परे परे अपरंपर स्वामी, तू आपन जाने आप जगन्नाथ। अदृष्ट अगोचर नाम ते आए, सत्संगत मिल साधु पात। हर हर कथा सुनी मिल संगत, हर हर जप्यो अकथ कथकात। हमरे प्रभ जगदीश गुसाई, हम राख ले हो जगन्नाथ। जन नानक दास दास दासन को, प्रभ करो कृपा।

गुण गावे गुरमत हो बलबले हो बलबले जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल कानड़ा महला चौथा हर गुण गावो जगदीश एका जी की चै लख बीस जप हर हर शब्द जपीस हर हो किरपीस राव हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा हर जप जपे हर जप जपे जप जापो जगदीश तुमरे जन राम जपे ते उत्तम तिन को हो कुमकुमे कुमकुम जीस हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे सो करे जे तुद पावीस जन नानक अमृत पिया गुरमती तन तन तन तन तन गुरु साबीस कानड़ा महला चौथा पज रामो मन राम जिस रूप ना रेख वडाम सत संगत मिल पज राम बड हो पाग मताम रहाओ जित गृह मंदर हर होत जास तित तर अनदो अनद पज राम राम राम राम नाम गुण गावो हर प्रीतम उपदेश गुरु गुरु सतगुरा सुख होत हर हरे हरे तज राम राम राम सब शिष्ट तार हर तुम कृपा

महला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिल हर पादर बाट पग हर रस रस हर गाट हर हो लिखे लिलाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर पेख न पाइए हर ब्रह्म जोग हर पाइए सत संगति उपदेश गुरु गुरु संत जना खोल खोल कर

कटहर काट कानड़ा मेला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगा दो मत गुरमत हर प्रभ ला दो तुर हो लिखे लीला दो रहाओ बिख माया संत बहुचित है विकार सुख पाइए हर पज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधो ज्यो छोए पारस मनूर भय कंचन त्यो पतित जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधा दो ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता त्यो पापी संग तरे साध साध संगति गुर सतगुरु गुर साधो चार बरन चार

सुख पावे जप हर हर नाम निधान। उस्तत करे प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुरु सतगुरु भगवान। जिनके हृदय तू स्वामी ते सुख फल पावे ते तरे पव सिंध ते भगत हर जान। तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान। कानड़ा महला।

जाको सतगुर अपना राखे, सो जन हर रस रसना चाखे, कहो नानक गुर कीनी माया, हालत पलत मुख उजल भया, कानड़ा महला पंजवा, आराधो तुझे स्वामी अपने, उठत बैठत सोवत जागत, सास सास सास हर जपने।

कल युग में पाया जिन नाओ कानड़ा महला पंजवा कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना अनेक बार कर बंदन संतन हुआ चरण गोविंद जी के बसना रहाओ अनेक पाप कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर द्यावो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत में मन पर बोदा कृष्ण ना बूजी बहु रंग माया नाम लेत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जब पहे दयाल कहो नानक कहो छूटे जंजाल कानड़ा महला पंजवा ऐसी मांग गोविंद ते पहल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ पूजा चरना ठाकुर सरना सोई कुशल जो प्रभु

परम बिन से दुख डेरा, जा कै हृदय बसे गुर पैरा, साध संग रंग प्रभ त्याया, कहो नानक तिन पूरा पाया, कानड़ा महला पंजवा, भगत भगतन हूँ बन

अनेक स्वांग का छे पेख तारी, जैसो सा तैसो दृष्टारी, कहन कहावन सगल जंजार, नानक दास सच करनी सार। कानड़ा महला पंजवा, तेरो जन हर जत सुनत उमायो।

ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यों परदा लायो गुर प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाध समायो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन पेटक होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो कांटे रोग पे मन निर्मल।

नानक लिप्त नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पर आई जब ते सात संगत मोय पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो।

तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ, तुमरी आस परोसा तुमरा, तुमरा नाम हृदय ले धरना, तुमरो बल तुम संग सुहेले, जो जो कहो सोई सोई करना, तुमरी दया मया सुख पावो, हो कृपाल सा पौजल तरना, अबे दान नाम हर पायो, सिर डार्यो नानक संत चरना। कानड़ा महला पंजवा, साध सरन चरण चित लाया, सुपन की बात सुनी देखी, सुपना नाम मंत्र सतगुरु दृढ़ाया रहाओ। नै तृप्तानो राज जोबन तन, बहुर बहुर फिर ताया, सुख पाया तृष्णा सब बुझी है, सांस पाई गुन गाया, बिन बूझे पशु की न्याई, प्रम मोहे व्याप्यो माया, साध संग जम जेवरी काटी, नानक सहज समाया। कानड़ा महला पंजवा, हर के चरण हृदय गाए, शीतला सुख शांत मूरत, सिमर सिमर नित त्याय रहाओ, सगल आस हो

हर हर हर। मित कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नाथे, रिद पयंत सांत अमृता रस पी।

नारायण नरपत नमस्कार है। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहितार है रहाओ। कवन कवन कवन गुण कही है, अंत नहीं कछ पार है। लाख लाख लाख कहीं कोरे को है ऐसो विचार है। विषम विषम विषम ही भई है, लाल गुलाल रंगार है। कहो नानक संतन रस आई है।

ऊंच नीच सब एक समानो मुख बकनो मन मान रहाओ कट कट पूर रहे सुख सागर पै पंजन मेरे प्राण मने प्रगास पयो प्रमनास्यो मंत्र दियो गुरकान करत रहे कर्तज्ञ करुणा में अंतर जामी ज्ञान आठ पहर न

कहु नानक जन हर हर हर है, कत आवे कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर न जाए, तन मन गलत भय ते संगे, मोनी मोहे रही मोरी माए रहाओ, जय जय पै कहो बिरथा हो अपनी, तेऊ तेऊ गहे रहे अटकाए, अनिक पाप की एक है जाली, ताकि गंठ नहीं छोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है रहाओ, नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवारे, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विषम नाम हर तारे, अगम पदार्थ लाल अमोला, पयो प्राप्त गुर चरनारे, कहो नानक प्रभ पय कृपाला, मगन पय ही रे दरसारे, कानड़ा महला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, देखत सुनत सबन कै संगे, होरे काज बुरु कै फेरो, रहाओ, नाम बिना जे तो लपतायो, कछु नहीं नाही कचेरो, आगे दृष्ट आवत सब प्रगट, इहा मोयो परम अंधेरो, अटक्यो सुत बनता संग माया, देवन हार दतार बिसेरो।

पयो परगास अनद उजियारा तय समाद समायो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक ले लायो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जपती।

संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर पेटत नानक सुख पाया, कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मने सुख पाये, साध जना मिल हर जस गाये।

अंग संग काया संत सर्तन शरण गही पूरन अविनाशी आन उपाव थकत नहीं करसन कर गह लिए नानक जन अपने अंध कोर सागर नहीं मरसन कानड़ा महला पंजवा पोकत कपट खपट खल गरजत मरजत मीच अनक बरिया रहाओ अहंग मत अनरत कुमित हित प्रीतम देखत परमत लाख गरिया अनित व्यवहार आचार विधहीनत मम मद मात कोप जरिया करुण कृपाल गोपाल दीन बंद नानक उदर शरण परिया कानड़ा महला पंजवा जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही आन रहाओ गोविंद त्याग आन लागे अमृतो डार पूम पागे दिखे रस्यों आस्कत मूड़े काहे सुखमान काम क्रोध लोभ व्याप्यो जन्म ही की खान पतित पावन सरन आयो उदर नानक जान कानड़ा महला पंजवा अविलोको राम को मुखार बिंद खोजत खोजत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ चरण कमल हृदय तार उतरिया दुख मंद राज तन परवार मेरे सर्व सो गोविंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद कानड़ा महला पंजवा कर पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद प्रभ पूजो नाम अराध गुर सतगुर चरनी लाग हर पावो मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाओ अनक पूजा मैं बहुविध खोजी सा पूजा जे हर पावास माटी की ए पुत्री जोरी क्या ए कर्म कमास प्रभ बां पकड़ जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास अवर ओट में कोई न सूजे एक हर की ओट में आस क्या दीन करे अरदास जो सब कट प्रभु ने

जगत उदाहरण नाम प्रह तेरे, नवनिध नाम निदान हर केरे, हर रंग रंग रंग अनुपेरे, काहे रे मन मोहे मगनेरे, नैनो देख साब दर तेरे, सो पावे जिस लिखत लिले रे, रहाओ सेवो साध संत चरनेरे, बाँचो तूर पवित्र करे रे, अरसठ मज्जन मैल कटे रे, साफ साफ त्यावो मुख नहीं मोरे, किछ संग न चाले।

बरना साकू एक फुलेर है, दर्शन प्यास बहुत मन मेर है, मिल नानक देव जगत गुर केर है। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन पर।

मान मोह त्याग छोड़ो तौ नानक हर जियो पेटना। कानड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूरन सब संगा। रहाओ बरत नेम तीरथ सैत गंगा जल हेवत पूख अर नंगा पूजा चार करत मेलंगा चकर करम तिलक खाटंगा दर्शन पेटे बिन सतसंगा हठ निग्रह अत रहत बिटंगा हौ रोग व्यापे चुके न पंगा काम क्रोध अत कृष्ण जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुरु।

जो संत वेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंकार राव। जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सो जन उदरे जिसे उदारो आप बिनस जाए।

सर्व समाए रसक रसक नानक गुण बोले कानड़ा महला पंजवा गोविंद ठाकुर मिलन दुराई परमित रूप अगम अगोचर रहो सर्व समाय रहाओ कहन पवन नाही पायो पायो अनेक उकत चतुराई जतन जतन अनेक उपावरे तो मिलियो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निध जन नानक संत रे नाई कानड़ा महला पन्नवा माई सिमरत राम राम राम।

नानक सदा सदा कुर्बान कानड़ा मेला पंजवा करत करत चर्च चर्च चरचरी योग ध्यान पेख ज्ञान फिरत फिरत

मन गुरमत नाम समावे गो, नाम सुने नामो मन भावे, नामे ही तृप्तावे गो। कनक कनक पहरे बहु कंगना, कापर पात बनावे गो। नाम बिना सब फीक फिकाने, जन्म मरे फिर आवे गो। माया पटल पटल है भारी, कर कूमन केर कुलावे गो। पाप विकार मनूर सब भारे, विख दुत्तर करे।

अज्ञान लाए सवालिया, गुर ज्ञान लाए जगावे गो, नानक पाणे अपने ज्यो पावे तिवे चलावे गो। कानड़ा महला चौथा, जप मन हर हर नाम तरावे गो, जो जो जपे

मिल सतगुरु नाम त्यावे गो। जन्म जन्म की हो मैं मल लागी, मिल संगत मल लह जावे गो। ज्यो लोहा तरयो संग कास्ट लग, शब्द गुरु हर पावे गो। संगत संत मिलो सत्संगत, मिल संगत हर रस आवे गो। बिन संगत

सत्कर्म करे अभिमानी कड पानी चीकड़ पावे गो भगत जना के हर रखवारे जन हर रस मीठ लगावे गो खिन खिन नाम दे वड्याई सतगुरु उपदेश समावे गो भगत जना को सदा निव रही है।

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो जो जो भगत होए सो पूजो परमन परम चुकावे गो जात न जात देख मत परमो सुख जनक पगी।

सतगुर बचन बचन है सतगुर पादर मुक्त जनावे गो शासन सास सास बल पाई है ने शासन नाम से आवे गो गुर प्रसादी हो मैं बूझे तो गुरमत नाम समावे गो सतगुर दाता।

सतगुर महापुरुष है पारस, जो लागे सो फल पावै गो। ज्यो गुरु उपदेश तरे प्रहलादा, गुरु सेवक पैज रखावै गो। सतगुर बचन बचन है नीको, गुरु बचनी अमृत पावै गो। ज्यो अमरीत अमरा पद पाए, सतगुर मुख बचन त्यावै गो। सतगुर शरण शरण।

हर हर हर हर हर सर सेवे तीन दरगे मान दिवावे गो गुरमत गुरमत गुरमत त्यावे हर गल मिल मेल मिलावे गो गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचय नाम दियावे गो हर हर रूप हर रूपो होवे हर जन को पूज करावे गो साकत नर सतगुरु।

लग संगत नाम त्यावे गो नानक राख राख प्रभ मेरे सत संगत राख समावे गो छक्का पहला।

बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित पजै नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवे हर अम्यो पीवे, जन्म मरना पा गए, सत्संग पाये हर से आये, बहुर दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख विदाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन पूर बांचे, हर दर सहज

नित दरिया परवान सोई आया जप ताप संजम हर हर निरंजन गोविंद तन संग चाले बिनवंत नानक कर दया दीजै हर रतन बांधो पाले मंगल चार चोज आनंदा कर कृपा मिले परमा।

गोविंद गोविंद गुरमत ध्याये सादर गै पाये मान। गोविंद गोविंद गोविंद जप मुख उजला प्रधान। नानक गुरु गोविंद हर जित मिल हर पाया ना।

सत्संग सतगुरु तन तनो तन तन तनो जित मिल हर बुलग बुलोगिया सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे हर बोलत सब पाप लहो गया। श्लोक महला चौथा हर हर हर हर नाम है गुरुमुख पावे कोय हौ मैं ममता नाथ होए दुर्मत कड्डे धोए नानक अंधिन गुण उचरे जिनको तुर लिखिया होए। महला चौथा हर आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए हर आपे आप वरसदा हर जेवड अवर ना कोए जो हर प्रभ पावे सो थिए जो हर प्रभ करे सो होए कीमत किने ना पाया बेअंत प्रभु हर सोए नानक गुरमुख हर सा लाहिया तन मन शीतल होए। पौड़ी सब जोत तेरी जग जीवना तू कट कट हर रंग रंगना सब त्यावे तुद मेरे प्रीतमा तू सत सत पुरख निरंजना एक दाता सब जगत पिखारिया हर जाते सब मंग मंगना सेवक ठाकर सब तू है तू है गुरमति हर चंग चंगना सब कहो मुखो रिखी केस हरे जित पावे सब फल फलना। श्लोक महला चौथा हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान जो इच्छे सो फल पाए सी गुर सब दी लगे ध्यान किल विख पाप सब कटी है हों मैं चुके गुमान गुरमुख कमल विगस्या सब आत्म ब्रह्म।

गुरु मेले मुख गुरु मुख हर समझावनी सब बोलो राम रमो श्री राम रमो जित दालद दुख पुख सब ले जावनी। श्लोक महला चौथा हर हर अमृत नाम रस हर अमृत हर उर्धार विच संगत हर प्रभु वर्तदा बुज्जो शब्द विचार। मन हर हर नाम से आया दिखाऊ मैं कग्गी मार जिन हर हर नाम न चेते हो तिन जुए जन्म सबहार गुरु तुफे हर

महला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विच कल जुग करनी सार मत गुरमत कीरत पाई है हर नामा हर उरहार वड पागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर पंडार बिन नावे जे कर्म कमावणे नित हो मैं होए खुआर जल हस्ती मलना वाली है फिर भी फिर पावे चार हर मेलो सतगुरु दया कर मन वसै एकंकार जिन गुरमुख सुन हर

गुरुमति हर निरंकारा, सब चवो मुखो जगन्नाथ, जगन्नाथ जग जीवनो जित पव जल पार उतारा। श्लोक महला चौथा, हमरी जेबा एक प्रभ, हर के गुण अगम अथाहा। हम क्यों कर जपे आणिया, हर तुम बड अगम अगाहा। हर देव प्रभु मत ऊतमा, गुर सत गुर के पग पाहा। सत संगत हर मेर प्रभ, हम पापी संग तराहा।

जिस सतगुर पुरख प्रभ कौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समौला। श्लोक महला चौथा। सुतिया हर प्रभ चेत मन हर सहज समाज समाए जन

पंचे शब्द वजे मत गुरमत बड़ पागी अनहद वजिया आनंद मूल राम सब देखिया गुर सब दी गोविंद गजिया आद जुगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ पजिया हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब तन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया। श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर भरे वाहन जिना सतगुर मन्या जन नानक वड पागल हन। महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन न जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लहो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किछ वखर होए सो वर्णिय तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चटसाल है जिस हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सतगुरु जित मिल हर लेखा लिखा। श्लोक मैला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिए सतगुर भाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन

हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए। जिन सुर मस्तक लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए। तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए। नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख ले जाए। पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा। जिना सतगुरु मेरा प्यारा देखिया तिनको मिलिया मेरा सतगुरु। जिनको तुर मस्तक लेखिया हर अगम दियाया गुरमति। तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया गुर बचन से आया जिना अगम हर। ते ठाकुर सेवक रल एकिया सब कहो मुखो नर नर हरे। नर नर हरे नर नर हरे हर लाहा हर भगत विशेखिया। श्लोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे। रम रामो राम रमीत कट कट आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत। हर निकट वसे जग जीवना परगास कियो गुरमीत। हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले जिन लिखिया तुर हर प्रीत। जन नानक नाम से आया गुर बचन जप्यो मन चीत। महला चौथा हर प्रभ सज्जन लोड़ लो पाग वसै वड पाग। गुर पूरे देखा लिया नानक हर लिवलाग। पौड़ी तन तन सुहावी सफल करी।

मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजाने हर मेल दिखाए आप हर गुरबचनी नाम समाने तिन विटो नानक वारिया जो जप दे हर निर्वाणी श्लोक महला चौथा हर प्रभ रत्ते लोयना ज्ञान अंजन गुरुदे मैं प्रभ सज्जन पाया जन नानक सहज मिले महला चौथा गुरुमुख अंतर सांत है।

पौड़ी। तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे वसगत कीता, एक मनमुख कर हारायन एक ना मेल गुरु तिना जीता। हर ऊतम

वो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जिन जगत उपाय सब वस कीता। श्लोक महला चौथा। मन अंतर हो मैं रोग है परम फूले मन मुख दुर्जना। नानक रोग बजाए मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा। मन तन ताम सगारवा जा देखा हर नैने। नानक सो प्रभ मैं मिले।

कट कट अंतर रव रहा जप्यो जन कोई सगल जपो गोपाल गुण प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा गुरुमुख मिले से सज्जना हर प्रभ पाया रंग जन नानक नाम सलाए तू लुड लुड दर गए।

खुद राज कानड़ा बाणी नाम देव जीओ की इको ओंकार सत गुरु प्रसाद। ऐसो राम राय अंतर जामी जैसे दर्पण माहे बदन परवानी रहाओ बसे कटाकट।

रामा राम राम मैं अंत न पाया, हम बार कृत पारे तुमरे, तू बड़ पुरुष पिता मेरा माया रहाओ। हर के नाम असंख्य अगम है, अगम अगम हर राम।

जन कौ कृपा करो मधुसूदन, हर देवो नाम जपाया मैं मूरख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरुमुख पाया कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहा, गुर के पग सिमरो दिन राती मन हर हर हर बसिया, हर हर हर कीरत जग सारी सस चंदन जस तसिया, हर जन हर हर हर लिव लाई सब साकत खोज पया, ज्यो किरत संजोग चलियो नर निंदक पग नागन छो जलिया, जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया, कहां भया दैत करी बखीली सब कर कर चर परिया, जे तेजी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया, हर जन हर हर हर प्रभ राखे जन नानक शरण पया कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुर उपदेश हर नाम ते आयो, सब किल बिख दुख लाथे रहाओ, रसना एक जस दाए न साके बहु की जय बहु रसनते, बार बार खिन पल सब गावे गुण कह ना सके प्रभु।

कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिनको क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्थ आरापो, कोई मिले प्रभु मिलते, हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम कुछ कर कर बरनते, हमरी मत वसगत प्रभु सुमरे, जन नानक के प्रभु समरथे, कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप हर गुण अतत सुन सही, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर सही, रहाओ, सो हर हर नाम से आवे हर जन, जिस बद भाग मत है, जह दरगे प्रभ लेखा मांगे, तह छुटे नाम से आए थई, हमरे दोख बहुत जन्म जन्म के, दुखों में मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल ना वाए, सब किल बिख पाप गथई, जन के रिद अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम पज थई, जह अंति अवसर आए बनत है, तह राखे नाम साथई, जन तेरा जप गावे हर हर, प्रभ हर जपियो जगन्नाथ है, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पात्र रख बुढ़ थई, कल्याण महला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रभ जाने, और कोई निंद करे हर जन की।

हर सेवा से काल जो न साके चरनी आई पवे हर जाने जाको राख ले मेरा स्वामी ताको सुमत दे पहकाने ताको कोई अपर न साके जाकी भगत मेरा प्रभु माने हर के चोज विदान देख जन जो खोटा खरा इक निमक पछाने ताते जन को आनंद भया है रिद सुध मिले खोटे पछताने तुम हर दासे समरथ स्वामी इक मांगो तुझ पासो हर दाने जन नानक को हर कृपा कर दीजे सद बसे हृदय मोहे हर चराने कल्याण महला चौथा प्रभ की जय कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे हों तुमरी करो नित आस प्रभ मुहि कब गल्लावेंगे रहाओ हम बारिक मुग्ध ज्ञान पिता समझावेंगे सुत खिन खिन फूल बिगाड़ जगत

जगदी सर चरण सरण जो आए ते जन पवनित पार परे भगत जना की तेज हर रास है जन नानक आप हर

सफल सफल सफल दर्शरे परस परस गुण गाये नानक तत् तत् सो मिलिए हीरे हीर विदाई।

सिद्ध मुन इंद्रा भगत दान जस मंगी जोग ज्ञान ध्यान सेख ना गए सगल जपे तरंगी कहो नानक संतन बलिहार है जो प्रभु के सत्संगी कल्याण महला।

योग जुगत ज्ञान पुगत सुरत शब्द तत बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन विद ताकी कहा करो तर्क ज्ञान ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे जरो रहाओ विष्ण महेश सिद्ध मुन इंद्रा कै दर शरण परो काहू पह राज काहू पह सुरगा कोट मदे मुक्त कहो कहो नानक नाम रस पाये साधु चरण गहो कल्याण महला पंजवा प्राण पथ दयाल पुरख प्रभ सखे गर्भ जोन कल काल जाल दुख विनाशन हर रखे।

गोविंद नानक आसरो कल्याण महला पंजवा। मन तन जापिए भगवान गुर पूरे सो प्रसन्न भये, सदा सुख कल्याण रहाओ सर्व कार्य सिद्ध भये। गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु।

सुरत मत चतुराई शोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण कल्याण महला पंजवा हर चरण सरन कल्याण करन प्रभ नाम पतित पावनो रहाओ साध संग जपनि संग जम काल तिसना खावनो मुक्त जुगत अनेक सुख हर भगत लवै ना लावनो प्रभ दर्श लुभत दास नानक बहुड़ जोन ना तावनो कल्याण महला चौथा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुरु प्रसाद रामा राम रामो।

जय। हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिल दी जय। राम नाम तुल और ना।

जन हर भगवान दिखी जाए, साकत सूत बहु गुरजी भरिया, क्यों कर तान तनी जाए, संत सूत किस मिकते नाही, साकत संग ना की जाए, सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवि जाए, अंतर रतन जवे हर मानक, गुर कृपा ते ली जाए, मेरा ठाकुर वड़ा वड़ा है।

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय। जो जल मीन जलन जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय। माँ अपाग अपाग है जिनके तिन साधु तूर न पी जय। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे दंड धर्म राय का दी जय। सब तीर्थ बरत जग पुन किए हिवे गाल गाल तन छीजे। अतुल्ला तोल राम नाम है गुरमत को पूजे ना तोल तुली जय। तब गुण ब्रह्म ब्रह्म तू

मन तन अर्थ करो सब आ गए रस गुरमते ज्ञान दृढ़ी जय रहा ब्रह्म नाम गुण साफ करोवर नित चुन चुन पूज करी जय आत्म देव देव है आत्म रस लागे पूज करी जय।

सिर दी जय। नाम बिना नचते नर देखो तिन पस पस नाच वडी जय। साकत नर अंकारी कही है बिन नावे त्रिग जीवी जय। जब लग सांस सांस मन अंतर तप बेगल शरण करी जय। नानक कृपा कृपा कर धारो मैं साधु चरण पखी जय। कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण धुवी जय। किल विख दहन हो खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा की जय। रहाओ मंगत जन दीन करे दर ठाडे हत परसन को दान दी जय। त्राहे त्राहे शरण प्रव्याए मोको गुरमत नाम दृढ़ी जय। काम क्रोध नगर में सबला नित उठ उठ जूझ करी जय। अंगीकार करो रख ले वो गुर पूरा कार्ड कटी जय। अंतर अगन

काटे सुख सवी जय जो सूरज किरण रविया सर्ब ठाई सब कट कट राम रवि जय साधु साध मिले रस पावे तप निज पर बैठिया पी जय जन को प्रीत लगी गुर सेती जो चकवी देख सुरी जय निरखत निरखत रैन सब निरखी मुख का दे अमृत पी जय साकत स्वान कहिए बहु लोभी बहु दुर्मत मैल भरी जय आपन स्वाय करे बहु बाता तिना का विसाहु क्या की जय साधु साध शरण मिल संगत जित हर अस्ताड कदी जय पर उपकार बोले बहु गुनिया मुख संत भगत हर दी जय तू अगम दयाल दया पत दाता सब दया तार रख ली जय सर्व जी जग जीवन एको नानक प्रतपाल करी जय कल्याण महला चौथा रामा हम दासन दास करी जय जब लग सास होए मन अंतर साधु तूर कवि जय रहाओ शंकर नारद शेख नाग मुन पूर साधु की लोची जय पवन पवन पवित्र

करम राय की कान चुकावे, दिख दुबदा काड कडी जाए, परम सुके बहु उबसुक कही है, मिल साधु संग हरी जाए, कांते बिलम

जेवड भाग होए अपनी का ता गुरमत नाम दृढ़ी जय सब माया मोह बिकम जग करिए सहजे हर रस पी जय माया माया के जो अधिकारी।

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राज परवाती विपास महला पहला चौक दे कर पहला नाए तेरे तरना नाए पत पूज नाओ तेरा गहना मत मकसूद नाए तेरे नाओ मन्ने सब कोए बिन नामे पत कब होना होए अवर सियाण तो सगली पाज जय बख्शे तै पूरा पाज रहाओ नाओ तेरा पान नाओ दीवान नाओ तेरा लश्कर नाओ सुल्तान नाए तेरे मान महत परवान तेरी नदरी कर्म पवे निशान।

तेरा नाम दारू अवर नास्त करणहार अपार रहाओ। पाताल पुरिया एक पार होवे लाख करोड़, तेरे लाल कीमत ता पवे जा सिरे होवे होर। दुखा ते सुख उपजे सुखी होवे दुख, जित मुख तू सालाई है सित मुख कैसी भूख। नानक मूर्ख एक तू हवर पला सहसार, जित तन नाम न उपजे से तन होए खुआर। प्रभाती महला पहला जय कारण वेद ब्रह्म उचरे शंकर छोड़ी माया। जय कारण सिद्ध पै उदासी देवी मर्म न पाया। बाबा मन साचा मुख साचा कहिए करिए साचा होई। दुश्मन दुख न आवे नेड़े हर मत पावे कोई। रहाओ अगन बिंब पवने की बाणी तीन नाम के दासा। ते तस्कर जो नाम ना लेवे वासे कोट पंचासा। जे को एक करे चंगियाई मन चित बहुत बसावे। एते गुण एतियां चंगियाईयां दे न पछोतावे। तुध सलान तिन तन पले नानक का तन सोई। जे को जियो कहे ओना को जम की तलब न होई। प्रभाती महला पहला जा कह रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा। सतगुरु मिले निरंजन पाया तेरे नाम है निवासा। औदू सहजे तत विचार जाते फिर ना आवो सहसार। रहाओ जा कह कर्म नाही धर्म नाही नाही सुतमाला। शिव ज्योत कन्नो बुद्ध पाई सतगुरु रखवाला। जा कह बरत नाही नेम नाही नाही बकबाई। गत अवगत की चिंत नाही सतगुरु फुरमाई। जा कह आस नाही निराश नाही चित सुरख समझाई। संत को परम संत मिलिया नानका बुद्ध पाई। प्रभाती महला पहला कांका तहया दर परवान दिख अमृत दोए समकर जान। क्या कही है सर्वे रहा समाए जो किछ वर्त है।

सोजन जान साची दरगे पावे मान कहना सुनना अकथ पर जाए कफनी बदनी नानक जल जाए प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अष्ट तीरथ संग गहे गुरु उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लहे गुरु समान।

कर्म संतोष कियो कर, ऐसा मांगो दान क्षमा तीरज कर गऊ लवेरी, सहजे बछरा खीर पिए सिफत कर्म का कपड़ा मांगो, हर गुण नानक रवत रहे प्रभाती महला पहला, आवत किने आवाख्या जावत क्यों राख्या जाए, जिससे हुआ सोई पर जाने जा उस ही माए समाए, तू है वाहो तेरी रजाए, जो कुछ करे सोई पर होए बा, अगर न करना जाए रहा, जैसे हर हट की माला टिंड लगत है, एक सखनी होर फेर परियत है, तैसो ही यो खेल खत्म का, जो उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी नजर परगासी।

पूरा निर्वाण जिससे हुआ सोई कर मान्या, नानक गिर ही उदासी सो करवाण। प्रभाती महला पहला दिष्ट बिकारी बंधन बांधे, हों तिसके बल जाई पाप पुन की सार न जाने, फूला फिरे अजाई। बोलो सत नाम करतार, सुन बहुर ना आवन।

करवाण ताको समझावन जाये जे को भूला होई। आते खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई नाव पर भाते सब त्याये छोड़ो दुनी परीता प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता परवाती महला पहला मन माया मन ताया मन पंखी आकाश तस्कर शब्द निवारिया मगर उठा साबास जा तू राखे राख ले साबत हो वैरास ऐसा नाम रतन निध मेरे गुरमत देह लगो पग तेरे रहाओ मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार कट कट एक वखाणी है कहू न देखिया जाए फोटो पूठो रालिए बिन नावे पट जाए जा तू मेले ता मिल रहा जा तेरी होए रजाए जात जन्म ने पूछिए सब कर ले हो बताए सा जात सा पत है जे कर्म कमाए जन्म मरम दुख काटिए नानक छूट सुनाए प्रभाती महला पहला जागत बिगसे मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवे मनसा जाए पुरजी ताणी किछ ना बसाए जागस जीवन जागन हारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो न बूझे अंग न सूझे ओंदी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेश्वर करमी मिले वडाई दिन दिन आवे तिल तिल चीजे माया मोह।

दुख पाए, शब्द मिले से सूचा चारी, साची दरगह माने, अंग दिन नाम रतन लिव लागे, जुग जुग साच समाने, सगले कर्म कर्म सुख संजम, जप तप तीरथ शब्द वसे, नानक सतगुरु मिले मिलाया, दुख पराचित काल नसे, करवाती महला पहला, संता की रेण साध जन संगत, हर की रत कर तारी, कहा करे बपुरा जन बरते, गुरमुख हृदय मुरारी, जल जाओ जीवन नाम बिना, हर जप जाप जपो जप माली, गुरमुख आवे साध मना रहाओ, गुर उपदेश साथ सुख जाको, क्या किस उपमा कही है, लाल जवेहर रत्न पदार्थ खोजत गुरमुख लही है, चीने ज्ञान त्यान तम साचो, एक शब्द लिवलावे, निरालंब निरहार नहीं केवल, निरपौता लीलावे, सायर सपत करे जल निर्मल, उल्टी नाम चरावे, बाहर जा तो ठाक रहावे, गुरमुख से समावे, सो गिर ही सो दास उदासी, जिन गुरमुख आप पछानिया, नानक कहे अवर नहीं दूजा, साथ शब्द मन मानिया, राज करवाती महला तीजा, चौपदे इको अंकार, सतगुर प्रसाद, गुरमुख बिरला कोई बूझे, सब दे रहा समाय, नाम रते सदा सुख पावे, साथ रहे लिवलाई, हर हर नाम जपो जन भाई, गुर प्रसाद मन अस्थिर होवे, हम दिन हर रस रहा अघाई रहाओ, हम दिन पगत करो दिन राती, इस जुग का लाहा भाई, सदा जन निर्मल मैल न लागे, सत नाम सितलाई, सुख सिगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई, अकुट पंडार करे कदे तोट ना आवे, सदा हर सेवो भाई, आपे करता जिसनो देवे, तिस वसे मन आई, नानक नाम ते आए सदा तू, सतगुर दिया दिखाई, करवाती महला तीजा, निर्गुण यारे को बख्श ले स्वामी, आपे लेहो मिलाई, तू बेअंत तेरा अंत ना पाया, सब दे देहो बुझाई, हर जियो तुद विट्टो बल जाई, तन मन अर्पी तुद आगे राखो, सदा रहा शरणाई रहाओ, अपने पाने विच सदा रख स्वामी, हर नामो दे वड्याई, पूरे गुर ते पाना जापे, हम दिन सहज समाई, तेरे पाने पगत जे तुद भावे, आपे बख्श मिलाई, तेरे पाने सदा सुख पाया, गुर तृष्णा अग्न बुझाई, जो तू करे सो होवे करते, अवर न करना जाई, नानक नावे जेवड अवर न दाता, पूरे गुर ते पाई, करवाती महला तीजा, गुरमुख हर साल आया जिन्ना, तीन साल आए हर जाता, विच्चों परम गया है दूजा, गुर कै शब्द पछाता, हर जियो तू मेरा इक सोई, तुद जपी तुद ऐसा लाही, गत मत तुझते होई रहाओ, गुरमुख सालान से साध पाए।

कोई गुर के सबद कमल पर गासिया सौ में गुरमत खोई सब नाम एक को सच वरते बिरला बूझे कोई गुरमति मन निर्मल हुआ अमृत तत्व खाने हर का नाम सदा मन वसया विच मन ही मन माने सद बलिहारी गुर अपने विटो जित आत्म राम पछाने मानस जन्म सतगुरु न सेविया बिरथा जन्म गवाया नजर करे ता सतगुरु मेले सहजे सहज समाया नानक नाम मिले वडियाई पूरे पाग से आया प्रभाती महला तीजा आपे पांत बनाए बहुरंगी शिष्ट उपाय प्रभ खेल किया कर कर वेखे करे कराए सर्व जियानो रिजक दिया कली काल में रव्या राम कट कट पूर रहा प्रभे को गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहा गुप्ता नाम वर्ते विच पल जुग कट कट हर पर पूर रहा नाम रतन तिना हृदय प्रगटिया जो गुर सरनाई पग पया इंद्री पंच पंचे वस आने खिमा संतोष गुरमत पावे सो तन तन हर जनवड पूरा जो कह बैराग हर गुण गावे गुर ते मोह फेरे जे कोई गुर का कहया ना चित धरे कर आचार बहु संतोषं चे जो किछ करे सो नरक पड़े एको शब्द एको प्रभु वर्ते सब एक से उत्पत्तल है नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रले प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना सालाए पूरा पाग हो गए मुख मस्तक सदा हर के गुण गाए रहाओ अमृत नाम भोजन हर दे कोट मदे कोई विरला ले जिसनो अपनी नजर करे गुर के चरण मन माए वसाए दुख अनेरा अंदरों जाए आपे फाचा ले मिलाए गुर की बाणी सो लाए प्यार एथे ओथे एव आधार आपे देवे सृजनहार सच्चा ननाए अपना भाणा सोई तगत सुगड़ सुजाना नानक तिसके सब कुर्बाना प्रभाती महला चौथा विपास एक ओंकार सतगुरु प्रसाद रसक रसक गुण गावे गुरमत लिव उन मन नाम लगान अमृत रस पिया गुर शब्दी हम नाम विटो कुर्बान हमरे जग जीवन हर प्राण हर उत्तम रिद अंतर भायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर नाम बखान कित विद क्यों पाये प्रभ अपना मोको करो उपदेश हर दान सत संगत में हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान वड्डे पाग सत संगत पाई गुर सतगुर परस भगवान गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान जन नानक को गुर कृपा भारी हर नाम दियो खिन गान।

महला चौथा। उगवे सूर गुरमुखर बोले सब रैन सना ले हर गाल, हमरे प्रभु हम लोच लगाई हम करें प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु तूर जवाल, हर हर नाम दृढ़ायो गुरमीठा, गुरपद चारे हम बाल। रहाओ साकत को दिन रैन भारी, मुर्खा थे माया जाल। खिन पल हर प्रभु हृदय न वस्यो, ऋण बादे बहु विदबाल। सत्संगत मिल मत बुद पाई, हौ छूटे ममता जाल। हर नामा हर मीठ लगाना, गुर की ये शब्द निहाल। हम बारिक गुर अगम गुसाई, गुर कर कृपा प्रतपाल। दिख पौ जल डुबदे काढ लियो प्रभ, गुरु नानक बाल गोपाल। प्रभाती महला चौथा। एक खिन हर प्रभ कृपा धारी, गुण गाए रस प्रतीक। गावत सुनत बहु कहे मुक्ते, जिना गुरमुख खिन हर पीक। मेरे मन हर हर राम नाम रसतीक, गुरमुख नाम शीतल जल पाया। हर हर नाम पिया रस जीक। रहाओ जिन हर हृदय प्रीत लगानी, तिना मस्तक उजल टीक। हर जन शोभा सब जग ऊपर, ज्यो विच उडवा सस टीक। जिन हर हृदय नाम न वस्यो, तिन सब कारज फीक। जैसे सिगार करे देह मानुक, नाम बिना नकटे नकीक। कट कट गुनैया रमत राम राए, सब वर्ते सब मैं एक। जन नानक को हर कृपा धारी, गुर बचन ते आयो करी नीक। प्रभाती महला चौथा। अगम दयाल कृपा प्रभधारी, मुख हर हर नाम हम कहे। पतित पावन हर नाम ध्यायो, सब किलबिक पाप लहे। जप मन राम नाम रव रहे, दीन दयाल दुख पंजन गायो। गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ। काया नगर नगर हर बसयो, मत गुरमत हर हर सहे। शरीर सरोवर नाम हर प्रगत्यो, कर मंदर हर प्रभ लहे। जो नर परम परम उद्याने, ते साकत मूड मुहे। जो मृग ना भी बसे बास बसना, प्रम प्रम्यो चार गहे। तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ, मत देवो हर प्रभ लहे। जन नानक को गुर हाथ सिर तरयो, हर राम नाम रव रहे। प्रभाती महला चौथा। मन लागी प्रीत राम नाम हर, हर जप्यो हर प्रभु वडपा। सतगुरु बचन सुखाने हीरे, हर तारी हर प्रभु कृपा। मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा। हर हर दान दियो गुरु पूरे, हर नामा मन तन बसा। रहाओ काया नगर वस्यो कर मंदर, जप शोभा गुरमुख करपफा। हलत पलत जन पै सुहेले, मुख उजल गुरमुख तरफा। अनपौ हर हर हर लिव लागी, हर उर्धार्यो गुर निमखफा। कोट कोट के दोख सब जन के, हर दूर किए इक पलफा। तुमरे जन तुम ही ते जाने, तब जान्यो जन से मुखफा। हर हर आप करो हर जन में, जन नानक हर प्रभ इकफा। प्रभाती महला चौथा। गुर सत गुर नाम दृढ़ायो हर हर, हम मोए जीवे हर जपबा। तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा, दिख दुख दे बाह दे कडबा। जप मन राम नाम अर्धांबा, उपजंप उपाय न पाये कतहु। गुरपूरे हर प्रभ लाबा। रहाओ राम नाम रस राम रसायन, रस पिया गुरमत रसदा। लो मनूर कंचन मिल संगत, हर उर्धार्यो गुर हरवा। हौ मैं

बल जाई। अगम अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाये। लाहा खाट हुई है तनवंता अपना प्रभु ध्याई है। आठ पैर पार ब्रह्म त्याई सदा सदा गुण गाया। कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया। परवाती महला पंजवा सिमरत नाम किल बिकसग नाते सच नाम गुर दीनी रासे। प्रभु की दरगे शोभा वंते सेवक सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोष सब बिनसें।

पाए भगत हर स्यों मन माना, सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगे अतोले, सदा सदा प्रभ गुण निध गाये, कहो नानक वड पागी पाये। प्रभाती महला पंजवा, से तनवंत सोई सच साहा, हर की दरगे नाम विसाहा, हर हर नाम जपो मन मीत, गुरपुरा पाये वड पागी।

नानक गुरमुख उतरे पार प्रभाती महला पंजवा गुरपुरा पूरी तांकी कला गुर का शब्द सदा सद अटला।

गुरपुरा पाइये वडबागी दर्शन को जाइये पुरबान रहाओ किलगित में ते शब्द संतोख नाम आराधन हो आजोग साध संग हो आप्रगास चरण कमल मन माए निवास जिनकी आकिन लिया राख प्रभु पूरा अनाथ का नाथ जिसे निवाजे कृपा धार पूरन कर्मता के आचार गुण गावे नित नित नित नवे लख चौरासी जोन न भवे इहा उहा चरण पुजारे मुख उजल साचे दरबारे जिस मस्तक गुर तरिया हाथ ओट मदे को विरला दास जल तल मैयल पेखे पर पूर नानक उदरस किस जन की दूर करवाती मैला पंजवा कुर्बान जाए गुरपुरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने।

गुर गुर करत सदा सुख पाया, दीन दयाल पहल कृपाला, अपना नाम आप जपाया रहाओ। संत संगत मिल पया प्रगास, हर हर जपत पूरन भैयास, सर्व कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे।

राम राम राम राम जाप, कल कलेश लोभ मोह बिन सुजाए अहंताप। रहाओ आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित्र जाहे पाप। नानक बालक कछु ना जाने, राखन को प्रभु माई बाप। प्रभाती महला पंजवा, चरण कमल शरण टेक। ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक। रहाओ प्राण आधार दुख बिगार, दैनहार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखनहार, मन आराध प्रभु मेक। संत ऋण करो मज्जन, नानक पावे सुख अनेक।

सेवा सुरत शब्द विचार, जप तप संयम हो मैं मार, जीवन मुक्त जा शब्द सुनाए, सच्ची रहत सच्चा सुख पाए, सुख दाता दुख नेता हारा, अवर न सूजस भी जी कारा, तन मन तन हर आगे राख्या, नानक कहे महारस्या क्या, प्रभाती महला पहला, निवली करम पुरंगम पाथी, रेचक पूरक कुंभ करे, बिन सतगुर किछ सोजी नाही, पर में पूला बूड मरे, अंदा परया पर कोवे, अंतर की मलक दे ना लहे, नाम बिना फोकट सब कर्मा, ज्यों बाजी गर परम पुले, खट कर्म नाम निरंजन सोई, तू गुण सागर अवगुण मोही रहाओ, माया तंदा तावनी, दुर्मत्कार विकार।

उत्पाद ओ परम पूले मरो न कोई सतगुरु से सदा सुखोई बिन सतगुरु मुक्त किने न पाई आवे जाए मरे मर जाई तो शरीर है त्रै गुण तात किसनो व्यापे शोक संता।

नदर पछाण प्रभाती महला पहला दक्षिणी गौतम तपा अहल्या स्त्री किस देख इंद्र लोभ।

क्यों पयाल जाए क्यों चलिए जे बल रूप पछाने राजा जन्म एजादे मती ब्रज व्यास पराया तिनका जग अठारे काए कीर्तना चले चलाया गणत न गनी हुकम पछाना बोली पाए सुवाई जो किस वर्ते तुरे सवाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलिपत लेप कदे न लागे सदा रहे शरणाई मनमुख मुगद आगे चिते नाही दुख लागे पछताई आपे करे कराए करता जिन ए रचना रचिए हर अभिमान ना जाई जियो अभिमानी पे पचिए फुलन विच किया सब कोई करता आप न

हर जस कर्म तरम तत पूजा, काम क्रोध अग्नि में पूजा, हर रस चाख्या तो मन पीजा, प्रणवत नानक अवर न दूजा, प्रभासी महला पहला, राम नाम

कर गुरु बूझ बुझाई, प्रभ निवाजे किन कीमत पाई, कहो नानक गुरु बूझ बुझाई, नाम बिना गत किने न पाई, प्रभासी महला पहला।

बिन सत बार ना लागे काई रहाओ। मन मुख को दुख दर्द भी आपस मन मुख दुख ना जाई, सुख दुख दाता गुरमुख जाता मेल ले शरणाई। मन मुख ते अब पगत ना हो वस हो मैं पचे दीवाने, इन मनु आखिन ऊब प्याली जब लग शब्द ना जाने। भूख प्यासा जग पया तृप्त नहीं बिन सतगुर पाए, सहज सहज मिले सुख पाए।

फर्क खजा में पाया जात वर्ण से पै अतीता ममता लोभ चुकाया नाम रते तीर्थ से निर्मल दुखों में न चुकाया नानक तिनके चरण पखाले

ज्ञान रतन प्रगट होए। मनमुख मूल ना जाननी मानस हर मंगल ना होए। हर मंगल हर जियो साजिया रखिया हुकुम सवार। तुर लेख लिखिया सो कमावना कोई ना मेकनहार। सबद चीन सुख पाया सच्चै नाए प्यार। हर मंगल सब दे सोहना कंचन तोट अपार। हर मंदर एहो जगत है गुरबिन कोरंतार। दूजा पाओ कर पूज दे मनमुख अंग गवार। जिथे लेखा मंगिए तिथे दे जात ना जाए। सात रते से उबरे दुचिए दूजे भाए। हर मंदर में नाम निधा।

पवित्र पावन सृजन निर्मल हर के नाम समाय, हर मंदिर हर का हाथ है रखिया शब्द सवार। इस विच सौदा एक नाम गुरुमुख लैन सवार, हर मंदिर में मन लोहत है मोहया दूजे भाई। पारस पे पे कंचन भया कीमत कही ना जाए, हर मंदिर में हर वसे सर्व निरंतर सोए। नानक गुरुमुख बन जिए सच्चा सौदा होए, प्रभाती महला की जा कह पाए जागे सृजन जागरण करें होमे मेल उतार। सदा जागे कर अपना राखें पंच कस्तर का डैमार, मन मेरे गुरुमुख नाम ध्याए जित मार्ग हर पाए, मन से ही कर्म कमाए रहाओ गुरुमुख सहज तुम उपजे दुखों में विच्चों जाए। हर नामा हर मन वसे सहजे हर गुण गाए, गुरमति मुख सोने हर राख्या उधार। ऐसे ओथे सुख गणा जप हर हर उतरे पार।

है काला, अंतर कपट सुरै बेताला, वर्मी मारी साप न मुआ, प्रभु सब कुछ जाने जिन तू किया, तू वर काप गेरी के बस्तरा, अपदा का मारिया दे के नस्ता, देश छोड़ पर देश धाया, पंच चंडाल ना

ता छोड़ बद नजर पर नारी वेश ना पाये महा दुखियारी बोले नाही हुए बैठा मोनी अंतर कल्प पवाई है जोनी अंते रहता दुख देही सहता हुकुम ना बूझे व्याप्या ममता बिन सतगुर किने न पाई परम गते पूछो सगल वेद सिमरते मन मुख कर्म करे अजाई जो बालू कर ठौरा ठाई जिसनो पै गोविंद दयाला गुर का बचन तिन बांधियो पाला कोट मदे कोई संत दिखाया नानक तिन कै संग तराया जे होवे पाग का दर्शन पाईए आप तरह सब कुटुंब तराईए रहाओ दूजा प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किलद सब काते धर्म राय के कागर पाते साध संगत मिल हर रस पाया पार ब्रह्म रिद माए समाया राम रमत हर हर सुख पाया।

जन्म जन्म का टूटा गांडा जब तब संजम नाम समा लिया, अपने ठाकुर नगर निहा लिया, मंगल सुख कल्याण तिथाई। जय सेवक गोपाल गुसाई, प्रभु सो प्रसन्न तय गोपाल, जन्म जन्म के मिटे विताल, होम जग उर्द तप पूजा, कोट तीर्थ स्नान करी जा।

मात पिता हर प्रीतम नेरा, मीठा जन भरवासा तेरा, कर गए लीने अपने दास, जप जीवे नानक गुणतास। विपास प्रभा की बाणी भगत कबीर जी की।

जो जन जान बजे पुरखोत्तम काशी अवगत बाणी नामा कहे जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी परवाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया

रिव अंतर कर तल काती। ठग दुष्ट बगा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल

तिल पूजस चक्र गणेशं निस्जागस पगत परवेशं पग नाचस चित्त अकर्मं एलं पट नाच अधर्मं मृग आसन तुलसी माला कर उजल तिलक कपाला हृदय कूर कंठ रुद्राथं रे लंपट कृष्ण अवाखं जिन आत्म तत्व न चीनिया सब फोकट धर्म अवीनिया कहो बेणी गुरुमुख त्यावे बिन सतगुरु बाप न पावे।

राम भज जन्म सिरात है, कहो कहा बार बार समझत न क्यों गवार, बिनसत न लगे बार पूरे समगात है रहाओ। सगल परम डार दे गोविंद को नाम ले,

आत है। जय जावंती मैला नावा। रे मन कौन गत होए है तेरी, ए जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान।

अब जोग सवदन ज्ञान सवदन वेद सवदन ता ब्राह्मण खत्र सवदन सूर सवदन सूदर सवदन प्राकृत

निता विनोद सुत कतंच भात मीट हित बंधव कतंच मोह कुटुंबते कतंच चपल मोहनी रूपं ते खंते त्यागं करोत रहं।

चतुर दिशे दुखम थान बसंत पूछे मैं सिमरंत मरणं सदा चिते होवंत आ गया भगवान पुरखे नानक की सास अकर्षते।

होत। अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमत अग खंडने ऋद बसंत भयभीत दूते कर्म करत महानिर्मले जन्मे मरण रहंत स्रोता सुख।

बते विपरीत बुद्धन मारत लोक नानक चिरंकाल दुख भोगते।

भाग उद्यम लब्धं माया नानक साध संग खल पंडते कंठ रमणी राम राम माला हस्त ऊच

अनाथ नाथे शरण नानक पुरख अचते, जिन कला धारो आकाशन बैसंतर काशत बैसतन।

ख्याल खरे बिखम स्थान मन मोह मदर महा असाद पंच तस्करे हित मोह भय।

सज्जनैः अशेष मूढ़ा न जयन्ते घटन्त साक्षा निस्पृते सृजन्त महासुन्दरी कायां काल कन्या ग्रस्तते रचन्त पुरुषे।

मजारुदर दुर्गंधा नानके अथ गर्भेण अज्ञानडो परमाणु पर्यंत आकाश है।

करे न चित्तो, जाचा अस्थल तोल अमितो, सोई नानक सखा जी संग के तो। अप जसन मिटंत सत पुत्र सिमर तवर गए।

तीर अंबर कन्हर छाया बर्फ परे सरताल चात्रिक जो तरसत रहे तिनको कौन हवाल। कबीर चके जो निस बीछ रहे आए मिले पर बात जो न

ताबत रखे ता राम भजे नाहे ता बिनती बात। कबीर केसो केसो कुकिया ना सोए सारे।

केवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख को श्री पारख आगे खोले, कोई आए मिले जो गाती ले गो महंगे मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं पाले कटक कुटुंब, संदेही में मर गयो बाहर पई न बम्ब। कबीर आखी के रे मात के पल पल गई बिहाए, मन जंग

जीवंते पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफल कलंक। कबीर साधु संग प्राप्ति लिखिया होए लीलाट, मुकुट पदार्थ पाये खाक न अवकट काट। कबीर एक करी आदि करी आदि हूँ ते आदे।

खेलत खेलत हाल करे जो कुछ होए ता होए। कबीर जो तुम खाद तिरम के ताके से तू खेले

फरीदा मैं कोलावा पगदा मत मैली हो जाए, जहला रू न जाने सिर भी मिट्टी खाए। फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माथो मांजा दुधे

हंस न कोदरा खाए। चल चल गईया पंखियां जिनी वसाए तल, फरीदा सर परिया की चलसी थके कवले तल। फरीदा इत सिराने पोए सन कीड़ा लड़ो मास, केतड़िया जुग वापरे इकत पया पास। फरीदा पन्नी कड़ी सवनवी टुटी नागर लाजे, अजराइल फिरिश्ता कै कर नाची अज। फरीदा पन्नी कड़ी सवनवी टूटी नागर लाजे, जो सज्जन कोई पा

फरीदा खालक खलक में खलक वसे रब माही मंदा किसनो आखिए है जा किस दिन कोई नाही फरीदा जे दिह नाला कपया जे गल कपे दुख पवन नाइकी मामले सहान की दुख चबन चलन रतन से सुनियर गह गए हे मिट्टी पाके जानी चल गए फरीदा बुरे दा पला कर गुस्सा मन न हंडा।

जो जन पीर निवाजिया तिना अंच न लाग। महला पंजवा फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सुवनड़ी देहे विरले के पाये ने जिना प्यारे ने। कंदी रहन ना चाहे तो भी लेखा देवना जे कर रब रजाए वैंसदाओ गौ करे। फरीदा दुखा से पी दियो गया सूला से पी रात खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा पत्थर वात। लम्बी लम्बी नदी वह कंदी के रहे बेड़े में कप

रब खजूरी पत्तियां माके नहीं वहन जो जो वंजे दीहड़ा सो उम्र हथ पवन खरीदा तन सुखा पिंजर किया तलिया खूंदे काज अजय सुरज न बोड़ियो देख बंदे के पाज काजा तरंग तंडोलिया सगला खाया मास एगे लेना मत हो फिर देखन की आस कागा चूंड ना पिंजरा बसे ता उदर जाहे जित पिंजरे मेरा सो वसे मास न पिद्दू खाहे फरीदा गोर निमानी सड करे निकरे आ कारे आ

मामल आखी से था बंदगी चलन अज के कल फरीदा मोतैदा बन्ना एवें दिसे ज्यो दरिया वैता अगे दोजक तपिया सुनिए हूल पवे कहा इतना नू सब सोजी आई इक फिर दे।

काय पटोला पारती कंबल कहरे नानक कारी बैठिया सौ मिले जे नियत रास करे। महला पंजवा फरीदा गर्भ जिना।

रावणे जिना विसारियों नाओ ऐसे दुख कनेरिया अगे थौर न छाओ फरीदा पिछल रात ना जाग्यो जीवन दरो मोयो ए जे तें रब विसारिया ता रब ना विसरियो ए महला पंजवा फरीदा कंक रंगावला वड्डा वे मुहताज अल्ले से ती रतिया एहो सचावा साज महला पंजवा फरीदा दुख सुख इक कर दिल ते लाए।

منت کم نکل فقیران داخری شو پائے پور کرم پہلے تہرے پھلڑا

क्या चल नाले इक जा बंदे नाल हैं इतना कुत्तियां दे उठाल तू देंदी है सुहाग को सौ तन काई कोर जिन्ना नाव सुहागनी तिन्ना छाप न होर सबर मंज कमान ए सबर का नीहनो।

सिर तल उपर पाए। मैं जानिया वड हंस है ताने की पासंग, जो जाना बग बकुड़ा जन्म न पेड़ी अंग। क्या हंस क्या बगुला जाको नदर करे, जो किस पावे नानका सागो हंस करे। सरवर पंखी हे पड़े फाही वाल पचास, तन लहरी गद किया सच्चे तेरी आस। कम सो अखर कम गुण कम सो मणिया मंत, कम सो वे सो हो करी जित वस आवे संत। निमन सो अखर खन गुण जो बा मणिया मंत, के त्रै तैणी वेश कर ता वस आवी संत। मत होंगी हो आना ताण होंदे हो निताना, अण होंदे आप बंदाए को ऐसा भगत सदाए। एक सिक्का ना गालाए सबना में सच्चा तनी, ह्याओ न कही ठाहे मानक सब अमोल वे। सबना मन

मान नहीं तुम भरे हर अंत नहीं पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दर तुले ब्रह्म संसय एक दिन क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार भर परे ही ते परे अपर अपार पर आपनो भावन कर मंत्र न दूसरो धर उपतो तरलो एक निमक तो घर आन नई समसर उजियारो निर्मल कोट पर अथते जाए नाम लिए हर हर जन नानक भगत दल कुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार।

जन नानक भगदर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बतन है हाके बल बल बल बल।

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हर्षवंत आनंद रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं।

हर गुरु नानक जिन परसो से जन्म मरण दो तेरे हो। सत सत हर सत सत सत सत भणिए दूसर आन न आवर पुरख पूरा तन सुनिए। अमृत हर को नाम लेत मन सब सुख पाए जे रसन साखो तै जन तृप्त अधाए। जे ठाकुर सो प्रसन्न भयो सतसंगत तै प्यार हर गुरु नानक जिन परसो तिन सब कुल कियो उधार। सच सभा दीवान सच सचे तै धरयो सचे सत निवास सच तथा वश करयो सच सुन जो सन।

सिद्ध साधक 33 कोर तेरे कीम न परिये। ब्रह्मादिक सन काद सेक गुण अंत न पाए, अगो गो नहीं जाए पूर सब रो समाए। जय काटी सिलक दयाल प्रभु से जन लगे भगते,

नाग माता बिचरत बिकले बड़ो अभिमानी पर धन पर अपवाद नार निंदा ये मीठी जी माए हितानी बल बंट छप करत उपाया देखत सुनत प्रभ

हर तारन तरन समरथ सवैद कुल समूह उदाहरण सो चित चेत अचेत जाम सत संगते भरम अंधेर मोयो कत धो मूरत घड़ी चापल सिमरन राम नाम रखना संगला होतो काज अलग सुख बंधन कोट जन्म कहां दुख भाव सिखा संत नाम भजनान के राम रंग आत्म स्योरों रंच करे खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार भरी खान पान सो दे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात का भाई अर बंधते बूझन के सब सोज परे बरमान होवत दिन प्रतिनित आवत निकट

ज्ञान के काट भरम भरे रे मनमूस बिला में गर्वत कर्तव कर्त महाम भुना संपत धौल धूल संग झूलत माया मग्न भरमत घुगना सुत बनता साजन सुख बंदते तासु मो बड़ो सुघना बोयो भीत अहं मम अंकुर बीतक औध करत अधना मृत मजार पसार मुख निरखते भुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नाम के जगे जानत सुपना देहे न देहे ननहे ननीता माया मत कहालो मादारो देहे न देहे ननहे ननीता माया मत कहालो गारो छत्र न पत्र न चौर न चावर बैठी जात हृदय न विचारो रक्त न अश्व न गज सिंहासन छिन में त्यागत नांग सिधारो सूर न वीर न मीर न खानम संग न को दृष्ट निहारो कोट न ओट न कोश न छोटा कर्त विकार दो कर झारो मित्र न पुत्र कल्प साजन सुख उल्टत जात बिरख की छारो दीन दयाल पुरख प्रभु पूरन सिन सिन सिमरो अगम अपारो श्रीपत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो प्राण मान दान मग जोहन चीत चीत दे ले ले तारी साजन सैन मीत सुत भाई ताऊ ते ले रखी निरारी धावन पावन सूर कमावन एहद करत औध तन जारी करम धर्म संजन सुख सुचनेमा करम धर्म संजन सुचनेमा चंचल संग सगल बिदहारी पथ पंखी बिरख अस तावर बहुत जौन भम्यो अत भारी सिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पथ सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उधरे और माया मगन चले सब डारी ब्रह्मांडक शिव छंद मुनि सर रसक रसक ठाकुर गुण गावे इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरत धरण गगन आवत फुन धावत सिद्ध मांस

भय मन दर्श मग पावत जरो न जात रहो जन धूर लग नींद न साकस बोर चले हर पंथ मगे नानक रोग दुख अगमो छिदे हर नाम खग उदम कर लागे लौ भापी बिचरे अन सास बौ खटुआ भस्म लगाए तीरथ बौ घमते सूखम दे बंधे बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावते जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक भात फाटे कर खटुआ सोये मले तले ते एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख दयाय वरदाता संत सहार सदा दिखयाता।

गुण वर्ण चार घट दर्शन ब्रह्मादत स्मरंत गुणा गाये गुण शेष सहस जेदा रस आद अंत लिव लाज धुना गाये गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान अंतर जान्यों कब कल सुजस

भगत दीन गुण रही सहज आत्म रंग माणे, योग ध्यान गुरु ज्ञान बिना प्रभ और न जाए। सुखदेव परिखत गुण रहे गौतम रिख जस गायो, कब कल सुजस नाम।

करतार करह समरथो। सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरयो जिन हथो, तै धरयो मस्तक।

सतसंगत सहज सारे जागी ले गुर बिचारे निमरे भूत सजीव परम प्यारे कौ तीर्थ कल सहारे सतत दीप मझारे लेना जगत गुरु पर समुरारे तै तो दिलियो नाम अपारे बिमल जास बिखारे साधक सिद्ध

समानी हर हर दर्श समानी आत्मावंत ज्ञानी जाने अकलगत गुरु परवानी जाके दृश्य अकल ठानी बिमल बुद्ध सुठानी तैर शील सन।

गुरु जगत सुयन सुयंगरो राज जोग लेना करें।

गरल नाश कन न थियो अम्यो अंतरगत पियो रिद बिनास जागयो अलग कल धरी जुगंतल सतगुर सहज समाद रव्यो सामान निरंतर उदारो चित दारद हरन तिखंते कलमल प्रसन्न सब रंग सहज कल उचरे जस जमतो लेने रसने नाम औखद नाम आधार अर नाम समाज सुख सदा नाम निशान सो है रंग रतो नाम सो कल नाम सुर नरे बो है नाम परस जन पायो सत प्रगटो रवलो दर्शन परसे गुरु कै अठ मजन हो सच तीरथ सच स्नान और भोजन भाव सच सदा सच भाषंत सो है।

सच पायो गुर सबरे, सच नाम सुगंती बो है। जिस सच संजम वर्त सचे, कब जन कल खाने। दर्शन परसिए गुरु कै, सच जन्म परवाणी। अमे दृष्ट शुभ करे हरे, अघ पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोवश करे सदै बल। सदा सुख मन वसै, दुख सन

तीरथ रव तिर प्रगण संसारे सात सरोवर मवल सराब। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम जय जयकार जपंत नरा। हर नाम रसन गुरुमुख बरदायो उल्ट गंग पर

कोई नाम अचल भगते भवतार। अमरदास गुरु को पुरिया चित नाम लागते तुझ से ध्याई जति सपी।

सतनाम गुरु गंभीर गुरु मत सत कर संगत दरिया। सोई नाम अचल भगत भाव धारण अमरदास गुरु को पुरिया। नाम कित संसार किरण रहो सुर कर साथे उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस भाके। जन्म तयो सके अत जित नाम हर दे निवासे सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आशा से। भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोड़ कर ध्यायो सोई नाम भगत वच भव जल हरन गुर अमरदास तय पायो। नाम धुआवे देव कैपीश और साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड धारे। जय नाम समाधेव हरक सोग समतर सहारे। नाम शिरोमण सर्व में भगत रह निवधार सोई नाम परार्थ अमर गुरु तुस दियो करकार। सतसूरो शील बलवंत सत भाय संगत सघन गुरु मत निर्वैर लिया। जिस धीरज धुर धवल

सुख पायो अमर गुर की खोजो। नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाय मुख मिष्ट बाणी। धन सतगुण सेवे जिस पसाए गत

हृदय बसो अतु हो सोए रस्य नहीं जातो मुखों भगत उतरे अमर गुर इत रंग रातो मस्तक निशान सचो करम पल जोय कर ध्यायो परसो गुर सतगुरु तिलक सरब इच्छ तिन पायो चरण तपर सत्यत चरण गुर अमर पवल्ले हथ तपर सत्यत हथ लगे गुर अमर पे जी तपर सत्यत जी गुर अमर भरजे

करवने गुर अमरे सुने जय सत सोहियो जित ही बसे गुरु अमरदास निज जगत पिते सत्यत सो सुर जालक भणे जो सुर ने गुर अमर निते ते नर दुख ने दुख ते नर निधन नौ ते नर शोक नौ हुए ते नर से अंत न ले।

से नर उठत बिथते सुख लेते नर संसार में अभय पट रिद में बिते सत्यत ते नर जालत भणी गुर अमरदास सो पर समझे तई पढ़ियो एक मन धर्यो एक कर एक पछाण्यो नैन बैन मोह इते एक भोए थाए न जानियो सुपन एक पर तख एक इकस में नीनो ईस एक अर पंज सिदे नै तीस न थीनो इको जे लाख लखो अलख है एक एक कर वन्यो गुरु अमरदास।